0: फॉरन एकदम ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे गिरी जा रहा
1: तो तुम लोग क्या किया?
0: कुछ नहीं, फिर लंच ब्रेक हो गया।
1: अच्छा, खाओ खाओ।
0: ना कल क्या खाएंगे?
1: भगवान खिलाएंगे, वही खाएंगे।
2: और फिर यशोदा माँ ने उसके मुंह ऐसे खोला और देखा उसके मुंह के अंदर एकदम विश्व ब्रह्मांड पूरा।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

नमस्कार, आकाशवाणी पर प्रस्तुत है आज की ताज़ा खबर नैन्सी कुकरेटी के साथ। हिमाचल से खबर आई है कि रामपुर से रिकांगपिओ जाने वाली एक बस निगुलसरी में भूस्खलन की वजह से दुर्घटना की शिकार हुई। इसमें 22 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और अनुमान है कि ये संख्या बढ़ सकती है।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। एक रिपोर्ट।
1: योजना के पहले चरण में पूरी दिल्ली में जिलेवार तय कोटे और पात्रता की शर्तों के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए करीब 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए लगभग 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि इस योजना के माध्यम से राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में प्राप्त आवेदनों की जांच संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटियां करेंगी। यह जांच प्रत्येक हफ्ते की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो के पंजीकृत मालिकों को पहचान पत्र, दुर्गा जैकेट और कैप भी प्रदान किए जाएंगे। सौम्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मेरा युवा भारत मेरा भारत पहल के जरिए इस विजन को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
2: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत, भारत सरकार की एक युवा केंद्रित पहल है, जिसे 31 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ना और उन्हें विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरा युवा भारत संगठन 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
3: मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है।
2: छत्तीसगढ़ में माय भारत की गतिविधियों ने युवा शक्ति की व्यापक सहभागिता को नई दिशा दी है। माय भारत संगठन के छत्तीसगढ़ में राज्य निदेशक अर्पित तिवारी ने बताया कि इस संगठन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवा राष्ट्रीय पटल पर अपना परचम लहरा रहे हैं।
4: छत्तीसगढ़ में भी माय भारत बहुत ही वृहद स्तर पे कार्य कर रहा है। हमारा आज बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा का युवा राष्ट्रीय पटल पे अपना परचम लहरा रहा है। वहीं ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से क्रॉस कल्चरल लर्निंग हो रही है, जिसमें भारत के कोने कोने में ट्राइबल क्षेत्र के हमारे युवा जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का परचम लहरा रहे हैं।
2: मेरा युवा भारत संगठन का लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व क्षमता, जिम्मेदारी और नागरिक भावना विकसित करना तथा उन्हें विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। मेरा युवा भारत युवाओं को अवसर, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक सशक्त मंच है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दूसरे हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। इससे एक दिन पहले हुए हमले में 13 लोगों की मौत हुई थी और 308 लोग घायल हुए थे। यमन के हूती विद्रोहियों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने विमानन कंपनियों और यात्रियों की सऊदी अरब के हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने और इसके हवाई क्षेत्र से गुजरने के खिलाफ चेतावनी दी है। पूर्वी सऊदी अरब में तेल प्रतिष्ठानों और दम्माम हवाई अड्डे पर भी हमले किए हैं। इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हूती विद्रोहियों पर हमले करने को लेकर अमरीका जल्द फैसला लेगा। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने संकेत दिया है कि ब्रिटेन सऊदी अरब को और सहायता दे सकता है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहे बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को हुए हमले में घायल एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता देने की बात कही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास हमले के बाद सभी जरूरी कदम उठा रहा है। दूतावास के अनुसार 3 भारतीय आईसीयू में है, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। भारतीय नागरिक सहायता के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 800-2-47-1234। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया है कि होरमोज जलडमरू मध्य में मार्शल द्वीप के झंडे वाले टैंकर एमटी वालथेरा पर हुए हमले में सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने बताया कि ओमान के सोहार एंकरीज में भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर एमटी पेट्रो डॉल्फिन पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 9 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 2 लापता हैं। स्थानीय तटरक्षक बल लापता भारतीयों की तलाश में जुटा है। सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव अभियान में हर संभव सहायता दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को लेकर सहमति बनी है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। श्री ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये संघर्ष विराम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस पर रूस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप की घोषणा का स्वागत किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए। पूर्वी अफ्रीका में जिबूती के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव पलटने से 15 बच्चों सहित 139 लोगों की मौत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार नाव में 305 लोग सवार थे।
2: प्रवासन संगठन ने बताया है कि मृतकों की आधिकारिक संख्या 139 है। हादसे के बाद 84 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। नाव में सवार 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। सभी जीवित बचे लोग इथियोपिया के नागरिक हैं। उन्हें ओबाक स्थित IOM के बचाव केंद्र में ले जाया गया है, जहां उन्हें चिकित्सा सहायता दी जा रही है। यह नाव बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य से जिबूती से यमन जा रही थी। प्रवासन संगठन के अनुसार पिछले वर्ष ही इस मार्ग पर 900 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई या वे लापता हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार मिंटो रोड, मंडी हाउस का गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और अन्य मार्ग प्रभावित रहेंगे। नई दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से नई दिल्ली में 6 मेट्रो स्टेशनों पर आवाजाही आज शाम 4 बजे तक बंद रहेगी। ये स्टेशन है पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और बाराखंबा रोड। इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01123301-01123-01717। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सके। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
4: क्या हो गया ऐसा?
3: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
4: ये कमाल कैसे हो गया?
3: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
4: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
3: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को भारत में उपलब्ध असीम अवसरों का लाभ उठाने का संदेश सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, भारत के युवाओं के पास दुनिया का भविष्य तय करने की क्षमता। लोकसत्य की खबर है, युवाओं से प्रधानमंत्री की अपील, बड़े सपने देखें, निडर बनकर नए विचारों पर काम करें। दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने वाले लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से फिर तबाही। उत्तरी गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आई बाढ़, 5 लोग लापता, 45 से ज्यादा मकान और पुल बहे। हिंदुस्तान की खबर है, दैनिक जागरण ने भी विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें साझा की है। पत्र लिखता है, 2 पनबिजली परियोजनाओं को भी बाढ़ से नुकसान, 50 लोग बचाए गए। नवरात्रि के पहले दिन 3 लाख से अधिक भक्त पहुंचे पावागढ़। गुजरात में महाकाली के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की तस्वीरें दैनिक भास्कर ने दी है। 100 की उम्र में भी अदालत में पैरवी, केरल के वकील मेनन कभी नहीं होना चाहते रिटायर, गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज नाम। वकालत के लिए 8 दशक से कायम जुनून, राजस्थान पत्रिका ने प्रेरणा शीर्षक से ये खबर दी है। यूट्यूब पर समय बिताने में बुजुर्ग भी पीछे नहीं, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है, 4000 लोगों पर कराया गया सर्वे।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के युवा अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम। दिल्ली सरकार दुर्गा योजना के अंतर्गत महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को 1300 ई ऑटो वितरित करेगी। सऊदी अरब के रियाद हवाई अड्डे पर 2 दिन में दूसरे हुती हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 11 लोग घायल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन तत्काल प्रभाव से ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने को सहमत। और भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights potential of India's youth in solving global challenges while remaining anchored in the ancient cultural roots. Delhi government to distribute 1300 e-autos to women and transgenders under Durga scheme. 1 person killed and 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days. US President Donald Trump announces an energy ceasefire between Russia and Ukraine with immediate effect. 139 people killed after overcrowded boat capsized off Djibouti coast. And in cricket, India beat West Indies by 14 runs in the third T20 international to take a 2-1 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi highlighted the global potential of India's youth during the Golden Jubilee celebrations of the Jai Gopal Garodia Hindu Vidyalaya in Chennai. Mr. Modi asserted that the global community is actively searching for innovative answers to emerging challenges and expressed absolute confidence that India's youth possesses the talent and the potential to provide them.
7: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
6: द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज्ड द करंट एरा बिलोंग्स टू द यंगर जनरेशन। Mr. Modi noted that the fresh ideas and hard work will mold the future of both India and the wider world, alongside global problem solving. Prime Minister delivered a message centered on national unity and the timeless wisdom of Tamil heritage. He specifically praised the ancient Tamil classic, Thirukkural, as an essential guide for life and lifelong learning, reminding students that acquiring knowledge must always be paired with putting it into practice. Mr. Modi urged students to dream big, think differently, and act fearlessly. Highlighting the infinite opportunities available in the country today, Prime Minister stated that youth are central to realizing the vision of Viksit Bharat by 2047.
7: Aaj Bharat mein jo infinite opportunities hai, main chahta hoon ki har yuva apne bhavishya ko usi bade canvas par dekhe, because दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
6: The Prime Minister reiterated that by balancing modern innovation with a deep connection to the cultural heritage, young leaders can build a progressive, self-reliant nation while earning recognition on the global stage. Delhi government is set to launch the Durga Driving Upliftment and Rozgar for Women and Transgender e-auto scheme to create safe, dignified and sustainable self-employment opportunities for women and transgender persons. The initiative will also promote clean and inclusive mobility across the national capital. The government is informed that the scheme will facilitate the allocation of 1,300 pink electric autos in its first phase, of which 1,170 electric autos will be reserved for women beneficiaries and 130 for transgender beneficiaries. Under the first phase, a maximum of 90 electric autos for women and up to 10 electric autos for transgender beneficiaries will be allocated in each revenue district in accordance with the prescribed district-wise quotas and eligibility conditions. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva, Se Desh Seva, and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल

स्वागत नंदन है एक बार फिर से, एक और नई सुबह है, ताजगी से भरी सुबह है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन, अपना फेवरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, 8:24 हो रहे हैं स्टेशन क्लॉक में और आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। एक बिंदास सफर पर होगी आपकी और मेरी एक बेहतरीन शुरुआत। 10 तक रहेंगे आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आज बहुत कुछ है हमारे खास प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, आपको भी जुड़ना होगा हमारे साथ इस प्रोग्राम में 9837896896 पर। श्रदी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना हमने कल की, आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हम करते हैं और माँ का दूसरा रूप बहुत ही खूबसूरत है, इसके विषय में ज़रूर बात करेंगे हम अगले घंटे में। लेकिन फिलहाल इतना ही कहते हैं कि आप जो भी चीज़ करते हैं ना, अगर इन दिनों में अगर आप मन से करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना करोड़ होकर दोबारा रिटर्न में मिलता है। तो इसलिए अपने मन में अच्छी चीज़ों का संकल्प लें, अच्छी चीज़ें करें। जब आप अच्छी चीज़ें और अच्छे मन से निकलते हैं और अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा करने के लिए आप निकलते हैं ना, तो यकीन मानिए सब कुछ अच्छा होता है। और आज तो मंडे है, मन का डे है, तो जो मन में आए अच्छा कीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे काम जब करते हैं तो दिल से पॉजिटिविटी आती है ना। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा ये दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो कुछ अच्छा करिए लाइफ में ताकि आपको भी चैन की नींद आए, सुकून की नींद आए और आपको भी अच्छा सा महसूस हो। और देखो यार, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है, आज का मौसम भी कुछ अलग ही हो रहा है। बादल बादल हो रहे हैं, बारिश बारिश होने की संभावना है। मौसम मैं अभी बताऊंगा कैसा रहने वाला है आज का। और मेरी गली की वेंट बजी हुई है, हालत बहुत खराब हो रखी है भाई, मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल जरूर रखना ब्रो, आप जहां भी जा रहे कड़क चाय पी के निकलो यार, और मैं तो कह रहा हूं अदरक वाली चाय पी के निकलो। फिलहाल के लिए आने वाला गाना है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, लौट कर आता हूँ थोड़ी सी देर में।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: हाय दयन जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

क्या बात है, घूंघट में चांद होगा। और आजकल तो भैया चांद लुका छुपी खेल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं जी, शरद पूर्णिमा जो आने वाली है, वेलकम बैक है, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, 12 अक्टूबर की सुबह है। क्या हालचाल है जी, सब बढ़िया चल रहा है। ये ब्रांड न्यू मंडे मॉर्निंग है, 8:38 हो गए हैं। आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट यार। बहुत सारे लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच इतने प्यारे और वंडरफुल मैसेज करने के लिए। नवरात्रि का दूसरा दिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करे, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए अंधकारों को दूर करे और आपको इतनी शक्ति दे, इतनी सद्बुद्धि दे कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे पूरी संयम के साथ करें, पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और जिंदगी में कुछ बड़ा रौक मचाएं। हम तो यही पॉजिटिविटी आपको देना चाहते हैं। आप जहां भी निकल रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें निकल रही है, लेकिन बार बार मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि जब आप पॉजिटिव सोच के साथ बाहर निकलते हैं ना, जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में अच्छा होता है। एक बार आप सोच के तो देखिए यार, जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपने बारे में गलत सोच के देख ली, लेकिन अब एक बार पॉजिटिव सोच के देखिए जिंदगी कैसे ठा करके बदलेगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। और दोस्तों कहते हैं, जो बीत गया उसे अपनी पहचान मत बनने दो, उससे इतना ही रहने दो। एक ऐसा अध्याय जिसने तुम्हें तोड़ा जरूर है, लेकिन तुम्हें पहले से थोड़ा गहरा बना दिया है, उस अध्याय को कभी मत छोड़ो, है ना। बस जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा है ना, उसे मुस्कुराते हुए फेस करो, क्योंकि लाइफ है अप एंड डाउन, तो जिंदगी होती रहती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी जिंदगी में जीना छोड़ दें, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना छोड़ दें। लाइफ में कमबैक करते रहो, बहुत ज़रूरी है, जिंदगी है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम आना बहुत जेन्युइन सी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम फिर कैसे जिंदगी को आगे और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है ना, हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। ढेर सारे संदेश मेरे पास पहुंच रहे हैं आप लोगों के, इन संदेश को हम जरूर शामिल करेंगे। और कैसी चल रही है आपकी जिंदगी ये तो आप हमें बताइएगा जरूर। आई मीन टू से कि आज मंडे मॉर्निंग है, कहते हैं मंडे मन का दिन होता है। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ आपको बहुत चेंज लग रही होगी यार, क्योंकि जुकाम बहुत भयंकर है, ऊपर से हल्का सा फीवर भी हो रहा है। मैं बट कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी आवाज़ में आपको वो चीज़ महसूस भी ना होने दूँ, लेकिन ये जुकाम आपकी आवाज़ को पकड़वा ही देता है यार। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अच्छी गानों के साथ जो है हम यहाँ पर ऐसे ही बने रहेंगे और आपका साथ बनाए रखेंगे ऐसे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ ढेर सारी बातें हो रही हैं। आनंद के साथ सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। कुछ कहना चाहते हैं यार तो व्हाट्सएप कर सकते हो आप मुझे 9837896896। नवरात्रि का दूसरा दिन है तो ऐसे में अच्छे अच्छे गाने आपके लिए ज़रूर लगाऊंगा आज की सुबह। भैया आप ऐसी ट्यून इन रहिए, आज का दिन क्यों खास है, क्या क्या स्पेशल मनाया जाता है आज की तारीख में, इस पे भी हम बात करेंगे। और आप जहां भी जो भी तैयारी कर रहे हैं बस करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। सब कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ आज की सुबह, फुल ऑन पैकेज के साथ आया हूँ। थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ, ढेर सारी बातें आपको बताऊंगा, आपके मंडे को थोड़ा सा ना और ज्यादा रिचार्ज बनाने वाला हूँ। कैसे बताता हूँ ना अभी आपको, लेकिन फिलहाल आने वाला गाना हम दिल दे चुके सनम से। नवरात्रि है भाई, शरदीय नवरात्रि चल रहे हैं। चलिए आप मुझे मैसेज करिएगा 9837896896। नवरात्रि का दूसरा दिन, कितने लोगों ने फास्ट रखा है जरा व्हाट्सएप करके बताओ। फिलहाल मैं भी लौट कर आता हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो ऐसे ही आपका स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, वक्त मिला लो, 8:43 हो गए हैं।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
6: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002243।

वेलकम बैक है भाई। बाहर का मौसम सच में बहुत औसम हो रहा है, लेकिन इस औसम वाले मौसम में अपना भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाय गुड मॉर्निंग, सुन रहे हैं आनंद को। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, वो हर एक सिचुएशन में करके दिखा देते हैं। वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर एक असली पोटेंशियल होता है कुछ करने का, कुछ बड़ा करके दिखाने का, तो वो डेफिनेटली करके दिखा देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो एक तलब होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। फिर वो बारिश, धूप, गर्मी, ठंड कुछ नहीं देखते बॉस, वो लगातार अपने काम को करते रहते हैं, सही प्रयास को करते रहते हैं और सही दिशा में अपने प्रयत्न को करते रहते हैं। दोस्तों वक्त हुआ है 8:56, 12 अक्टूबर की सुबह। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। आइए बात कर लेते हैं आज के ऐतिहासिक दिन के बारे में, मतलब आज का दिन क्यों खास है। श्रोताओं आपको बता दें, इटली के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने अभियान कोरियाप द्वीप जो है बहामा पहुंचाया और जिसे नई दुनिया की खोज माना गया। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टोफर कोलंबस का जो एक अभियान था उसे कैरोबाई द्वीप बहामा पहुंचाया एंड जिससे एक नई दुनिया की खोज की गई थी। श्रोताओं आज के दिन, और आपको बताते चलें एक और खास चीज़ आज के दिन हुई थी एंड उसके बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज के दिन 1914 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत लौटने का निश्चय लिया था। श्रोताओं आज के दिन, और भारत ने अपना पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू किया था 1958 में आज ही के दिन। और आज के दिन ऐसी कई गतिविधियां हुई हैं जो आज के दिन को थोड़ा अलग बनाती हैं। आज के दिन ऐसे कई कलाकारों के जन्म हुए हैं जो आज के दिन को, आज के इस इतिहास को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। श्रोताओं और हम भी बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आप भी अपने कर्मों की किताब पे कुछ बेहतर से बेहतरीन लिख सकें। आपको बता दें आज के दिन बहुत सारे लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है और उसी में से एक नाम है पेरिन बैन। इनका जन्म हुआ था 1888 को। पहले क्रांतिकारी के बाद जो है ये एक प्रसिद्ध नाम जुड़ गया आज के इतिहास के पन्नों में। वहीं बात करें अगर निदा जी की, तो निदा फाजली जी का जन्म हुआ जो प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार हैं। 1938 में शिवनाथ मिश्रा भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे। श्रोताओं 1943 में जन्म हुआ था आज ही के दिन। और समाज शास्त्र में जाने माने एक ऐसा नाम जो काफ़ी जाना माना नाम है, इनका नाम है किरण मिश्रा। इनका जन्म हुआ 1980 में आज ही के दिन। और भी कई ऐतिहासिक दिन जो है आज सेलिब्रेट किए जाते हैं, उस पर हम जरूर बात करेंगे। 9 बजने को है स्टेशन क्लॉक में। अंकित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो मिस्टर आनंद, जय माता दी, माता रानी की कृपा मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करें हमेशा और कृपा बनाए रखें। मेरी ओर से सभी को जय माता दी और आपके लिए प्रेयर कि आपका कोल्ड जल्दी ठीक हो जाए। आई होप ऐसा हो जाए। वेल थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। एंड हाय अंकित शर्मा जी, आई होप आप भी बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपके नवरात्रि भी बहुत ही अच्छे चल रहे होंगे। अंकित कुमार शर्मा, एडवोकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ पर प्रणव, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग। आज आपकी वॉइस में काफी चेंज है। हाँ यार, ऑफ कोर्स चेंज तो होगा यार, क्योंकि थोड़ा जुकाम हो गया है। मैं तो आपको भी कह रहा हूँ भाई, अपना जरा खास ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है अपना ख्याल रखना, नहीं तो फिर मेरी तरह आवाज आएगी बॉस। लेकिन थोड़ी देर में अभी गाने आएंगे।

0: मुरादाबाद में भी आप ये ढोल बाजे वाले गरबा एंजॉय कर सकते हैं। हाँ कैसे, सब कुछ पता लगेगा आपको। बहुत सारे गिफ्ट जीतना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहो, ट्यून इन रहो इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। थोड़ी सी देर में मुरादाबाद में एक बड़ी पॉपुलर दुर्गा पूजा होती है, उस दुर्गा पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। अपने मुरादाबाद शहर में भी बहुत ही हैपनिंग दुर्गा पूजा होती है, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में लौट कर आऊंगा तो बात करूंगा। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, थोड़ी सी देर में आता हूँ।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
8: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: देखो देखो वो आ गया।
1: अरे आनंद इज बैक।
2: बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग और आज माँ का दूसरा नवरात्रि हम जो है सेलिब्रेट करते हैं। आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज ब्रह्मचारिणी माता की पूजा अर्चना सुबह से मंदिरों में हो रही है और अगर आप भी आज के दिन फास्ट रखते हैं तो जय माता दी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 पे RJ आनंद को, जहां ढेर सारी बातें होती हैं आपके साथ और ऑफकोर्स आज भी ढेर सारी बातें करने आ गया हूँ। दोस्तों, शरद नवरात्रों की मान्यता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और कहते हैं जब नवरात्रे आते हैं तो हमेशा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जब चैत्र नवरात्रे आते हैं तो हम गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं और जब शरद नवरात्रे आते हैं तो हम सर्दियों की तरफ जा रहे होते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ देवी दुर्गा का स्वरूप है, माँ ब्रह्मचारिणी को जो है ये दिन समर्पित होता है। आपको बता दें, देवी का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी और आज के दिन माता की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आज का जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद। अगर आप सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन के निकलते हैं तो आपकी सुबह और भी अच्छी हो जाती है, आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है। माता को कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चीनी, मिश्री, पंचामृत या फिर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही अनंत शुभ माना जाता है, बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। आज का सबसे खूबसूरत मंत्र है जिसका आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणाय नमः। अगर आप इसका मतलब उच्चारण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है। बाकी आजकल तो देखिए सारी चीजें आपके सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। हम तो यही चाहेंगे कि माता रानी आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करे, आप जो भी कुछ चाहते हैं वो सब कुछ आपको माता रानी दे और आपके जीवन से सारे दुखों को दूर करे, सारे दुखों का नाश हो, आपके जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आए। इसी बात के साथ जय माता दी।

क्या बात है यार, उड़ी उड़ी जाए बहुत ही अच्छा गाना भी आपने सुना रईस फिल्म से। सच में गाना सुन के मजा आ गया। भूमि त्रिवेदी ने गाया, सुखविंदर सिंह दे रहे थे साथ, और अभी कौन दे रहा है रेडियो पे साथ? आरजे आनंद दे रहा है यार आपका साथ। कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, ये मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है।

0: चलिए जी फिर आगे बढ़ते हैं और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग जब हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है आप मतलब हमारे साथ साझा करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। फिलहाल अभी मज़ा आपको आएगा आज का वेदर सुन के, कितना बढ़िया रहने वाला है। 9:13 हो गए मंडे की सुबह, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं आपके, बहुत बहुत थैंक यू इन मैसेजेस के लिए। 22 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर है, बात करें अगर इसके हाइस्ट की तो 30 डिग्री पहुंचेगा, लोएस्ट की बात करूँ तो 21 डिग्री पहुंच सकता है। और बाकी हवा की बात कर लेते हैं तो आज 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं रहने वाली हैं भाई साहब, तो आप ऐसे में ज़रा ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। बाकी मौसम कूल सा रहने वाला है। कल जो अचानक से शाम को मौसम बिगड़ा है ना बॉस, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि भैया मतलब माता रानी जो है स्वयं चाहती कि इस बारिश में सारी गंदगी धुल जाए। बहुत अच्छी बात है यार, देखो माता रानी आई है तो साफ सफाई और बढ़िया तरीके से जो है सब कुछ अच्छा होना चाहिए भाई, ये तो उनका जलवा है। फिलहाल अभी आपके लिए यहाँ पर अच्छे गाने लगा रहा हूँ और ढेर सारी बातें आपसे कर रहा हूँ।
1: चाल चलत जा, ए छोरा गांडा थई गयो

अच्छा सुनो भाई, गाना बहुत ही अच्छा है, अभी आप तक डेफिनेटली पहुंचेगा। फ्रॉम द फिल्म जय हो का ट्रैक। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करो। किसी को चाय चाहिए और किसी को कॉफी चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपकी सास को कॉफी चाहिए और हस्बैंड को चाय चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? मुझे जरा इसका आंसर करके बताओ। 9837896896 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड साथ ही साथ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना खींचते हो वो उतनी छोटी हो जाती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप जितना खींचोगे वो उतनी छोटी हो जाएगी? क्या आपको पता है इसका राइट आंसर? तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे, मैसेज करके बता सकते हो। आज की सुबह थोड़ी सी देर में जय हो का गाना आप सुनेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। घड़ी में 9:16 हो रहे हैं, लौट कर आता हूँ जरा सी देर में। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ऐसे ही एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। व्हाट्सएप करो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना खींचोगे वो उतनी छोटी हो जाती है? अगर इसका आंसर पता है तो मैसेज कर दो। दूसरा मैंने पूछा, अगर सास को कॉफी चाहिए और पति को चाय चाहिए तो सबसे पहले क्या करोगे, बताओ जरा मुझे। आने वाला गाना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: अभी बजाएगा ना बिड़ो।
1: हे जरे झटपट पर उलट पलट नटखट झट लटक मटक लचक मचक लचक मचक चाल चलत जा।
2: ए छोरा गांडा थई गयो।

0: क्या बात है यार।
1: मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे हैम्पर हैं। पूजा शाला की तरफ से आप जीतेंगे एक बहुत ही अच्छा हैम्पर आज की सुबह। अपने घर को सुगंधित बनाना चाहते हैं, अगर अपने घर को और भी पॉजिटिविटी से भरना चाहते हैं, तो हमारे पास पूजा शाला के कुछ स्पेशल हैम्पर हैं। क्या है ये पूजा शाला, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। एक्सक्लूसिव भी आप जीत सकते हैं, बहुत सारे प्राइजेस मेरे पास रखे हैं। वो जानना चाहते हैं कैसे प्राइज़ है, तो यू हैव टू गो इंस्टाग्राम चेक आउट करो, वहाँ पर आपको सब चीज़ें दिख जाएंगी। हमारा ऑफिशियल पेज है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहाँ पर आके देख सकते हो। मतलब मेरा स्टूडियो पूरा पॉजिटिविटी से भर गया है यार। एंड ये इतने प्यारे प्यारे हैम्पर हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी सुंदर कॉम्बो है इस वक्त मेरे हाथ में है। काश आपको मैं दिखा पाता। ये आप ये सब कुछ देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। सो ये सारे स्पेशल प्राइस जीत सकते हैं आप पूजा शाला की तरफ से स्पेशल नवरात्रि में। अपने घर को और भी स्पेशल बना सकते हैं, अपने घर के और एक और पॉजिटिव बना सकते हैं। वैसे थोड़ी सी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर राखी। दिस इज मंडे मॉर्निंग एंड ऑफ कोर्स नवरात्रि चल रहे हैं। क्या स्पेशल कर सकते हैं, माता रानी को क्या स्पेशल भोग लगा सकते हैं, क्या ऐसा उपाय कर सकते हैं इससे आपकी लाइफ थोड़ी सी और ज्यादा चमक जाए, थोड़ी सी और लाइफ में यू नो हैप्पीनेस आ जाए। अगर ये सब कुछ जानना है तो बस मेरे साथ ऐसी ट्यून इन रहो यार, और सुनते रहो आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम जितना ज्यादा खींचते हैं वो उतनी ही कम हो जाती है, पता है आपको? तो मुझे इसका आंसर करके बताओ फटाफट से 9837896896 पे। दिस इज माय नंबर एंड आप जीतेंगे एक अच्छा सा प्राइज। अगर आप जीतना चाहते हैं तो बस मुझे मैसेज करो यार, बहुत सारे प्राइज हैं हमारे पास। जानिया नाइट कॉन्सर्ट है हमारे पास, गरबा के पासेज है हमारे पास, भजन जामिंग के पासेज है हमारे पास, पूजा शाला की तरफ से बहुत अच्छे प्राइज हैम्पर हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, नवरात्रि है, इतना अच्छा ओकेजन है, तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे ना। रेडियो स्टेशन पे आप सुन रहे हैं आनंद को, सवाल का आंसर करो और जीतो अच्छे अच्छे प्राइज, है ना। दूसरा मैंने आपसे एक और सवाल पूछा था कि अगर सास को कॉफ़ी पीनी है और हस्बैंड को चाय पीनी है, तो सबसे पहले वो लेडी क्या करना चाहेगी, अपनी मदर इन लॉ के लिए कॉफ़ी बनाएगी, अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाएगी, या कुछ और करेगी? तो सबसे पहले वो क्या करेगी, मतलब अपनी मदर इन लॉ को कॉफ़ी देगी, अपने हस्बैंड को चाय देगी, या फिर क्या करेगी? मतलब दिस इज़ माई क्वेश्चन, इसका आंसर आपको क्लियर करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप आंसर कर दोगे। अब लेके जाओ ना गिफ्ट। थोड़ी देर में गाना आप तक पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं बताने वाला हूं क्या चल रहा है शहर के अंदर, उस पर अभी बात करने वाले हैं हम। सो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्या कोई चेंज है हो रहा है और क्या स्पेशल होने वाला है उस पर बात करते हैं ना। अभी लौट कर आ रहा हूं। सुजीत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? इन्होंने मुझे लिख दिया है ऑल राइट एंड हाय जय माता दी, मस्त शो कर रहे हो। थैंक यू सुजीत भाई, एक ही दिल है, इतनी बार चुराओगे तो लगता है सारे इनाम आप ही जीत जाओगे। अभी वापस आता हूँ मैं, और थोड़ी देर में मैंने जैसे बताया आपको हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर होंगी डॉक्टर राखी जी। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सअप करो 9837896896 पे। कुछ भी आपको जानना है तो फटाफट से अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे पहुँचाओ। कुछ भी अगर आपको पूछना है, लव लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, अपनी यू नो जो भी आपको लगता है यार मुझे अपने बच्चों के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी घर के बारे में, जो भी व्हाटएवर जो भी आपके क्वेश्चन है, आप मुझे इमीडिएटली व्हाट्सअप करेंगे जरा सी देर में।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
6: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन, यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: वेलकम बैक है जी। गुनगुनाना बहुत जरूरी है। 9:37 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप आपका फेवरेट मॉर्निंग मैगजीन शो, जहां पर बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपको जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने लक के बारे में, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि जो भी आपको पूछना है, और नवरात्रि भी चल रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आए हैं।

0: थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। और अभी थोड़ी देर में हम अपने साथ वाई राखी जी को कनेक्ट करेंगे और वो हमारे बीच में कनेक्ट भी हो रही हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था इंडिया की जानी मानी वेरी वेरी पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर जी हमारे साथ थोड़ी देर में कनेक्ट होंगी, डॉक्टर वाई राखी जी। ऑफकोर्स आप उनके बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं और आप मेरे प्रोफाइल पर डेफिनेटली देखते हैं, तो अभी उनको हम लाइव ऑन एयर करते हैं। आपने बहुत सारे मैसेज किए उसके लिए थैंक यू सो मच। आइए मैम से बात करते हैं। हेलो मैम, जय माता दी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग।
1: जय माता दी, आरजे आनंद कैसे हो?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आ गए हैं। नवरात्रि है एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे बात हो रही है, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कोई बात नहीं, हमारी बात हो या ना हो, हमारे मन मिले हुए हैं तो तुम मेरी बातों में, मेरे एहसास में हमेशा रहते हो।
0: अरे वाह, सेम हियर। और हमारे मुरादाबाद भी जो है अब आपकी बातों में रंगने लगे हैं, मुरादाबादी हमारे।
1: थैंक यू। और कहाँ जा रहे हो आरजे आनंद? आजकल तुम रामलीला कितनी प्यारी वीडियो डालो, राम और सीता जी को मेरा प्रणाम कहना और कहना माँ ने कहा है राखी माँ ने कि आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं।
0: अरे वाह, वो लोग स्पेशल मुंबई से आए हैं और आज ही वो स्टूडियो आने वाले हैं, उनका पूरा इंटरव्यू है हमारे साथ। रावण, राम, लक्ष्मण, सीता सब लोग आने वाले हैं आज दोपहर को 2 बजे, तो मैं जरूर आपका मैसेज उन तक पहुँचाऊंगा।
1: जी
0: बिल्कुल। सो राखी माँ, सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो आप बड़े प्यारे लगते हो, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं, कोई मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं क्या, पूरा मुरादाबाद ही चीज जानता है बहुत अच्छे से।
1: थैंक यू सो मच। और नवरात्रों की पूरे मुरादाबाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल की गहराइयों से माता रानी आप लोगों की झोलियां भरे, भंडार भरे।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा तो राखी माँ, सवाल तो बहुत सारे पहुंचे हैं मेरे पास, मुझे बहुत सारे लोगों ने यही पूछा है कि हम नवरात्रों में हमारे पास पोटली नहीं आई है तो हम कैसे अपने घर में थोड़ा सा धन को लेकर आ सकते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा है पैसा तो है लेकिन वो रुकता नहीं है, क्या ऐसा करें नवरात्रों में हम?
1: पहली बात तो ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में हम ना कर सकें। अगर आज बाजार में नया फोन आता है, दुनिया खरीदने पहुंच जाती है, नई गाड़ी आती है पहुंच जाती है, दृश्यम आती है तो 300 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो अगर आप अपने लिए 4,200 रुपए की कोटली नहीं खरीद सकते तो आपको भी भगवान से ये अपेक्षा या उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भगवान कोई चमत्कार करे। पहली तो मेरी आपसे ये है कि मदते मदद मदते ईश्वर, ये राम जी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। तो स्वयं पोटली खरीदे, नहीं खरीद सकते तो मुझे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर फॉलो करें क्योंकि मैं दिवाली से ठीक पहले अपनी पोटली अपने घर में कैसे बनाए वो जरूर सिखाती हूँ। तीसरा, कर्म अच्छा, अगर आपके घर में पैसे नहीं रुक रहे आनंद तो घर में निश्चित ही कोई वास्तु दोष है।
0: ओके, अभी नवरात्रि में हम अपने आप को और ज्यादा पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, अपने अंदर की नेगेटिविटी को कैसे खत्म कर सकते हैं ताकि जीवन में उजाला आए, रोशनी आए, जैसे माँ आती है तो सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है।
1: देखो माँ आती है तो सब कुछ ठीक ही हो जाता है, मौसम में बहार है, चारों ही तरफ गुड न्यूज है। और देखो तुमने महादेव से मांगा तुम्हें नहीं मिला, तुमने कृष्ण जी से मांगा तुम्हें नहीं मिला, लेकिन जैसे ही माँ आई, एक बच्चे का दर्द जो है माँ ने आने से पहले ही हर लिया और माँ हमेशा अपने बच्चों का दर्द हरती है। हमें भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती है, भगवान हमारी हर बात को समझते हैं। मैं तुम्हें माता रानी के 5 उपाय बताऊंगी, मुरादाबाद वालों ने या हिंदुस्तान में दिल्ली में किसी ने भी इसे कर लिया तो आनंद की अनुभूति। माँ को कायदा पसंद है। एक माँ क्या चाहती है आनंद, अपने जीवन की पूरी कहानी को देखो, बेटा जल्दी उठ जा, बेटा कुछ बन जा, बेटा देर तक नहीं सोते, राइट? तो माँ को पसंद है आप सुबह जल्दी उठे, उठकर उनकी जोत जलाए। अब ये इन सब चक्रों में मत रहे, सब उठ जाए, सब मिलकर करें, साथ करेंगे, नहीं नहीं नहीं, इन सबकी जरूरत नहीं है। आप अकेले ही करिए, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं क्योंकि हर जगह पर सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता।
0: ठीक है, सही बात।
1: दूसरा नंबर, माँ को अनार बहुत पसंद है, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के।
0: क्या बात
1: तो है। माँ को अनार अर्पण करें। नंबर 3, जब माँ सोने जा रही हो तो प्लीज आप माँ को पान का भोग लगाएं। नंबर 4, आप जो करते हैं वो रोज करें। आप रामलीला जाते हैं, अपने बच्चों में संस्कार डालें, उन्हें राम और सीता का जो है उनका पूरी की पूरी कहानी कथा के बारे में बताएं और उनके त्याग के बारे में बताएं, रावण के ज्ञान के बारे में बताएं और उसके अहंकार के बारे में बताएं। हमारे माता पिता हमें ना ये सब दिखाते थे तो हम इन चीजों से सीखकर डरते थे कि रावण ने गलत किया था तो उसके साथ क्या हुआ था, राम ने सही किया था तो क्या हुआ था। लेकिन अब हम अपने बच्चों को इन चीजें दिखाते नहीं और हमारे सारे त्योहार केवल फोन पर रह गए। तो रामलीला जरूर जरूर जाएं जिससे बच्चों में संस्कार आए। 5वां और आखिरी उपाय आरजे आनंद, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोका, कि सिर्फ एक उपाय, मंत्र जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जोर जोर से बोलकर करें कि घर की दीवारें सुने और माता रानी कहे कौन मुझे इतनी जोर से पुकार रहा है, उसी घर पे मुझे जाना है।
0: क्या बात है मुरादाबादी, देखो अब आपका लक जो है अच्छे से काम करने वाला अगर आपने इन बातों को फॉलो कर लिया तो। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे राखी माँ की, आज ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि आज के दिन माँ को क्या भोग लगाएं, आज के दिन कौन सा कलर हम पहने, आज के कलर का सिग्निफिकेशन क्या होगा, कैसे हमारे लक इनहैंस हो सकता है, क्योंकि नवरात्रि आते ही ना लोगों में एक अलग ही ऊर्जा और पॉजिटिविटी आ जाती है। और इस बार माता की क्या सवारी, किस पर माता रानी सवार होकर आई है और इस बार का कैसा रहने वाला है, क्योंकि कहते हैं जब नवरात्रि आते हैं तो अगले 6 मंथ में बहुत कुछ चेंज होता है हमारी लाइफ में हमारे आसपास।
1: देखो सबसे पहली बात, माता हाथी पर आई है और माँ वापस जा रही हैं, कुछ ग्रंथों के हिसाब से घोड़े पर और कुछ ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है जब माँ मंगलवार को जाती है तो मुर्गे पर जाती है। माँ का आना धन समृद्धि वैभव यश को लेके आ रहा है, लेकिन माँ का जाना युद्ध को लेके आ रहा है, क्योंकि घोड़े पर माँ का जाना युद्ध की जो है बात बताती है। दूसरी बात कि मैं आपको बता दूं कि आज के दिन आपने कहा माँ का रंग क्या है, तो माँ को सफेद रंग लाल रंग बेहद पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी है जिन्होंने अपने पिता का घर छोड़कर ब्रह्म का आचरण किया, यानी कि कहीं ना कहीं तपस्या का आचरण किया। ये दिन जो है ये स्टूडेंट्स के लिए है। ये दिन में माँ को क्या पसंद है, माँ तो चीनी खाकर पत्ते खाकर और फल फूल खाकर उन्होंने जो है तपस्या की थी। माँ को आज के दिन चीनी का भोग लगाया जाए, महादेव पर चीनी अर्पण की जाए, चीनी का दान किया जाए। और सबसे जरूरी बात तुम्हें बताऊंगी, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, आचरण अपना अच्छा रखो, दूसरे को जीने दो और दूसरे की तकलीफ में उसका साथ दो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर आप दूसरे का भला सोचोगे तो आपका भला अपने आप होगा।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा राखी माँ, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लोग अपने डेट ऑफ बर्थ लगातार भेज रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा। एक लेडी ने पूछा है कि आज हम माता को नारियल चढ़ा सकते हैं, कल हम नहीं चढ़ा पाए संडे में।
1: माँ को 9 दिन नारियल चढ़ाना चाहिए, 9 दिन लगातार।
0: ओके ठीक है। और एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, विशाल रस्तोगी ने मुझे मैसेज किया है अलीगढ़ से, ये पूछते हैं कि राखी माँ को प्रणाम और क्या हम अपनी जो है लाइफ में कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जो सिर्फ नवरात्रों में करके लाइफ को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं।
1: हाँ कर सकते हैं, आप आखिरी दिन अष्टमी वाले दिन या नौमी वाले दिन अपने घर में हवन करें, इससे आपके सारे रास्ते जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं।
0: थैंक यू सो मच गाइज, मुरादाबादीज और जहां भी आवाज सुन रहे हो, आज के लिए इतना ही काफी है, वो बहुत बिजी हैं। हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट करने वाले हैं वेरी वेरी सून, उसमें आपके क्वेश्चन सारे आंसर्स हम लेंगे, इंस्टाग्राम पे जल्दी मिलते हैं, तो आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं वो आप मैम से उनके इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हो। राखी मैम आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से है, वो तो गूगल पे भी आ जाता है इनफैक्ट।
1: हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर बाय राखी ऑफिशियल आपको मेरा मिल जाएगा यूट्यूब चैनल, में मेरी फोटो मिल जाएगी, ब्लू टिक मिल जाएगा, प्लीज फॉलो लाइक सब्सक्राइब मुझे ही नहीं आनंद को भी।
0: एब्सोल्युटली, और अगर आपको पोटली वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, मेरे इंस्टा हैंडल पे भी मैं शेयर करता हूँ।
1: थैंक यू
0: राखी माँ, वाकई में एक चीज तो मैं भी बोलना चाहता हूँ लाइफ की, आपकी जो ये पोटली है ना ये बड़ी मैजिकल है, इसके आने से पहले जीवन में बाहर आ गई, आपने उधर से भेजी भी नहीं, इधर से मेरे को गुड न्यूज मिल गई। और आपको, आप भी जानते हो मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, सभी जानते हैं कितनी मुश्किलों से मैं उस पेन से निकला हूँ, एंड थैंक यू सो मच आपको।
1: तुम बहुत बहादुर हो और एक बहुत अच्छे बेटे हो, लोगों ने तुम्हें क्रिटिसाइज किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ये याद रखना जब दुख आता है तो वो 40-45 दिन लेकर जाता है, एक तो हम दुख को बड़ा समझ लेते हैं और हमारा भगवान पे से विश्वास उठने लगता है। भगवान कोई खाली थोड़ी बैठा है कि आनंद ने घंटी बजाई और भगवान आ गया, आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और कहोगे तू है ना साथ में, जैसे पांडवों ने कृष्ण पे बिलीव किया था वैसा करोगे तो युद्ध भले ही 18 दिन हो जीत तुम्हारी होगी।
0: क्या बात है, जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ राखी माँ, तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं,
1: मैं यही कहना चाहती हूँ दुख आगे दुख तो पीछे सुख है, पीछे सुख तो आगे दुख है, यही जीवन की कहानी है, डरो मत जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपको जय माता दी और आप ऐसी चमकती रहे और ऐसे सबका ज्ञान और मार्गदर्शन जो बढ़ाती है वो बढ़ाती रहे राखी माँ।
1: गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो।
0: थैंक यू, जय माता दी, बाय बाय। तो दोस्तों एक अच्छा सा गरबा वाला गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, आई मीन डांडिया वाली वाइब यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ। लौट कर आते हैं, कुछ अच्छे गिफ्ट्स हैं मेरे पास जो जीत सकते हैं आप आज की सुबह।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002243 जीरो।

क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा अमित मिश्रा की आवाज में भी आपने एंजॉय किया, साथ में शिल्पा राव दे रही थी साथ, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था। तमाम सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी वेरी मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए आज की मॉर्निंग। ये जो सुबह है ये और भी अल्टीमेट हो गई आप लोगों के साथ, थैंक यू गाइज फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभी बहुत सारे प्राइज आप जीत सकते हैं, और अगर आप कल कॉन्सर्ट भजन जामिंग में आना चाहते हैं, बुद्धि विहार में होने वाला है गांधी मैदान में, बहुत ही अच्छा कॉन्सर्ट पहली बार हो रहा है भजन जामिंग का, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे आओ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर करो और विन कर लो अमेजिंग पासेज। और बाकी अगर आप अगले दिन गरबा के पासेज जीतना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। और अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ जिसका जवाब देकर आप यहाँ पर जीत सकते हैं पूजा शाला की तरफ से एक स्पेशल प्राइज। कैसे आप जीत सकते हैं अभी बताऊंगा ना आपको मैं, बस आप ट्यून इन रहिए मेरे साथ, बहुत सारी चीजें जो आज की सुबह मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। आज 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस, इसी पर हमने श्री साई हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुर जी से बहुत सारी बातें की हैं। अंकुर गोयल जी हमारे बीच में स्टूडियो में थे, बहुत सारी उन्होंने जानकारियां दी हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और विस्तार से तो आज दोपहर को ठीक 12 बजे जरूर जुड़िएगा। श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी हमारे स्टूडियो में थे, हमने उनसे बहुत सारी बातचीत की है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सुन पाएंगे 12 बजे टॉक शो के जरिए। लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ इसके बारे में। हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया से बचाव के लिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और अपने जोड़ों का स्पेशल ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पेशल डेज जो है आज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तमाम सारी हैपनिंग चीज़ें चल रही हैं आसपास में, वो सब आपको पता है मुरादाबाद के अंदर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें कहीं ना कहीं होती रहती है, और सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है अपने शहर के अंदर। बाकी आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, नवरात्रि का दूसरा दिन, ढेर सारी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आपको दे के जा रहा हूं यहां पर, और साथ में मजेदार तोहफे भी दे के जा रहा हूं ताकि आपका जो ये नवरात्रि वाला ओकेजन है वो और भी स्पेशल हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:57 हो रहे हैं, फटाफट से लेकर आता हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन जिसका जवाब देकर आप जीतेंगे पूजा शाला की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। क्या स्पेशलिटी इनके बारे में बताता हूं अभी थोड़ी देर में, फिलहाल आने वाला गाना एंजॉय करो और कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ। कुछ कहना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो 9837896896 पे। ठीक है जी, आई एम वेटिंग फॉर यू मैसेजेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 विद मी सलमान खान। भाईजान यूट्यूब पे आ गए यार, कैन यू इमेजिन कि भाईजान को अब आप कंटेंट क्रिएटर के रूप में देखने वाले हो, कैसे क्या हुआ है बताता हूं अभी इस गाने के उस पार।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।

हेलो हाय वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को। ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और हम भी कहते हैं रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ढेर सारे व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचे हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच। बट अभी आप स्पेशल प्राइज जीतने वाले हैं जरा सी देर में। कैसे जीतेंगे पाजी, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अगर आप इसका जवाब देंगे तो आप जीत जाएंगे पूजा शाला की तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर। अगर आप ये जीतना चाहते हैं आज की सुबह, तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर आपने करना है और देना है सही जवाब फटाफट से। बट उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 9837896896। लेकिन अभी फिलहाल आज का कड़क सवाल, जिसका जवाब आपने मेरे को इमीडिएटली व्हाट्सएप करना है। दो लकी विनर को हम एक स्पेशल प्राइज देंगे और डांडिया नाइट कॉन्सर्ट के पासेस भी देंगे। अगर आप ये जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना होगा फटाफट से। कड़क क्वेश्चन का टाइम हो गया है लेडीज एंड जेंटलमैन। सुबह के 10:02 हो रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। आप सुन रहे हैं आनंद को, बस पॉजिटिव रहो यार, अच्छा सोचो, अच्छा मैनिफेस्ट करो। एंड लाइफ में जब आप अच्छा सोचते हो ना, अच्छा मैनिफेस्ट करते हो, तो यकीन मानो वो चीज डेफिनेटली अच्छे से रंग लाती है। फिलहाल बताओ कौन सा गाना है ये, इस गाने का बीच का पार्ट प्ले कर रहा हूं, ये पूरा गाना कौन सा, बस ये आइडेंटिफाई करना है। क्या बात है, व्हाट्सएप करके मुझे बता रहे हैं अभी जो गाना चल रहा है बेसिकली कौन सा गाना है। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर।

फटाफट व्हाट्सएप करिए अपने नाम के साथ अपना जवाब, हो सकता है अगला प्राइज आप ही जीत के भागो यहाँ से। क्या करना है, सबसे पहले अपना फोन उठाना है, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, कहाँ से आप, विच सिटी, उसके बाद अपना राइट आंसर, ही कौन सा गाना है जो भी चल रहा है मेरे रेडियो के स्टूडियो से, मैं यहाँ से प्ले कर रहा हूँ आपके रेडियो सेट पे, जो भी सुनाई दे रहा है, आप गाड़ी में है, आप घर में, आप किचन में, आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, जहाँ पे भी आपको मेरी आवाज़ जा रही है, बस आपको मुझे मैसेज करना है कि ये वाला गाना है।

0: Shed Nexus.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

भाई नचने का तो मेरा भी जी कर रहा है। सलमान खान पाजी अब जो है कंटेंट क्रिएटर बन गया यार, मतलब मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था यार। अभी आपने हाडी संधू का प्यारा से गाना सुना, हाडी संधू की आवाज, इतना अच्छा गाना सुन के मजा आ गया ना आपको यार, मेरे को भी आ गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, एक तो आपके मैसेज इतने अच्छे होते हैं ना, मजा आ जाता है। बहुत ही अच्छा, आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, चलो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। इस गाने में संजय दत्त हैं एंड साथ में एक बहुत ही कमाल की अभिनेत्री हैं जिनका नाम उर्मिला माथुरकर है, और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। गाना बहुत ही अच्छा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आज जो सवाल पूछा है।

देखो यार, ये फिल्मी स्टेशन है, यहाँ पे फिल्मी बातें होती है। अब यहाँ पे हम आपसे कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे आज की सुबह, बस आपको एक छोटे से सवाल के जवाब देना है और एक बढ़िया सा तोहफा जीत के जाना है। अगर आप जीतना चाहते हो तो बस फटाफट से आंसर कर दो अपने नाम के साथ ना सही जवाब। हमें इंतजार है आपके राइट मैसेजेस का। अभी फिलहाल सलमान खान भाईजान की बात कर लेते हैं। तो भैया आपको बताते हैं, सलमान खान ने आधारिक तौर पर यूट्यूब की दुनिया में कदम रख दिया है अपने भाईजान ने, बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान साहब ने, और उन्होंने अपने चैनल का नाम भी दे दिया है, उसको लॉन्च भी कर दिया है। आपको बता दें फैंस के साथ उन्होंने पहला वीडियो भी शेयर किया है। 9 अक्टूबर को लॉन्च हुए इस चैनल के जो है भाई साहब, सब्सक्राइबर भी एकदम से इतने ज्यादा हो गए ना, ये मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब सोच लो यार आप, यार भाईजान ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया भाई साहब। अगर आप भी उनके बारे में अब जानना चाहते हो तो अब आप उनको जो है यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, और उनके यूट्यूब चैनल पे अब जो है उनकी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो। सलमान खान से पहले आलिया भट्ट, वरुण धवन, कृति सैनन और प्रियंका चोपड़ा जो है, ये सभी सितारे यूट्यूब चैनल शुरू कर चुके हैं। अब फैंस को इंतजार था कि सलमान भाईजान कब अपना चैनल लेकर आएंगे। फाइनली जो सलमान भाईजान फैंस हैं उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज है यार, कि चलो अब भाईजान को आप एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर भी देख पाएंगे यूट्यूब पे, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज हो गई यार, है ना। मुझे भी सुनकर अच्छा लगा। फटाफट ग्लू के लिए IV जो है ड्रिप, जेंजी का एक नया ट्रेंड बड़ा पॉपुलर हो रहा है। डांडिया गरबा में जाने के लिए लोग ग्लोइंग स्किन के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भाई, अपने आप को चमकाने के लिए, शाइन करने के लिए लोग IV ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए आप, मतलब एक अलग ही यू नो ट्रेंड चल रहा है। कभी भैया डांडिया के लिए पार्टनर रेंट पे ले लो, कभी आप ये ट्रिप चढ़वा लो। मतलब आजकल हो क्या रहा है, जेंजी को पता नहीं चल रहा है यार। अभी ये एक अलग ही तरीके का जो है, मतलब IV वाइटमिन जो है बताया जा रहा है ये ड्रिप्स है, इसका चलन काफी बढ़ गया है, खासकर नवरात्रि में गरबा और डांडिया की तैयारी के बीच। कुछ जो हमारे आज के जेंजी हैं उनमें इंस्टा ग्लो की जो है ना भाई एकदम क्रेज बढ़ गया है। मतलब उनको थकान से राहत पाने के लिए वो क्या कर रहे हैं ना, वो इस ड्रिप को लगवा रहे हैं ताकि उनके स्किन पे ग्लो आ जाए और उनके स्किन पे चमक आ जाए, जो स्ट्रेस है वो भी ना दिखे और वो थोड़े से ज्यादा खूबसूरत और ब्यूटिफुल दिखे। उसके लिए अब ये लोग ये ट्रिप चढ़वा रहे हैं। हाय हाय, हमारा ग्लो तो ऐसे गाने सुन के बढ़ जाता है। शर्माने की जरूरत नहीं है परजाई जी, बस आप ऐसे अच्छे गाने सुनो। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है तो जल्दी से लौट कर आता हूँ तो बताता हूँ कौन है आज का विनर और कौन जीत रहा है एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर आज की सुबह। लास्ट मौका है, गाना आइडेंटिफाई करो।

चलो मैसेज कर दो 9837896896। अब चश्मे से होगा यूपीआई पेमेंट। जी हाँ, एक नया एआई चश्मा जो है लॉन्च हो गया है, जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। अब इससे जो है आप अपना ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। कितनी सारी फैसिलिटी आ गई ना। कल बच्चन साहब का बर्थडे था एंड ब्लीटेड हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब मेरी तरफ से। कल मेरी ऑफ थी तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, लेकिन मेरी तरफ से वंस अगेन एक बार फिर से ब्लीटेड हैप्पी बर्थडे बच्चन साहब को।

0: तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।

0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन ट्रैक अभी आपने जो है सुना नहीं है, ये मैं पूछ रहा था आपसे सवाल। और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, थैंक यू वेरी वेरी मच। और अभी मेरा जाने का समय हो गया है क्योंकि यार मुझे जाके अभी पूजा भी करनी है, आज दूसरा नवरात्रि है, फटाफट से मैं उठ के आ गया हूँ। और ऐसा नहीं है नहा धो के रेडी होके आया हूँ, बस जाके सिर्फ पूजा करनी है, टाइम हो गया है। जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नवरात्रि का दूसरा दिन, माता रानी आपके जीवन से सारे कष्टों को दूर करे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे आप खुश रहें, मस्त रहें, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो छू करके बाहर निकल जाए। फिलहाल मेरे पास राइट आंसर किसका पहुंचा है, जरा सुनते हैं उन्होंने क्या बताया।
1: राधे राधे राधे राधे मैम जी, आपने जो म्यूजिक सुनाया था उसका बोल है घूंघट में चांद होगा
0: जी,
1: और ये खूबसूरत मूवी का गाना है।
0: अच्छा जी, इतनी नींद में क्यों बोल रही है मैम, इतना अच्छा जवाब देने के बाद। कंग्रेचुलेशन, चलो आपको हम एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा देते हैं पूजा शाला की तरफ से, आप जीतो ये बढ़िया से इनाम। ने आप तो जीत ही लिया है आपने अलका जी, अब आपका घर जो है वो और भी खूबसूरत होने वाला है, खुशबू से भर जाएगा। कैसे आपको ही मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी डिटेल्स के लिए बस आपको रेडियो सुनना होगा और हमारी तरफ से जल्दी आपको एक कॉल जाएगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी। तो ये देखिए अलका जी जीत चुकी हैं आज की सुबह पूजा शाला की तरफ से एक स्पेशल हैम्पर। अगर आप भी विन करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो ऐसे शो में ट्यून इन रहिए। थैंक यू जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया आज की सुबह, उन सभी को दिल से थैंक यू। और बिल्कुल सही जवाब है, यही तो मैंने पूछा था आज की सुबह। इतना अच्छा ट्रैक है यार, ये इतना पॉपुलर गाना है। हाय हाय, सुबह ही मैंने इस गाने को प्ले किया था, जिन लोगों ने मेरा मॉर्निंग शो सुना था ऑफ कोर्स वो जान चुके हैं। अभी के लिए छोड़ के जा रहा हूँ दे दे प्यार दे टू से ये ट्रैक, इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। आई विल बी राइट बैक, अभी नहीं कल मिलता हूँ यार, फिलहाल जाने का टाइम हो गया है। अभी तो मैं आपके मैसेज को इन शॉर्ट पढ़ लेता हूँ फटाफट। घूंघट में चांद होगा, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इरशाद हुसैन अंसारी मंसूरी कॉलोनी से डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े हैं आज की सुबह। कोमल थैंक यू सो मच, थोड़ा सा लेट हो गए हो यार, कोई बात नहीं, कल जीत लेना। बहुत सारे प्राइज हैं हमारे पास, बहुत सारे गिफ्ट हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ऑफिशियल आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहाँ भी आपसे ढेर सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। और मेरा आईडी भी फॉलो कर सकते हो, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ। घूंघट में चांद होगा, दिस इज राइट आंसर। थैंक यू सो मच नशा फॉर पार्टिसिपेटिंग। कुंदन ये क्या लिखा, कुंदनपुर ढक्का से ये मैसेज आ रहा था मेरे पास, आंचल में चांदनी धर्मेंद्र कश्यप। ऑल राइट, थैंक यू जी। अफरोज फातिमा से जवाब दे रहे थे, थैंक यू सो मच। चलो यार मेरा जाने का समय हो गया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, इनको सुनते हैं।
1: सर
0: गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ सर।
1: ये सॉन्ग है घूंघट में चांद होगा
0: जी,
1: कुमार सानू की आवाज में।
0: बहुत ही बढ़िया यार, थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बाकी ऐसी ट्यून ही रहो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे आगे जीतने को मिलेंगी। ये स्टेशन है आपका फिल्मी वाला, बहुत सारी बातें होती है, काम की बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है, नॉलेज की बातें होती है, और अच्छे हैम्पर भी आप जीतते हैं, लोकल है भाई। हेलो हाय गुड मॉर्निंग, रामपुर से हमारे साथ क्षमा जुड़ रही है। हाय क्षमा गुड मॉर्निंग। विक्की सागर लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ यू, आई एम एब्सोल्युटली गुड क्षमा जी। हाउ यू आनंद, जय माता दी, कैसे हालचाल है। डॉक्टर राखी माँ से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कैसे हो बेटा। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, और इन्होंने अपने बेटे के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एंड थैंक यू सो मच, मैं आपका क्वेश्चन नेक्स्ट मंडे डेफिनेटली लेने वाला हूँ। हेलो आनंद सर, पहले तो मैं अपनी सासू माँ को कॉफी बनाकर दूंगी, क्योंकि कॉफी जल्दी बन जाएगी और चाय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसीलिए हस्बैंड को बाद में दे दूंगी। मेरा नाम डॉली है, गागन से बात कर रही हूँ। हाय डॉली, बढ़िया सा आंसर आपने वैसे दे दिया यार। तो चलो एक काम करते हैं, आपको डांडिया नाइट में बुलाते हैं, आप यहाँ पे आके एंजॉय करना, तो मैं आपको एक बढ़िया सा इन्वाइट दे रहा हूँ डांडिया नाइट का, ठीक है। कंग्रेचुलेशन आपके लिए। तो डॉली जी आपका ये मेरे को अच्छा लगा आंसर, थैंक यू वेरी मच। तो गाइज आप लोग भी पार्टिसिपेट करते रहा करो, बहुत मजा आता है यार। आप कहाँ जा रहे हो, आप दिल्ली रोड हो, स्टेशन रोड हो, या फिर आप हो कांच रोड, आप जहाँ भी जा रहे हो ऑल द बेस्ट। रोहित राणा का कॉल भी आया था मेरे पास, रोहित भाई थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार, अलीगढ़ से आप मुझे सुन रहे हो यार, बिग शाउट आउट आपके नाम। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज जुड़े हैं मेरे साथ, हाय गुड मॉर्निंग। मुंबई महाराष्ट्र से मैसेज पहुंचा है बबलू जी का, आनंद भाई गुड मॉर्निंग, आपने लिखा था ऐसी कौन सी चीजें जितना ज्यादा खींचोगे उतनी छोटी हो जाएगी, उसका राइट आंसर ये है। ऑल राइट, हाय गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है। 2026 1 अगस्त से सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम FM रेडियो सुनते हैं प्रतिदिन, और इस वक्त में घर के सारे काम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हेलो आनंद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, हैप्पी नवरात्रि। 12 अक्टूबर को आज मेरी शादी की सालगिरह, अरे क्या बात है, 33 साल पूरे हो गए, बधाइयां जी बधाइयां। सुजीत जी मेरे साथ जुड़े हैं सही जवाब के साथ, एंड हमारे साथ बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी, ये मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है कि इनका, जरा इनकी वॉइस नोट भी सुन लेते हैं यार, बहुत सारे वॉइस नोट आपके आते रहते हैं।
2: हेलो आज आनंद भैया, मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं मुरादाबाद से हूँ, आपको और आपकी टीम को और यूट्यूब पे सुनने वाले सभी लोगों को
0: अरे वाह,
2: मेरी तरफ से जय माता दी।
0: जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। क्या बात है विदिक, थैंक यू सो मच यार। कुछ और भी बोल देते तो शायद एक बढ़िया सा गिफ्ट भी जीत लेते। कोई बात नहीं, कल जीत के जाना है ना। फिलहाल मैं जाता हूँ। एंड रिहाना मेरे साथ जुड़ी थी, थैंक यू रिहाना। हमारे पास ये मैसेज आया था, गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़ रहे हैं। बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ लिखी है उन्होंने, थैंक यू मेरे भाई। एंड बाकी जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था टेक्स्ट मैसेज में, उनको भी दिल से थैंक यू। चलिए 10:22, कल मिलते हैं। बाय, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रेडियो बजाते रहिए। हैप्पी नवरात्रि पहुंच रहा है मेरे पास। गुड मॉर्निंग नेहा एंड स्वाति का। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। बाय गाइस, कल मिलते हैं। और बाकी ऐसे बहुत सारे प्राइज अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें फटाफट से जो है रेडियो पे ऐसी ट्यूनिंग रखना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता भैया कब कौन सा गिफ्ट आप जीत जाओगे।

0: मेडिकल एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आते

आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हाल चाल है आपके? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ, शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, आज बहुत ही ब्यूटीफुल डे, मन का डे, मंडे, और तारीख है आज 12 अक्टूबर की। समय हुआ है 10:31। और दोस्तों, आज का शुभ विचार भी बहुत ही खूबसूरत सा है और मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच रखते हैं। हाँ जी दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता, बल्कि अपनी सोच को बड़ा बनाना और कुछ नया करने की हिम्मत रखना भी जरूरी है। और कुछ नया करने की हिम्मत रखना भी जरूरी है। जो लोग हमारी परिस्थितियों में कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, वही अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों, आज खुद से एक प्रॉमिस जरूर कीजिएगा, दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि शुरुआत खुद से ही करेंगे। इसी ब्यूटीफुल पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं अपने शो की शुरुआत। और आप भी मेरे साथ आज इस ब्यूटीफुल शो में कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी जी की। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या, त्याग, संयम और दृढ़ संकल्प के प्रतीक है। मान्यता है कि माँ के स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, आत्मबल और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। तो सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी को नमन करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता बनी रहे। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और चलिए दोस्तों, करते हैं अपने शो की शुरुआत एक ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। आप कहीं मचाइए, बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अपने मैसेज भी पहुंचाइएगा आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और कल के मौसम ने तो मतलब पूरा ही चेंज कर दिया है ना, ठंड होने लगी। और रात तो हमने क्या किया, पंखा भी नहीं चलाया, बिना पंखे के सोए हैं क्योंकि कूल वेदर था। और ये प्यारा सा गाना, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बारिश

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ। और दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, हर दिन स्पेशल होता है ना, लेकिन आज क्या स्पेशल है खुशी आपको बताएगी। एंड उससे पहले यहाँ पर जो अमेजिंग आपके खूबसूरत संदेश आए हैं ना, उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है, हमें ये मिला है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दुर्गेश सैनी जी कल्याणपुर मुरादाबाद से आज की सुबह। और अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग क्यूटी, कैसी हैं आप, केम छो, बहुत ही अच्छे हैं, मजा माँ। अफरोज फातिमा जी अपना मैसेज पहुंचाती हैं और अपने अनोखे मतलब अंदाज में जो ये हालचाल पूछती है ना, तो आधी लिस्टनर से पहचाने जाते होंगे कि पक्का ही अफरोज ही हैं। और आज की सुबह इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, साथ में इनकी फ्रेंड्स भी हैं एंड लाइबा नजमा रामपुर से शबनम जी हैं, और ये थैंक यू पहुंचाती हैं आज की मॉर्निंग। वेरी वेरी यू नो मोस्ट वेलकम डियर, आप हमें थैंक यू पहुंचाते हैं। वैसे थैंक यू तो हमें भी आपको बोलना चाहिए, इतना प्यार जो आप एफएम मुरादाबाद से करते हैं और अपने संदेश पहुंचाते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबरी अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी का, और ये कहती हैं, हेलो मैम, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ मैम। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कश्मीर से मेहराजुद्दीन जी का आज की सुबह, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का, साथ में रईस दुल्ला अंसारी जी हैं, और ये कहते हैं, हैप्पी मंडे मॉर्निंग मैम, सेम टू यू, हाउ आर यू, आई एम गुड, आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी। और अगला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है वो मैं अभी आकर बताऊंगी, सब संदेश एक साथ थोड़ी ना पढ़ूंगी, थोड़ा इंतजार करो। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है पिंटू जी का मुरादाबाद से, इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है आज की मॉर्निंग, अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज। पुराने दिन बहुत स्पेशल होते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखो हर पल हमारा बहुत ही खूबसूरत होता है यार, तो उसको इंजॉय करना चाहिए, मेमोरेबल बनाना चाहिए। और क्योंकि समय तो बीत जाता है और बीता हुआ समय थोड़ी ना वापस आता है, तो अपने हर एक पल को इतना स्पेशल बनाइए कि जब कभी आप फ्री होकर आराम से बैठे फुर्सत में, तो इन दिनों को याद करें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए कि यार वो दिन भी क्या दिन थे, है ना। चलो अभी सुनो कुछ खूबसूरत गाने, लौट कर आती हूँ मैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या अब भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
4: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

देखिए दोस्तों, दिल तो हमारा भी नहीं लगता है आपके बिना। तभी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं रेगुलर मंडे टू फ्राइडे। और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 11:03। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी मुरादाबाद के वेदर के बारे में। एक्चुअली आज मुरादाबाद सिटी का वेदर कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है आज का मौसम, मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों मुरादाबाद में आज धूप और उमस का असर देखने को मिल सकता है। दिन के समय तेज धूप निकलने के साथ अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें और गर्मी में उमस के बचाव का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इतनी ही मौसम से जुड़ी ये जरूरी जानकारी के साथ आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे कृषि के साथ। और चलिए आपके जो संदेश आए उनको भी मैं शामिल कर लेती हूँ यहाँ पर। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है विकी सागर जी का मुरादाबाद से। कैसी हैं खुशी जी आप? खुशी जी तो हमेशा खुश रहती हैं सब। और ये कहते हैं कि हमें ना एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। बिल्कुल जी, माँ सभी की मुरादे पूरी करें। हम तो यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सभी संसार में स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबकी मुरादे माँ पूरी करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर जाएं। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नवीन नगर मुरादाबाद से गौरव टेलर जी का। और ये कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सर, आप सब बताइएगा कैसे हालचाल हैं आपकी। और ये कहते हैं कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत आप पेश करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। नेक्स्ट इन्होंने एक थॉट आज की सुबह शेयर किया है हमारे साथ कि इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर भगवान की नज़र होती है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा थॉट आपने आज की सुबह शेयर किया है हमारे साथ। देखिए दोस्तों, चेहरे को खूबसूरत बनाना आसान है लेकिन दिल को खूबसूरत बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत, किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है और किसी के प्रति कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट नहीं रखने हैं। अगर सोचना ही है तो अच्छा सोचो यार और ज़िंदगी में आगे बढ़ती रहो, खुशियाँ बांटो, खुश रहो। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाया है आज की सुबह। गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, ये भी हमारे हालचाल जान रहे हैं तो हम बहुत ही अच्छे हैं। मोहम्मद उस्मान जी का मैसेज हमारे पास आया है फ्रॉम मुरादाबाद रामपुर दुराहा सी। और कहते हैं कि हम आपको रेगुलर सुनते हैं और आज हमको एक मैम ट्रैक सुनवा दीजिएगा। वाओ आज आप लखनऊ जा रहे हैं तो सर ने कहा है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैम, इन सफ़र के ऊपर एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सर आपने कहा और खुशी ट्रैक प्ले नहीं करें ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए सफ़र को खूबसूरत बनाना खुशी की जिम्मेदारी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये जिम्मेदारी हम पर सौंप दीजिएगा और हम इसको बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का। साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। और ये भी गुड मॉर्निंग आज की मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। जो भी ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो चलिए विवन सुनते हैं कुछ खूबसूरत ट्रैक, उसके बाद लौटकर खुशी आती है। एंड अभी और बहुत ही खूबसूरत अपडेट है जो जिनसे आपको रूबरू कराना है, तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना। यूं ही कर जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, इसीलिए हम कहते हैं कि बस हमारे साथ बने रहिए। और जब हम मिलकर साथ चलते हैं ना एवरीवन, तो सफर बहुत खूबसूरत हो जाता है।

और एवरीवन, यहाँ पर आपके खूबसूरत संदेश तो आ ही रहे हैं, उनको भी हम बिना किसी देरी के शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है प्रियांशी का, और ये मैसेज हमें पहुंचाती है न्यू मुरादाबाद से। जय माता दी, हमें ये प्यार से बोलती हैं एंड आपको भी जय माता दी नवरात्रि की शुभकामनाएं पहुंचाती हैं। और साथ में अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर पहुंचा है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का। कहते हैं खुशी जी जय माता दी, एंड खुशी जी बताइएगा कैसी हैं आप। देखिए सर, आप मुझे सुन ही रहे हैं, देख तो नहीं पा रहे लेकिन हाँ सुन जरूर पा रहे हैं, तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी एफएम सुनने वाले सभी दोस्तों को भी जय माता दी, आपको भी जय माता दी। और इन्होंने एक बहुत प्यारे गाने की रिक्वेस्ट की है, एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी पलवली जी आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है, ये हमें कहते हैं हमारी मनपसंद आरजी खुशी जी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, पोस्ट लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए खूबसूरत यहाँ पर बातें भी चल रही हैं एंड जानकारियां भी आपको मिल रही हैं और गाने तो सुनने को आपको मिल ही रहे हैं।

अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दिव्यांश का, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं, इन्होंने अपना मैसेज हमें पहुँचाया है कुंदनपुर मुरादाबाद से, और ये भी हमें आज की सुबह गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो चलिए विवान सुनते हैं कुछ खूबसूरत गाने, उसके बाद खुशी लौट कर आती है। आप कहीं मर जाइए, बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने शानदार मैसेज भी यहाँ पर पहुँचाइएगा। अभी लौट कर आती हूँ तो एक इंटरेस्टिंग सा मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ, एंड उसका अगर आप जवाब देते हैं तो फिर आपको क्या मिलने वाला है बताएंगे आपको, एक सरप्राइज है आपके लिए। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ध्यान से रेडियो सुनना होगा और अपने मैसेज भी पहुंचाने होंगे, तो एक्टिव रहिएगा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और आपके यहाँ पर खूबसूरत मैसेज जो आ रहे हैं एंड उनको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिकेट की दुनिया की। बहुत ब्यूटीफुल अपडेट है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 11 अक्टूबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज के सामने 224 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में कैरेबियाई टीम 200 रन की रन ही बना सकी और भारत ने मुकाबला 14 रनों से जीत लिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पिछले हार का बदला भी चुकाया है। तो दोस्तों ये थी हमारे खेल जगत से ये ब्यूटीफुल अपडेट और बहुत बहुत बधाइयां हमारी टीम इंडिया को। एंड दोस्तों अभी हम आपसे करने वाले हैं क्या, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं और अगर आप देते हैं सही जवाब तो आज आप जीत सकते हैं अमेजिंग प्राइज, एन अमेजिंग गिफ्ट। क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखो यार। और हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है, ये खूबसूरत सा मैसेज हमें पहुंचा है आज की सुबह अनु ने, एंड अनु जी का मैसेज हमारे पास आया है धामपुर से और ये आज की सुबह हमें सुन रही हैं एंड कहती हैं कि मैम हम एफएम मुरादाबाद सुनते हैं जब जब हम ड्राइव करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है कार में रेडियो सुनना और खूबसूरत गाने सुनने का आनंद ही अलग है। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच डियर अनु, आपने अपना ब्यूटीफुल मैसेज पहुँचाया है आज की सुबह। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती है नैना जी न्यू मुरादाबाद से और ये भी हमें गुड मॉर्निंग विश करती हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ एवरीवन, आप सब तैयार है ना? अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छे लिसनर है हमारे, बड़ा एक्टिव रहते हैं। तो आप मैसेज पहुँचाने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? हाँ जी जल्दी से मैसेज पहुँचाइए, नंबर हमारा है 9837896896, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पर आपको अपना मैसेज पहुंचाना है। तो बिना किसी देरी के आप पहुंचाइएगा अपना खूबसूरत सा मैसेज एंड तब तक मैं पहुंचाती हूँ आप तक एक खूबसूरत सा गाना जो मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है कि खुशी जी आप मुझे भी प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं एक अमेजिंग ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे बातचीत, आप कहीं मचाइए, बस बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। कैसे हाल चाल है आपके? ओहो, आज तो बड़े सोने लग रहे हो जी आप। काला टीका लगा के रखो, नजर ना लग जाए आपको, शर्मा गए आप हाँ। और दोस्तों, मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा सवाल करने वाली हूँ, अभी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आज की मॉर्निंग मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपको मिलने वाला है एक अमेजिंग गिफ्ट। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन माहौल में बात करते हैं। देखिए, खूबसूरत सा पावन ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना नवरात्रि से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आज की सुबह। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन माहौल में हम बात करते हैं गुजरात की, जहां इन दिनों रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़ों, ढोल की थाप और तालियों की गूंज हर किसी को झूमने पर मजबूर कर देती है। तो मुझे बताएगा गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े उत्साह और धूमधाम से किया जाता है? जी हाँ, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ किया जाता है, जरा मुझे बताइएगा, अपने जवाब पहुंचाइए, हमें इंतजार है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जवाब बहुत ही दिलचस्प है और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो हम जानते चाहते हैं कि आपके जवाब भी इंटरेस्टिंग आए। जल्दी से हमें अपने जवाब पहुंचाएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ अपना क्वेश्चन आज की सुबह। गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है, किया जाता है, बताइएगा। उस नृत्य का नाम आपको बताना है। आप अपने जवाब हमें पहुंचाएंगे एंड उससे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं एक और प्यारा सा गाना। एंजॉय कीजिएगा आप एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है प्रतीक्षा ठाकुर का और ये मैसेज हमें पहुंचाती है गांधीनगर से। एंड कहती है, मैम आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और सुनने वाले सभी दोस्तों को भी। थैंक यू सो मच डियर, एंड आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। और सुनिएगा ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक दर्शन रावल साथ में दे रही है, साथ तुलसी कुमार।

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। देखिए, आप कोई भी कलर की साड़ी पहनिए, आपके ऊपर सब कलर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आप इतनी प्यारी जो हैं। और अब एक अच्छी खबर उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में चल रही लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। इस पहल के तहत 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिलने की जानकारी सामने आई है। और ये महिला अपनी मेहनत और हुनर के दम पर आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। सच ही है दोस्तों, जब महिलाओं को अवसर मिलता है ना, तो वो ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की तस्वीर बदलने की ताकत रखती हैं। और इस योजना का हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लाभ उठा रही हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत बन रही हैं। तो बहुत अच्छी अपडेट है ये। और अब बात करते हैं, हमने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था आज की मॉर्निंग, जो कि बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन हमारे श्रोता जो है ना, वो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, आप इस बात से टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और आज का सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े उत्साह और धूमधाम से किया जाता है, जरा बताइएगा। हाँ जी, गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े धूमधाम से किया जाता है, आपको उस लोक नृत्य का नाम बताना है और एक ब्यूटीफुल गिफ्ट आपको जीत कर जाना है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। अभी ये मौका आपको मिला है, तो जल्दी से अपने जवाब पहुंचाइएगा।

बहुत सारे जवाब हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको भी ये मौका मिल जाए, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो? हाँ जी, अपना जवाब जल्दी से हमें पहुंचाएगा। और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना एंड अमेजिंग ट्रैक है फ्रॉम द मूवी रामलीला से, और इस खूबसूरत गीत को गाया है श्रेया घोषाल जी ने अपनी मधुर आवाज में। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं ये ट्रैक, लौट कर मैं आती हूँ एंड देखते हैं आज के सुबह कौन बनते हैं हमारे शो के लकी विनर एंड किन को मिलता है आज का ये अमेजिंग गिफ्ट। कौन जीत कर जाता है वो तो हम आकर बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये गाना एंजॉय करूँ।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: मुझे पता है डांस तो आपने अभी भर भर के कर लिया है भाई, क्योंकि इतना अमेजिंग ट्रैक जो था, नगाड़ी संग ढोल बाजे, और जब ऐसे गाने सुनने को मिलते हैं ना तो हम खुद को रोक नहीं पाते हैं एंड हमारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और मैंने भी थोड़ा सा डांस किया है, मुझे पता है आपने तो भरपूर डांस किया है। और दोस्तों आज की मॉर्निंग मैंने आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा था, उसके बहुत सारे जवाब हमारे पास आए हैं। मैंने आपसे मालूम किया था कि गुजरात में नवरात्रि के दौरान कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य बड़े उत्साह और धूमधाम से किया जाता है, उसका उस नृत्य का नाम बताइएगा। और हमारे पास इतने सारे जवाब आए, वाओ। सबसे पहले तो हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे एवरीवन, क्योंकि आप सुन सबने कमाल कर दिया है। एंड मेरा बस चलता ना तो मैं सबको जिता देती, लेकिन क्या करूं, मेरा बस नहीं चलता है। चलो अभी यहां पर कौन बनाए विनर मैं आपको बताती हूं, नाम उनके अनाउंस करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि वक्त भी हो रहा है हमारे जाने का। और हमारे पास यहाँ पर हमें सबसे पहले जवाब पहुँचाए हैं, उन्हीं की आवाज़ में सुन लेते हैं कि आज की सुबह हमारे पास सबसे पहले सही जवाब हमारी कौन है वो डियर लिसनर जो जीतने वाली है आज का अमेजिंग गिफ्ट एंड अमेजिंग पासेस। तो जरा देख लेते हैं डानी नाइट की कौन पासेस जीतने के लिए तैयार है, उनकी आवाज़ सुन लेते हैं और आपको भी सुनवा देते हैं बिना किसी देरी के।
1: खुशी जी, राधे राधे, गुजरात का नृत्य है गरबा।
0: राधे राधे, आपको भी नैंसी सोनी जी का मैसेज आया है और आज की सुबह आप बनती हैं हमारे शो के विनर। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है एक और, ये मोहतरमा का नाम क्या है जरा हम आपको बता देते हैं एवरीवन, क्योंकि इन्होंने भी सही जवाब पहुँचाया है आज की सुबह। और ये मैसेज हमें पहुँचाती है लाइन पार प्रकाश नगर से, गली नंबर 2 से, एंड इनका नाम है निरांशी यादव। एंड ये कहती हैं डांडिया गरबा है मैम, पॉपुलर नृत्य, एग्जैक्टली राइट। और आपको मिलते हैं सुपर अमेजिंग डांडिया नाइट की पासेस, तो आपको हमारी तरफ से कॉल जाएगा और आपको मिलने वाले ये अमेजिंग पास, आप वहां पर एंजॉय कीजिएगा, डांस कीजिएगा एंड डिलीशियस फूड का आनंद भी उठाइएगा। अब आप डांस करें, कुछ खाए पिए ना, ऐसे कैसे हो सकता है। आंजी सोने सोने बन के आइएगा, मुझे पता है आपने गरबा प्रैक्टिस कर ली है, ड्रेस भी आपने तैयार करके रखी है, बस आपको एक मौका चाहिए था जो कि मिल चुका है अब आपको। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है शफी अहमद अंसारी जी का, और इन्होंने भी दिया है सही जवाब। थैंक यू सो मच सर, आप ने भी सही जवाब दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आपके लिए जोरदार तालियां हो जाएं।

0: तो बहुत बहुत बधाइयां जी, कंग्रेचुलेशन व्हाट ऑफ यू. आपको मिलता है आज डांडिया नाइट के अमेजिंग पासेस, आप जाकर एंजॉय कर सकते हैं. एंड गरबा नवरात्रि जो चल रहे हैं, नवरात्रि गरबा फेस्टिव जो चल रहा है, उसको एंजॉय कीजिएगा. एंड सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6. और हमारे पास यहाँ पर कुछ और मैसेज आए हैं जिनको मैं जल्दी से शामिल करना चाहूँगी बिना किसी देरी के. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम खुशी मैम, कैसे हैं आप? आई एम नेहा फ्रॉम मुरादाबाद, और आज बहुत टाइम के बाद मैंने आपको मैसेज किया है. आपको सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच डियर. तो चलिए एवरीवन चलते हैं हम, लेकिन आपसे मिलेंगे, सी यू सून. तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल खोल कर मुस्कुराइए. हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन.
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है.
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने.
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है.
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में. ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है.
0: अच्छा.
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद.

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: इन दिनों आप हमारे रेडियो से लगातार सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत करवाया जा रहा है। तो आज हम सितंबर महीने की फसलों की देखभाल के संदर्भ में आपको बताने के लिए आए हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर एके सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सिंह साहब।
2: स्वागत के लिए आपका शुक्रिया संजय जी, और सभी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको मेरा नमस्कार।
1: तो सबसे पहले तो हम सिंह साहब ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संचालित पीएम के एस क्या योजना है, और इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या जानकारी देंगे?
2: जी, भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है, और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम केएस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन

0: मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद, जिनमें कि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, एनपीके हैं, और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है, जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं, और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है, और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे, उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे। लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं, वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं, जो पीएम केयर्स के हैं, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है, उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है, और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा, तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्यवर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है। तो वह तालिका है अब पीएम केयर्स के पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं
1: ये
0: बिना।
1: जो केंद्र है देश भर में कहाँ कहाँ पे हमारे किसानों को उपलब्ध होंगे, जैसे छत्तीसगढ़ की बात है या उत्तर प्रदेश की बात है, तो वो कहाँ पे वो केंद्र?
0: जी इसमें जो भी खाद के बिक्री के केंद्र है वो सारे अब इसी नाम से जो जाने जाते हैं, तो उसके लिए कोई आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये कोई अलग से होगा। जहां से आप अब तक उर्वरक या खेती के आदान जो लेते आए हैं और जहां से अब ले रहे हैं, वो सारे पीएम के स्कीम में शामिल है।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई अलग से ये दुकानें खुली है, नहीं, इनको एक अलग से नाम दिया गया है और इनके लिए कुछ जो कार्यशैली तैयार करी है उर्वरक मंत्रालय ने और भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से, कि आपको इस ढंग से अब अपने विक्रय का काम करना है और जो किसानों को सलाह देनी है उसके उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी उर्वरक या खेती के आदान जो हमारे किसान प्रयोग कर रहे हैं उसका समुचित लाभ उनको मिले और उनका संतुलित उपयोग हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है कोई चीज इस्तेमाल करनी तो वो हम जो किए जा रहे हैं और उसका कोई तरीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है, तो ये इसलिए है। तो मेरा अनुरोध है कि आप इन सेवाओं का लाभ उठाइए, कि भारत सरकार ने बहुत सोच के ये सेवाएं आरंभ करी हैं और इनके बड़े लाभ हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दुकान पे आ रहे हैं, आप अपनी बात समझा नहीं पाते, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इसमें ऐसी भी व्यवस्था है कि उर्वरक की जो कंपनियां हैं वो और कृषि विज्ञान केंद्र वो आपके खेत पर जाके भी आपकी समस्या को देख के उसका समाधान आपको जो बताएंगे
1: जी।
0: तो एक बड़ा ही जो अच्छा ये कार्यक्रम है, महती कार्यक्रम है, और मैं जो जो आपसे अनुरोध यही करता हूँ कि सारे किसान भाई इसमें शामिल हो और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें।
1: और जो लोग अभी तक शामिल हो चुके हैं वो लोग देख ही रहे होंगे कि उन लोगों को बहुत लाभ मिल रहा
0: हो
1: है
0: रहा
1: इसका।
0: बिल्कुल जरूर।
1: तो जो उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक संबोधन भी दिया था
0: जी,
1: हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि उसका क्या उद्देश्य है?
0: जी बिल्कुल, असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च ना हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, स्वास्थ्य खराब होगा तो हमें फिर आगे चल के अच्छी फसलें नहीं मिलेंगी
1: और वो जो फसलें अच्छी नहीं मिलेंगी ज्यादा उर्वरक और नुकसान करने वाली तो वो हम भारतवासियों को भी जो हम खाएंगे तो
0: हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा
1: जी।
0: तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाए।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है और वो है ये धरती माता को बचाना, हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार जगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन

0: के पौधे जो हैं, तो उस फसल की देखभाल कैसे की जाए, इसके बारे में
1: जी
0: सलाह
1: हाँ,
0: दीजिए।
1: वैसे तो सभी किसान भाई इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अभी दो चीजें मुख्य हैं। एक तो उसका पोषण। अब पोषण से जब बात आ जाती है धान में, तो हम ये ना देखें कि जो स्थूल उर्वरक है, जैसे कि जो कट्टे में खाद आ रहा है, उससे ही संबंधित न रहे। अगर हमें कहीं कहीं जो लगता है कि उसमें पोषण की कमी है, तो आजकल ऐसे भी पोषक तत्व तो आ रहे हैं जिनका कि हम स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है जिंक की कमी है, तो आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। जिंक की मात्रा ले लें और उसका आप स्प्रे करें। जैसे कि 350 ग्राम जिंक है और करीब करीब आप 150 ग्राम चूना ले सकते हैं 100 लीटर पानी में घोल के। जब फसल आपकी 45 से 60 दिन के बीच की हो, उस समय पर अगर आप एक स्प्रे करेंगे, तो जिंक की कमी पूरी हो जाती है। जिंक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और धान में खास तौर से इसका बड़ा लाभ मिलता है। अगर जिंक की कमी है, तो फसल उत्पादन में कमी आती है और जो अनाज के अंदर पोषक तत्व होते हैं, उनमें काफी कमी हो जाती है। तो आप ध्यान दें, अगर खैरा रोग से संबंधित कोई असर दिख रहा है, जैसे कि जो धान का पत्ता, उस पर आपको जिंक जैसा लगता है, या मतलब ऐसी जो जंग जैसी हल्का सा भी नजर आता है, तो जिंक की कमी है, आप उस पर स्प्रे करें। इसके अलावा बहुत सारे और भी फर्टिलाइजर आते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं, जिनको हम एनपीके बोल देते हैं। जैसे हमारा उत्तम रिचार्ज आता है, अलग अलग कैटेगरी 19-19-19 होता है, 0-32-0 होता है, ऐसे अलग अलग तरह के ग्रेड होते हैं। उनको भी आप पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये पोषक तत्व की बात रही। इसके अलावा कीटों से संबंधित है, तो कीटों में जैसे कि आपका जो तना छेदक है, पत्ती मोड़क है, तो उसके लिए हमारा एक तो उत्पाद आता है ऑनविक्स। ये आप 4 किलोग्राम और खेत की मिट्टी हो या कोई भी सूखा रेत, तो उसमें इसको मिलाएं और आप इसको खेत में फेंक सकते हैं। जहां पे पानी है तो आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है हमें स्प्रे करना है, तो एक दवा आती है प्लोटा के नाम से, 60 ml दवा है और करीबन 150 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें बात ये ध्यान रखें कि अगर आपके खेत में जो जो जो धान का पौधा है, उसका आकार ज्यादा है, तो पानी की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अगर छोटा है, तो थोड़ी कम कर सकते हैं। दीमक वगैरह है, तो एक उत्पाद आता है स्टेमो के नाम से, ये 8-10 किलो मात्रा है, रेत में इसको मिलाएं और 1 एकड़ के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ फोल्डर है, तो इसके लिए एक दवा आती है लैपीबीर, 100 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका जो है छिड़काव करें। और इसके अलावा संज्ञा जी, कुछ रोग होते हैं, रोग जैसे सीथ ब्लाइट है, सहसा मारी ब्लास्ट है, ये बहुत सारे रोग हैं। तो रोग के बारे में ये कहा जाता है कि रोग से अगर पौधा खराब हो गया, तो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन रोग को वहां रोका जा सकता है। तो एक दवा है एजोल करके, ये 200 ml दवा है।
0: अच्छा,
1: जब आपको इसके दिखे लक्षण, इसमें क्या होता है, अंग मारी मतलब पौधा आपका सूखने सा लगता है, तो 200 ml दवा 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका छिड़काव करें। इसके अलावा फुलकोट भी एक दवा है, ये भी 150, ये फफूंदनाशी है। ये करीब करीब सारी फफूंद से संबंधित बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए ये काम आते हैं। इसके अलावा उत्तम लैक्जोन है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में दवा हो, एजोन है, लॉकजोन है, फुल

0: जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है और उसमें कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं, या उनकी उस फसल की देखभाल वो लोग कैसे कर सकते हैं?
1: हाँ, सोयाबीन में अगर जैसे कि कीड़े आते हैं खास तौर से, तो अगर कीड़ों में देखे सेमी लूपर होता है, ऐसे ये जो कैटरपिलर टाइप का होता है, जो धीरे धीरे चलता है, कभी ऊपर उठता है, नीचे जाता है, ऊपर जाने से उठता जाता है, तो इसको सेमी लूपर बोल देते हैं, जो तना मक्खी बोल देते हैं। इसके लिए भी एक उत्तम चोटा दवा है, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। पीड़ा के नाम से एक दवा आती है, वहां आप प्रयोग कर सकते हैं। वीर कोमली के नाम से, मतलब ये सारे कीटनाशक है। अब इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, उनका प्रयोग करें। दूसरा, इसमें ध्यान ये रखें कि जब भी आप स्प्रे करें तो ऐसे समय पर करें कि जब आपको लग रहा हो कि खेत के जो हमारी फसल है उसकी पत्तियां सूखी हैं, और दोपहर के आसपास करें या सुबह के टाइम कर लें, और उसके बाद करीब करीब 8-10 घंटे बारिश न हो, तो जो मतलब दवा है उसका असर रहेगा और वो कीड़े मरेंगे। तना मक्खी है, उसके लिए लैम्डा स्ट्रॉन्ग के नाम से एक दवा आती है, 120 ml दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मक्खियां जैसी उड़ती रहती हैं, उसको तेला बोल देते हैं, सफेद रंग की भी होती है और काले रंग की भी होती है। ये जो एक तरह से मक्खी है, ये क्या करती है, ये रोग को फैलाती है एक खेत से दूसरे से, दूसरे से, ऐसे करके। तो इसके लिए आईमैक्सो नाम से एक दवा आती है, 80 से 100 ग्राम दवा है, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें और इससे इसको रोकें। लेकिन साथियों, जैसे ये तो इस वर्ष की बात होगी, लेकिन आगे के समय के लिए मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर रोगों की रोकथाम या कीटों की रोकथाम के लिए आप चाहते हैं कोई सार्थक उपाय हो सके और उनकी संख्या कम रहे, तो उसके लिए आप जिस खेत में फसल लगा रहे हैं उसके चारों ओर कोई अन्य ऐसी फसल अवश्य लगाएं जो कि जिसकी लंबाई ज्यादा होती है। जैसे कि सोयाबीन लगा रहे हैं, तो उसके आसपास की जो वो जो मेड़ है उस पर आप 4-5 कूड़ किसी और फसल के लगाएं जो इस समय लगती है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे कीट आपके खेत तक
0: नहीं
1: नहीं आ
0: पहुंच
1: पाते
0: पाते।
1: हैं, और जब एक बार आपने उसका उपचार कर दिया तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे, उस खेत के खेत में ही वो कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर खेत खुला एक्सपोज रहता है, तो आपने अभी स्प्रे किया तो वो यहां से भाग के दूसरे खेत में चले जाएंगे, और जैसे ये असर कम होगा
0: फिर वापस आ
1: फिर
0: जाएंगे।
1: वापस आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप स्प्रे करें उसके लिए टंकी वगैरह पूरी अच्छी तरह से साफ कर लें, पानी जो लें वो साफ पानी लें, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी होती है तो दवा का असर कम हो जाता है, ये चीज आप ध्यान रखें। और कोई भी कीटनाशक या फफूंदनाशक आप प्रयोग जब करते हैं तो उसका कम से कम जो 15 दिन तक असर रहता है, तो इंतजार करें कीड़ों का जो खत्म होने का। हड़बड़ी में 5 दिन बाद ही आपको लगा और आपने फिर दोबारा स्प्रे ऐसा न करें, उससे क्या होता है कि जो कीटे हैं, जो कीड़े हैं, उनके ऊपर जो दवा का असर फिर आने वाले समय में कम होता है, उनमें उसको रोकने की क्षमता आ जाती है, तो ये ध्यान रखें। और जहां तक रोग की बात है, तो जैसे मोजेक रोग है, रतुआ रोग है, और फफूंदी से संबंधित और रोग हैं, तो इनके लिए एक उत्तम एजोल जो दवा है 200 ml प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा हमारा जो फफूंदनाशी आता है जिसको मैंजिम बोलते हैं, 400-500 ग्राम लें, 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका स्प्रे करिए, तो इससे बहुत सारे रोगों का नियंत्रण किया जा सके। आपको लग रहा है कि किसी दूसरे और के खेत में अगर कोई रोग है तो आप सुरक्षात्मक भी एक स्प्रे कर सकते हैं।
0: जी श्रोता साथियों, खेती किसानी कार्यक्रम में आप इस समय हमारे कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में जानकारी। और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर एके सिंह, जो चंबल फर्टिलाइजर्स में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं। तो इन्होंने धान की फसल और सोयाबीन की फसल के बारे में, तो कैसे देखभाल की जाए इसके बारे में सलाह दी। अब हम आपसे चाहेंगे डॉक्टर साहब की मूंगफली की फसल
1: जी
0: जिन किसानों ने लगाई
1: बिल्कुल,
0: है, तो वो लोग उसकी देखभाल कैसे
1: हाँ
0: करें इसके
1: बिल्कुल।
0: बारे में बताएं।
1: मूंगफली की फसल हमारी एक तरह से खाद्य फसल है, और इसमें प्रोटीन की काफी मात्रा पाई जाती है, और सभी क्षेत्रों में लगभग जहां भी उपयुक्तता होती है, थोड़ी हल्की जमीन होती है वहां पर हम इसको उगाते हैं। पोषण के रूप में अगर हम ऐसा कह लें तो इसमें एक हमारा जो है उत्पाद आता है आरिस गोल्ड के नाम से, ये जैव उत्पाद है, ये 500 ml है, और इसको पानी में घोल के आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। इसके अलावा हमारा एक जो फैटलेस के नाम से भी आता है, इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, ये करीब करीब 1 लीटर पानी में 5 ml के आसपास आप घोल लें और फिर इसका आप स्प्रे करें। 100 लीटर पानी क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि फसल को मिलते हैं। अब बात

0: पत्तियों कीड़ों के बारे में, तो ऊपर से ये पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, तो वो जो पत्तियों को खाते हैं और उनको खत्म करते हैं। अब बात ये आती है कि मूंगफली तो नीचे लगती है, तो ऊपर क्या फिर कोई टेंशन की बात तो है नहीं।
1: पत्ते खा रहे हैं तो
0: हाँ,
1: खाते रहेंगे।
0: लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो पत्ते होते हैं इनसे भोजन बनता है फसल का, ये धूप से भोजन
1: जी
0: बनाते
1: हाँ,
0: हैं। और वैज्ञानिक तथ्य तो ये कहा जाता है कि 80 से 90% जो भोजन है वो पौधे अपने ऊपरी भाग से बनाते हैं,
1: जी हाँ, प्रकाश
0: हाँ,
1: ट्रांसलेशन की
0: प्रकाश
1: क्रिया से।
0: संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आप इनकी रोकथाम करें, इसके लिए प्योटा नाम से दवा आती है, कीटनाशक है, 200 लीटर पानी में घोल के 60 ml आप छिड़काव कीजिए। और एक इल्ली आती है, तंबाकू की इल्ली बोलते हैं, इसके लिए प्योटा से भी ये कंट्रोल हो जाएगा, और अगर प्योटा नहीं है योटा है तो योटा से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीटों का कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और धीरे धीरे अगर उनको मौका मिल गया तो वो नीचे भी घुस के जो फलियां हैं उन पर भी वो आक्रमण कर सकते हैं। फिर जहां तक रोग की बात आती है, तो मैं यही कहूंगा कि इसके लिए एक बड़ी सीधी सादी दवा है जिसको हम मैंजिम बोल देते हैं। और मैंजिम लगभग कोई भी, जैसे आपका लग रहा हो टिक्का रोग हो, धब्बा रोग हो, रोली गेरुआ रोग हो, इनमें सब में ये करीब करीब काम आ जाता है। 200 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोल के आप इसका छिड़काव करें। छिड़काव के समय सावधानी में खास तौर से देखने वाली बात यही है कि उससे पहले कोई बारिश न हुई हो, क्योंकि अगर जो पौधे में पानी ऑलरेडी उसकी पत्तियों में अच्छा है तो वो जो दवा आप स्प्रे करें उसको अच्छे से सूखेगी नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति हो चुकी है, तो उसके अंदर थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए सूखने की, तो वो सूखेगी, पानी सूखेगी तो उसके साथ उसकी दवा भी जाएगी, और उसके 8-9 घंटे तक मौसम खुला रहे तो
1: जी,
0: बहुत उपयोगी रहता है। तो ये मूंगफली के बारे में जानकारी रही।
1: देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के किसान इस समय सितंबर महीने में जिन फसलों को लगाते हैं उनमें धान, सोयाबीन और मूंगफली के बारे में जानकारी डॉक्टर एके सिंह दे चुके हैं कि कैसे उसकी देखभाल की जाए हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम इनसे जानकारी चाहेंगे कि मक्का की फसल की देखभाल कैसे करें वो
0: जी
1: किसान जिन्होंने इस समय मक्का की खेती की हुई है।
0: हाँ, मक्का की फसल अब अगर देखें सरिया जी, तो जो है जायद में भी होने लगी है। जायद मतलब रबी की फसल कटी है उसके एकदम बाद,
1: अच्छा,
0: और काफी लाभकारी जो खेती होती जा रही है, और काफी लोग करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उसके बाद फिर धान लगा लेते हैं या कोई और फसल लगा लेते हैं खरीफ में। तो पोषण के लिए तो यह है कि अभी ये जो कटाव के आसपास आ गई है, तो अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ इसमें खुराक की जरूरत है या हमें जो देना चाहिए, तो इसमें आप हैरिस गोल्ड के नाम से जो जो हमारा एक उत्पाद आता है, 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से घोले, और 1 एकड़ में 100 से 200 लीटर आप जो पानी का इस्तेमाल करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। अगर कोई जैसे सॉल्यूबल या जो NPK मिलते हैं, ये 1 किलो की पैकिंग में भी मिलते हैं, अधिक में भी मिलते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। जैसे 19:19 है, पोटाश से संबंधित कुछ होते हैं, तो उनका भी आप स्प्रे आराम से कर सकते हैं। इस समय पर कोई अन्य स्थूल उर्वरक न डालें, क्योंकि उसका उतना लाभ
1: नहीं
0: नहीं
1: होगा।
0: होगा, और आपको ठीक है खर्च जरूर कर देंगे तो, लेकिन उसका कोई लाभ आपको ज्यादा नहीं मिलता। कीटों से संबंधित बात है, तो करीब करीब कीटे जो इस समय पे एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे इसलिए होते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, उन्हें हरी फसल चाहिए कोई भी, तो हरी फसल सॉफ्ट होती है, उसको खाने में उन्हें आसानी होती है। तो एक तना छेदक है, उसके लिए उत्तम प्योटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रस चूसने वाले जो कीड़े जैसे चैपा तेला, वैसे आमतौर पर ज्यादा नहीं देखा जाता मक्का में, लेकिन अगर वो वहां पर आ गया है तो उसको अपना जीवन काल पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपना कुछ भोजन ढूंढता ही है, तो रस चूस सके हैं, जैसे कि चैपा तेला है, आईमेक्स उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। सफेद लट है, तो उसके लिए भी आप कोई इस तरह की दवा ले सकते हैं, स्टेमो है, 8 किलोग्राम है, उसको भी आप 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ कीड़ों के बारे में जानकारी रहेगी। कीड़े को होता क्या है, इस समय पे जो आपका भुट्टा लग रहा है उसको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अगर पौधे के अंदर जो आ गए तो वो पूरे उसको पौधे को खराब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें आप अपनी निगाह रखिए, अगर कीड़े हैं तो स्प्रे करिए, और अगर कीड़े नहीं है तो कोई चिंता की बात
1: नहीं है।
0: नहीं है। और जहां तक रोगों की बात है, तो एक लीफ ब्लाइट रोग होता है, एक रतुआ रोग होता है, एक चारकोल रोग होता है, इसके लिए फफूंदनाशी आप सीधा सा ले लीजिए, एक फफूंदनाशी मैंजिम है या VM-45 है, जिनकी 400 ग्राम जो मात्रा है 200 लीटर पानी में घोलें और स्प्रे करें। अब घोल के स्प्रे करने वाली जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मक्का की फसल इतनी बड़ी होगी कैसे स्प्रे करें, तो उसके लिए साथियों मैं यही कहूंगा कि कि आजकल स्प्रे के बहुत अलग अलग औजार आ रहे हैं, मतलब जो है आपके तेल से भी चलते हैं, बैटरी से भी चलते हैं, काफी दूर तक उनकी मार
1: अच्छा।
0: होती है। तो जैसे मक्का के खेत में रखाने के लिए कहीं कहीं मचान होते हैं, उनके खड़े हो उनके ऊपर खड़े होकर आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा।
1: मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और धान, ये तो बड़े खेतों की बातें हो गई। जहां पर किसानों ने फसल लगाई है, वो लोग कैसे देखभाल करें, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन जब बात सब्जियों की आती है, तो कुछ बड़े किसान भी होते हैं, कुछ घरों में किचन गार्डन लगाने
0: जी
1: वाले लोग भी होते हैं, जो छोटी छोटी जगहों पे सब्जियां लगाते हैं।
0: जी
1: तो जिन लोगों ने भी किसी भी तरह की सब्जी इन दिनों लगाई है सितंबर
0: जी
1: महीने के हिसाब से, तो उनकी फसल की देखभाल कैसे की जाए, अब हम आपसे अंत में ये
0: हाँ,
1: जानना चाहेंगे।
0: सब्जियों में अगर हम देखें तो इस समय पर दो स्थितियां हैं। एक तो क्या है, जो हमने पहले लगाई थी उस समय फल मिल रहे, दूसरी यह है कि हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, उसकी पौध लगा रहे हैं, या कहीं कहीं पौध तैयार हो गई तो हम खेतों में उसका रोपण कर रहे हैं, या आपने छोटा सा कोई बगीचा है उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय पर जैसा कि अन्य फसलों में कीड़े बहुत आते हैं, कीड़ों की रोकथाम के लिए आप जरूर प्रयास करें। और उसका यह है कि अगर बहुत छोटा रकबा है, जैसे कहीं पर आप अपने मकान में ही लगा रहे हैं जो कि आप अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तेज स्प्रे का अगर पानी भी कर देंगे तो कीड़े नीचे गिर जाते हैं। अगर कोई खेत है तो उसमें कीटनाशक जो दवाएं है, लेकिन कीटनाशक में आजकल अलग अलग श्रेणियां आती है। कुछ कीटनाशक होते हैं जिन पर लाल रंग होता है, और कुछ होते हैं इसमें पीला होता है, कुछ होते हैं इसमें हरा होता है। तो कोशिश करें हरा या ज्यादा से ज्यादा पीला, क्योंकि सब्जियों को हम हरी अवस्था में ही प्रयोग करते हैं, तो कीटनाशक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो ऐसा हम अपनी ओर से प्रयास करें। तो उसमें कीटनाशक जो है या तो हरे वाला हम ले लें या पीले वाला, ज्यादा से ज्यादा हरे वाला मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज्यादा ठीक है, या तो हम उसका उपयोग करेंगे या कोई ना कोई और उसका उपयोग करेगा। और कभी कभी शायद पुराने समय में लोगों ने देखा होगा, और हमने तो देखा है कि राख जो होती थी, राख को जो पौधे ऊपर जो डाल दिया करते थे, उससे कीड़े उसको खाते नहीं थे, क्योंकि राख अगर उसको खाएंगे तो राख भी उसके मुंह में जाती थी और वो उससे हट जाता था। तो और उसमें पोटाश की भी मात्रा होती है, पौधे को पोषण भी कभी कभी मिल जाता है। तो
1: उसका उपयोग
0: आप
1: करना चाहिए।
0: हाँ, उसका किया जा सकता है, उसका कुछ अनुभव भी लिया जा सकता है। पहले लोग करते थे उसको, पहले कोई कीटनाशक नहीं थे, लेकिन फिर भी सब्जियां होती थी और भरपूर मात्रा में होती थी। इस समय पर तोरई, लौकी, टिंडा, ऐसी ऐसी सब्जियां, और जो आपका करेला, इतनी अत्यधिक मात्रा में होती थी कि आराम से लोग खाते थे, सस्ती भी बहुत हो जाती। तो आम जन भी जिनके यहाँ वो उपलब्ध नहीं है, वो भी उसका प्रयोग कर लेते थे। तो ये तो अभी खड़ी फसलों के बारे में हो गया। बाकी जो पौधे हैं, जो पौध आप लगा रहे हैं, अगर पौध की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रखिए, जिससे कि कीड़े वगैरह उस पर वहां ज्यादा असर न करें। शुरुआत में ये इस तरह की सुरक्षा रखें, जैसे कि होता है ना कि कोई चीज हम रख रहे हैं तो उसकी बाड़ बना देते हैं, लाइक दैट, उस तरह से हम उसको करें। और पौध आजकल तो जो थैली में भी तैयार हो जाती है, उसकी प्लास्टिक की थैली होती है, मिट्टी होती है, बीज लगा देते हैं, तो जब तक वो आपकी जो 25-1 दिन की होती है तब तक हम उसको सुरक्षित रखते हैं, और फिर जब समय आ जाता है तो हम खेत को उसकी रोपाई कर देते हैं। मेरा अनुरोध यह है कि जो अन्य फसलें उनके साथ साथ सब्जियों की अवश्य लगाएं, थोड़ी लगाएं खेत के आसपास, अगर आपको बेचना नहीं है तो भी आप लगाएं, होगी तो आप अपने इस्तेमाल में जो कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो आप अपने आस पड़ोस में भी दे सकते हैं, आपके अभी नाते रिश्तेदार आए उसको दे सकते
1: जी हाँ,
0: हैं।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा लगता है आदमी को कि हम वहां गए थे और वहां से ये
1: उनको ताजी सब्जियां मिली।
0: ताजी सब्जियां।
1: तो चलिए, बहुत सारी बहुत अच्छी जानकारी हमको आज के इस खेती किसानी कार्यक्रम में डॉक्टर AK सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक चंबल फर्टिलाइजर्स के हैं, जो है इन्होंने हमको दी। और आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सितंबर माह की फसलों की देखभाल के बारे में इस जानकारी के साथ। और आप सभी श्रोताओं से अब हम विदा चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम से, और फिर आते हैं हम अगले अंक के साथ कुछ और जानकारियां लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ का प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
1: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, न उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, न ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
0: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
1: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना।
0: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्ची को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
1: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्टम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है। परसों के

0: बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
1: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है। आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
0: इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
1: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
0: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
1: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
0: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
1: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
0: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
1: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियाँ हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
1: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
1: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
0: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
1: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
0: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
1: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही कमाल के शख्सियत मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आप बैक टू बैक इनके एडवर्टीजमेंट सुनते हैं हमारे रेडियो पे। श्री साई हॉस्पिटल से आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अंकुल गोयल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एंड सर्जन रोबोटिक एक्सपर्ट भी है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
2: नमस्कार आपके सारे लिसनर्स को मुरादाबाद के।
0: क्या बात है सर, एक बार आप हमारी जनता को प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो आपका परिचय देने में, तो एक बार प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में और बता दें।
2: परिचय आपने बिल्कुल सही दिया है। मैं डॉक्टर अंकुर गोयल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पिछले 18 साल से मुरादाबाद में कार्यरत हूँ एट श्री साई हॉस्पिटल, और विभिन्न प्रकार की हड्डी रोग का विशेषज्ञ हूँ मैं और उन्हीं का इलाज करता हूँ।
0: दोस्तों आज का विषय बहुत खास है। आज है 12 अक्टूबर और हर साल 12 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को। और आज इसी पर बात करने के लिए हम ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, और साथ में हमारे बीच में डॉक्टर अंकुर गोयल जी मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। तो सर सबसे पहले अगर मैं आम भाषा में आपसे पूछूं कि ये क्या चीज होती है, क्या बीमारी, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं?
2: आर्थराइटिस यानी आम भाषा में बोले गठिया
0: जी,
2: तो ये एक ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे की बीमारी है। बीमारी भी नहीं कहना चाहिए कि एक एजिंग प्रोसेस है
0: जी।
2: जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं और हमारे दांत झड़ते हैं, उसी तरह एजिंग प्रोसेस में आर्थराइटिस भी एक प्रोसेस है ओल्ड एज का। ये मेनली घुटनों में इफेक्ट करता है, और घुटनों में मेनली जो चिकनाई होती है वो कम हो जाती है। चिकनाई की जो परत है, मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस जाती है, जिसकी वजह से हड्डी आपस में एक दूसरे से रब करने लग जाती है या घिसने लग जाती है, और वो पेन और सूजन पैदा करती है। इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं, और इससे घबराना नहीं चाहिए। अब इसका बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज है, चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो फिजियोथेरेपी है या फिर सर्जरी है। अब उस आर्थराइटिस से हम निजात पा सकते हैं इन विभिन्न ट्रीटमेंट द्वारा।
0: ओके, बहुत ही साफ शब्दों में सर आपने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ऑपरेशन जो होता है, क्या वो रोबोट करते हैं या फिर सर्जन?
2: जो लेट स्टेज आर्थराइटिस होती है या गठिया जो लेट स्टेज होती है
0: जी,
2: जिसमें दवाइयां, फिजियोथेरेपी, व्यायाम सब फेल हो जाते हैं, उन केसेस में सर्जरी द्वारा दर्द से निजात दिलाया जा सकता है। ये रोबोटिक भी होती है और कन्वेंशनल सर्जरी भी होती है, पर रोबोटिक अब एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें नी रिप्लेसमेंट के दौरान एक सटीक प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट किया जाता है, जिससे रिकवरी भी फास्ट होती है और पेशेंट को पेन भी कम होता है।
0: ओके, अभी जैसे हमने रोबोटिक की बात करी तो कई लोगों के दिमाग में एकदम से डर आ जाता है कि रोबोट हमारा ऑपरेशन करेगा, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो वो एक बार हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे।
2: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट हमारे को सर्जरी में असिस्ट करता है।
0: ओके,
2: आप कभी भी कहीं भी पढ़ेंगे तो ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। रोबोट हमारे आंख और हाथ हो सकता है, पर दिमाग हमेशा सर्जन का ही होता है। फाइनल डिसीजन सर्जन का ही रहता है, और ही इज देयर इन सर्जरी, और सर्जरी वो ही कर रहा है, रोबोट उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है।
0: ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। तो श्रोताओं, आपका डर और आपका बहम दोनों ही क्लियर कर दिया है हमने। एंड डॉक्टर साहब, इसी बीच में आपसे एक और पूछना चाहूंगा, क्या इस तकनीक से दर्द कम हो सकता है और रिकवरी तेजी से हो सकती है क्या?
2: जी हाँ बिल्कुल, रोबोट द्वारा जब हम सर्जरी करते हैं तो ये सर्जरी बहुत ही सटीक होती है। इसमें ऑपरेशन के दौरान कम सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन या चीराफाड़ी कम करनी पड़ती है
0: जी।
2: तो इसमें पेन भी ऑपरेशन के बाद कम होता है, और जब पेन कम होता है तो एक्सरसाइज मरीज जल्दी कर पाता है
0: जी,
2: और रिकवरी फास्ट होती है।
0: डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज आप अपने हॉस्पिटल से निकल के हमारे हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये एंटरटेनमेंट का हॉस्पिटल है, यहाँ के कैसा लग रहा है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी लग रही है आपको?
2: बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा रेडियो चैनल मुरादाबाद में, हमारे मुरादाबाद शहर में होगा। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, कीप इट अप, और इससे मुरादाबाद के लोगों का मनोरंजन हो रहा है
0: जी।
2: यू आर डूइंग अ गुड जॉब।
0: थैंक यू सर। यहाँ पे कैची इंजेक्शन वो सब नहीं है, यहाँ पे माइक्स है, हमारा कंसोल है, और हमारी आवाजें हैं, जो कि इसके बाद बहुत लोग सुनने वाले, हमें पता भी नहीं होता कितने लोग हमें सुन रहे होते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है ना।
2: बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये थोड़ा सा सर को हमने एंटरटेन कर दिया अपनी बातों से। वेल गाइज, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। मेरा नाम आनंद है और आज हम गठिया के विषय में ढेर सारी बात कर रहे हैं। श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा सर, जैसे अभी हम गठिया के बारे में बात कर रहे थे तो मैं इसके विषय में एक और चीज जानना चाहता हूँ। इसकी कोई एज लिमिट होती है, मतलब किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है ये, और लोगों को कैसे इसके बारे में पता चले जब होते, इसकी स्टार्टिंग फीस क्या होती है बेसिकली?
2: ये जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये एज रिलेटेड प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है।
0: ऑलराइट,
2: तो अमूमन ये 60-65 की एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है।
0: ओके,
2: स्टार्टिंग इसकी अगर हम घुटने का गठिया की बात करें तो घुटने के दर्द से शुरुआत होती है। तो जब आपकी घुटने के दर्द की शुरुआत होती है तो हो सकता है किस दिन आपने ज्यादा काम कर लिया हो, किस दिन आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो, तो उसकी वजह से दर्द शुरू हुआ। तो पहले 2-4 दिन अगर दर्द है तो आपने कोई अगर ऐसा कार्य करा है तो उसको बंद करके अपने आप ही वो दर्द ठीक हो जाता है। पर जब वो दर्द ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी बना हुआ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये पता करना चाहिए कहीं उसकी गठिया की शुरुआत तो नहीं हो रही।
0: ओके, तो मतलब अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है लिसनर्स, या फिर जो सर ने बताया अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो इस दौरान आपको जल्द ही डॉक्टर से विजिट करना चाहिए।
2: डॉक्टर से विजिट करना चाहिए और डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन से विजिट करके और सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो एक्सरे करा के हमें देखना चाहिए कि कार्टिलेज हमारा डैमेज तो नहीं हो रहा है।
0: ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बीच में एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या रोबोटिक सर्जरी हर इंसान के ऊपर लागू होती है?
2: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रोबोट से हमारी जो सटीक प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट है वो बेहतर होती है
0: जी।
2: तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। पर कन्वेंशनल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कन्वेंशनल सर्जरी खराब है। अब तक हम कन्वेंशनल, पिछले 16 साल से मैं कन्वेंशनल सर्जरी ही करता आ रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। पर जब एक एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसका यूज करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं।
0: बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, जब कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट्स के मन में पहला क्वेश्चन होता है, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, मैं कब तक चल पाऊंगा, या मैं मतलब पूरी तरह कितना टाइम में मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी, उस विषय में आप थोड़ा बताएं।
2: क्योंकि हम ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इसमें पेन भी कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है।
0: ओके,
2: तो यूजली सर्जरी के अगले दिन ही हम पेशेंट को वॉकर के साथ वॉकिंग शुरू करवा देते हैं। वो अपना टॉयलेट में बैठना शुरू कर देता है, दूसरे और तीसरे दिन कॉरिडोर में चलना शुरू हो जाता है और चौथे दिन उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। वो बिल्कुल भी बेड रिडन नहीं रहता है, उसको अपनी रोजमर्रा की आम जो टॉयलेट बाथरूम जाना है वो डे सेकंड से ही शुरू हो जाता है। विद इन 10-15 डेज सीढ़ियां चढ़ना उतरना और अपने नॉर्मल काम करना शुरू हो जाता है।
0: ओके, लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 टॉक शो में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी, सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड रोबोटिक एक्सपर्ट हैं। आज हम गठिया के विषय में ढेर सारी बात कर रहे हैं दोस्तों। एंड आपको बता दें, ये हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है। अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हम डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे आपका वो सवाल। आप हमें कर सकते हैं 9837896 यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से वेलकम बैक है, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें हो रही हैं ढेर सारी काम की बातें हो रही हैं। और आज हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। सर से लगातार बातें हो रही हैं गठिया के विषय में। और इसी बीच डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा, सामान्य नी रिप्लेसमेंट की तुलना में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का खर्च कितना अलग हो सकता है, इस विषय में थोड़ा बताएं। क्योंकि रोबोटिक का जब हमने नाम लिया है तो लोगों के दिमाग में एकदम से हाई एक्सपेंसिव वाली चीजें आने लगती है कि यार बहुत महंगा होगा।
2: हाँ, ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग से भ्रम निकालना चाहता हूँ। हम श्री साई हॉस्पिटल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज रोबोटिक सर्जरी का नहीं ले रहे हैं।
0: okay.
2: जो सामान्य नी रिप्लेसमेंट का खर्च है वही रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का खर्च है। और इसमें आयुष्मान भारत के लिए भी हम काफी चीजें करते हैं और रोबोटिक नी भी करते हैं आयुष्मान भारत के पेशेंट्स का, और करीब 100 से अधिक पेशेंट इसका लाभ उठा चुके।
0: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में ये डेफिनेटली सवाल होगा, रोबोटिक सर्जरी की बात चल रही थी तो बहुत हाई एडवांस है तो उसका मतलब अमाउंट भी ज्यादा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बिल्कुल नियर है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद का और काफी अच्छा विश्वास भी है लोगों का, मुझे पता है। तो आप डेफिनेटली, अगर आसपास में कोई भी व्यक्ति इस चीज से जूझ रहा है तो मैं तो कहूंगा उसको आप जरूर बताएं, और अगर समय पे डॉक्टर साहब इलाज मिल जाता है।
2: ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में इसके लिए 40-50,000 पर नी चार्ज होता है, बट एट साई हॉस्पिटल कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज रोबोटिक सर्जरी के लिए नहीं ले रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो आई होप लिसनर्स आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल ही रहे होंगे। अच्छा सर, जो रोबोटिक सर्जरी होती है, इससे पहले जो मरीज होता है उसके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है?
2: मरीज को सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे ये डिस्कस करना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट उसके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उसका इलाज दवाई से फिजियोथेरेपी से हो सकता है, क्योंकि पहला काम डॉक्टर का यही है कि वो दवाई और फिजियोथेरेपी से ही उसका इलाज करे। जिन मरीजों का इलाज इससे नहीं हो पा रहा है तो उन्हीं के लिए रोबोटिक या कन्वेंशनल नी सर्जरी एडवाइस होनी चाहिए। दूसरा, इस सर्जरी के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो? उसकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि उसका दर्द खत्म हो जाएगा, उसकी दिनचर्या की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, दर्द की दवाइयां लेना खत्म हो जाएगा। तीसरी, ये उसे पूछना चाहिए कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इस सर्जरी के बाद। जैसे जमीन पे बैठना, उकड़ू बैठना, दौड़ना, भागना, ये सारे काम हमें नहीं करने चाहिए। चौथी ये चीज है कि उस इम्प्लांट की लाइफ क्या है। ये जो हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें जो इम्प्लांट है या जो घुटने की लाइफ है वो करीब 20 से 25 साल है, और उसका अगर रख रखाव हम अच्छा करते हैं और जो प्रिकॉशन हमने बताए हैं वो लेते हैं तो वो लाइफ और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीजें मरीज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। ये भी पूछना चाहिए कौन सा इम्प्लांट वो लगा रहे हैं, किस तरीका है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये सारी बातें मरीज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी।
0: बहुत ही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रोबोटिक सर्जरी कराने के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है?
2: फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, और अगर हमने जोड़ तो बदल दिया है पर मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि मरीज ढंग से बिना दर्द के ज्यादा चल पाए, तो करीब करीब 2 से 3 हफ्ते फिजियो कराना बहुत जरूरी है, आवश्यक है।
0: ओके अच्छा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल आपसे है, मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर की जो भूमिका होती है, जो उनका रोल होता है, वो कम हो जाता है?
2: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: मेरे को पर्सनली लगा कि मैं वो पूछ लेता हूं।
2: जैसा पहले भी कहा कि दिमाग तो डॉक्टर का ही है, अल्टीमेटली कंट्रोल डॉक्टर के पास ही है। रोबोट उसको प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में उसको बहुत सटीकता लाने में मदद कर।
0: ठीक है, क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज को बिल्कुल दर्द नहीं होता है?
2: नहीं, बिल्कुल दर्द तो नहीं कह सकते, क्योंकि दर्द तो कोई भी सर्जरी होगी, थोड़ा दर्द तो होगा ही, पर अगर हम कंपैरिजन करें कन्वेंशनल और रोबोटिक सर्जरी में तो रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द होता है।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, उसके लिए एफ एम मुरादाबाद और आरजे आनंद आपको थैंक यू करता है। एंड सच में मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर सच में भगवान होते हैं, अगर वो ना होते तो शायद पता नहीं हमारा क्या ही हो रहा होता। एनीवेज सर, क्या कुछ इसका ऐसी भी चीज हो सकती है, आई मीन जैसे कुछ नेचुरल चीजें अगर हम करें और हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े?
2: देखिए ऐसा है कि इनिशियली तो ट्राई करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज हो गई, दवाई हो गई, वॉकिंग हो गई, वेट रिडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम वजन घटा लेते हैं और अपने आइडियल वेट रेंज में आ जाते हैं तो घुटनों पे लोड कम पड़ता है और दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो दोज आर द थिंग्स जो हमें पहले ट्राई करनी चाहिए, बट ये सारी चीजें फेल होने के बाद फिर जब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही हमारे पास बचता है। पर हाँ, ये सारी चीजें अगर मरीज फॉलो करता है, वेट रिडक्शन हो गया, एक एक्सरसाइज रूटीन, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसको टाला जा सकता।
0: ओके, तो लिसनर्स आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज बहुत जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है क्या?
2: कन्वेंशनल के मुकाबले रोबोटिक में थोड़ा जल्दी, यानी कि जल्द समय में लौट सकता है। अगर हम एक एवरेज टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हर मरीज का पेन टॉलरेंस अलग होता है, एक्सरसाइज करने की क्षमता अलग हो सकती, तो 3 से 6 हफ्ते एक आइडियल टाइम है जिसमें मरीज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकते।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या घुटने में गंभीर एथराइज होने पर एकमात्र विकल्प होता है सर्जरी का?
2: जी हाँ, आर्थराइटिस अगर सीवियर है और सारे कंजर्वेटिव मेजर्स जैसे कि एक्सरसाइज, दवाइयाँ फेल हो गई हैं, तो सर्जरी ही उसका एकमात्र इलाज है, और वो हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। उसको पोस्टपोन करने से आर्थराइटिस बढ़ता है और हमारी मोबिलिटी और हमारी चाल खराब हो जाती है। कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि अब हमारी उम्र 65 की हो गई, 70 की हो गई, क्या रिप्लेसमेंट इस उम्र में कराना सही है? तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आर्थराइटिस ओल्ड एज की ही बीमारी है और मोबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। मोबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है। डॉक्टर कहता है चलो और हम चल नहीं पाते आर्थराइटिस की वजह से। तो ओल्ड एज में अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं रिप्लेसमेंट का तो आपको कराना चाहिए। आपकी फिटनेस अगर ठीक है, बाकी आपको और कोई बीमारी नहीं है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा, और आपकी कार्डियक फिटनेस है, तो आपको जरूर सर्जरी करानी चाहिए कि लाइफ चेंज कर दे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर गोयल जी, आप आए, आपका दिल से थैंक यू। चलते चलते हमारे तमाम सुनने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई एक मैसेज तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज रेडियो के माध्यम से।
2: जैसा आपने बोला कि क्या एक विकल्प है कि जिससे हम सर्जरी से बच सकें, तो यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: रोज सुबह वॉक पे जानी चाहिए, आधा घंटे व्यायाम करना चाहिए और अपनी डाइट कंट्रोल में रखनी चाहिए।
0: बहुत ही सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज आप आए और इतना कीमती समय आपने हमारे साथ साझा किया। बाकी जो भी डिटेल्स होती है श्री साई हॉस्पिटल की वो एडवर्टीजमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं और डिटेल्स अगर आपको चाहिए इस विषय पर या ऐसे और विषयों पर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पर। फिलहाल मैं भी लेता हूं अब जाने की इजाजत, जल्दी होगी आपसे हमारी मुलाकात किसी और सेगमेंट में किसी और एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। यह है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम, बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम, आपको स्टेशन आके कैसा लगा? हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने
0: दाई, बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है। तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी

0: है एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने संभाल दी है, पर उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते हैं।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ। एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं, हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो। डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे। आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ। अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल के लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप है जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है।
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 टू 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 से 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है। इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे। करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है, इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही है। अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले। पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है, कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: गवर्नमेंट इज रनिंग
0: कि एब्सोल्युटली
1: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे। ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए। अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट,
0: फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल।
1: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को। अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं। डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे। और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन। ठीक है, और ये लगवानी चाहिए, इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन। आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं, और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स,

0: आप ले से लगवाए। दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीन, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट, तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली, बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले। प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है।
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया। ये यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है। पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है। आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: I would say कि प्लीज लगवाइए, ठीक है। इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही। कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए,
1: absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा।
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल।
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है। नो, इट इज नॉट अ स्कैम। इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को। प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें।
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज HPV का वैक्सीन आप जरूर कराएं। ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। मैम थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारे यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई अपने दिमाग में, जहन में। अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं, यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो।
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है। आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है, ठीक है। अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है, इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल। क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना। जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच। तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन। अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी।
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे,
1: right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था। तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं। दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है, मम्मी जब होती है तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल्स। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
1: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं,
0: exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है, विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है, यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं.
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में.
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970.
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01. श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं. आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है. साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ. संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7060002243.
1: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो. आनंद के साथ हैं आप और आज आनंद अकेला नहीं है. प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो. जी हाँ श्रोताओं, एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम में हम हाजिर हो गए हैं और कुछ नया नया लेकर आए हैं एक बार फिर से. और आज सोच बदलो का जो टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है. आज का विषय है क्या कहेंगे लोग. अक्सर मैं और आप यही सोचते हैं ना कुछ भी करने से पहले कि यार अगर हमने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, वो किया तो लोग क्या सोचेंगे. हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं कि उनके बारे में सोच सोच के ना अपना फ्यूचर, टाइम, अपना एनर्जी सब कुछ आप कर लेते हैं. और इसी पर जो है बात करने के लिए मैंने एक नई मेहमान को स्टूडियो में आमंत्रित किया है और एक हमारी प्यारी सी होस्ट एंड दोस्त हैं और एक और दोस्त हैं, तो मतलब कुल मिला के चार लोगों के टॉपिक पे चार लोग आए हैं अपनी अपनी राय देने. सो सबसे पहले तो वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं आप.
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ आरजे, और मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है. कई बार मैं आ चुकी हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही आई हूँ. हर बार मुझे एक न्यू फीलिंग आती है और मुझे हर बार लगता है कुछ नया है.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया. ये नया जब हम आप लोग एफएम पे आते हो तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ भी कुछ नया है. आपको देख के लग रहा है कि आज एक नई मेहमान है, मतलब कुछ नया है.
4: कुछ नया है
1: बिल्कुल. अपने बारे में थोड़ा बताओ हमारे सुनने वालों को.
4: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल
1: जी
4: छजलैट, और रिसेंटली मैंने लास्ट ईयर जो जॉब स्विच करी कुछ कारणवश. और मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा जिम मेरा पैशन है, योगा मेरा मैं खुद के लिए करती हूँ, हाउसवाइफ हूँ अभी तो फिलहाल मैं.
1: तो आज का जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है सोच बदलो. जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि सोच को बदलना बहुत जरूरी है. आजकल हमारा युवा पीढ़ी सब लोग अपने मोबाइल तक ही सीमित रह गए हैं, सबको मोबाइल में घुसने की आदत है. तो मुझे लगता है कि मोबाइल से बाहर निकल के सोच बदलने की जरूरत है, राइट. और हमारे साथ कुमकुम भी है, रीना भी है, तो आप लोगों का भी स्वागत है. आप लोग भी थोड़ा हेलो हाई करो इस प्रोग्राम में. हेलो बोलिए जी, सोच बदलो में आपका स्वागत है.
5: थैंक यू सो मच आरजी आनंद
1: जी.
5: मैं कुमकुम, आप सबकी प्यारी दोस्त, फिर से आपका एक और बार स्वागत करती हूँ मैम हमारे नए शो में
1: जिसका नाम है सोच बदलो.
5: जिसका नाम है सोच बदलो.
1: रीना जी आप कुछ बोलेंगी.
6: हेलो एवरीवन, मैं आरजी रीना, आप सभी मुझे जानते हैं और हम ढेर सारी बातें करने वाले सोच बदलो के ऊपर.
1: बिल्कुल जी. तो सोच बदलो में जैसे कि हमने आज टॉपिक उठाया है क्या कहेंगे लोग, तो सबसे पहले श्रोताओं आपको भी पता है जैसे कि मैंने आते ही जिक्र किया, हम अक्सर कोई भी चीज करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारे जहन में एक ही बात आती है कि लोग क्या कहेंगे. तो शैली जी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर दुनिया का दूसरा इंसान यही सोचता है कुछ भी करने से पहले.
4: पहले तो मैं शैली सिंह आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया. और चार लोग क्या कहेंगे, ये ना बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे जितनी बात की जाए वो कम है. चार लोग उस समय कहाँ होते हैं कि जब हमारे बच्चे की फीस नहीं जा रही होती है.
1: करेक्ट.
4: वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जल रहा होता है. वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हमारे घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल में होता है. वो चार लोग तब कहाँ होते हैं जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं और हमारे पास कोई नहीं होता जिनसे हम अपनी फीलिंग शेयर कर पाएं. वो चार लोग तभी क्यों आते हैं जब हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, हम ग्रो कर रहे होते हैं, वो चार लोग तभी क्यों आते हैं?
1: करेक्ट,
4: तभी उनमें हमें हर चीज में कमियां क्यों दिखाई देती हैं? उससे पहले लाचार बेचार उनके सामने बने रहो तो उनके लिए अच्छे हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी अपने मन की कर ली तो आप वहीं पे पूरे।
1: तो मतलब आपका कहने का ये है कि कुल मिला के इन चार लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब जब ये चीजें होती हैं तो ये चार लोग गायब होते हैं, जब आपकी प्रोग्रेस शुरू होती है तो ये लोग।
4: उन चार लोगों के बारे में नहीं सोचना है, वो चार लोगों के बारे में आपको ये सोचना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है ठीक है, और आपके वो लोगों के कहने पे आप अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप चार लोगों की मत सुनिए। चार लोग ये कह रहे हैं कि आप इस बच्चे को अपनी अच्छी ये वाला कॉलेज खुद से बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके
1: एडवाइस
4: कर रहे हैं कि, तब सुनिए आप उनकी। हमारे हेल्थ इश्यूज का कोई अगर हमें अच्छा सजेशन दे रहा है तब सुनिए आप उन लोगों की। हमारे घर में कोई बेरोजगार बच्चा है उसे रोजगार दिला रहे हैं, तब सुनिए आप उनकी।
1: सही कहा आपने, बिल्कुल शैली जी आप बिल्कुल अच्छा कह रही हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल फैक्ट है। मुझे भी ऐसे लगता है कि जब बात चार लोगों की आती है तो हम इतना ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत सारी चीजें खुद की खुद ही भूल जाते हैं, और जब एक्चुअल में हमें इन लोगों की जरूरत होती है तब ये लोग आते नहीं है, जब हमें इनकी जरूरत नहीं होती तब ये लोग आके टांगड़ आते हैं, है ना। बट ये चार लोग आज तक किसी को समझ में नहीं आए हैं। मुद्दे की बात यह है, क्योंकि उनको कभी तुम्हें लगा कि ये चार लोग तुमने देखे हैं कभी कहीं?
5: नहीं, वो चार लोग आपको हर जगह दिख जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन चार लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और किस तरह की से उनकी बातें अपने ऊपर लेते हैं।
1: और तुम रीना, तुम्हें क्या लगता है चार लोगों के बारे में?
0: मेरा मानना ये है कि चार लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बस आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने करियर पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप चार लोगों की बात सुनोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो प्रोग्राम है सोच बदलो। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं कुछ और खास बातों के साथ।

0: एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का। आपने ट्यून इन किया है एफएम मुरादाबाद और प्रोग्राम है सोच बदलो। श्रोताओं, जब भी कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं या जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है, क्या कहेंगे लोग? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो मुझे बड़ी बेइज्जती होगी, मुझे बड़ी शर्म आएगी। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। कई बार लोगों के चक्कर में हम जो चीज हम करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं, और इसी पर हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तो शाली जी, क्या मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है ऐसा कि लोगों को सोच बदलने की जरूरत है, आपको क्या लगता है, क्या हमें चालू के बारे में सोचना चाहिए या अपना फ्यूचर अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए?
1: मेरा सभी का मानना यही होना चाहिए कि चार लोगों को साइड करो, अपने करियर पे, अपने फैमिली पे और अपने आप पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के लिए फोकस करो। क्योंकि जब आपके पास एवरीथिंग होगा ना, पैसा, पावर सब होगा, वो चार लोग आपके घर में ही बैठे नजर आएंगे और रोज नजर आएंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही अच्छा बोला आपने शैली जी। डरते रहेंगे जो लोगों की बातों में आएंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जो लोगों की बातों में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है कुमकुम?
2: मुझे भी यही लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको यही सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे वो साइड में रख दिया जाए और खुद के सपनों की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।
0: ग्रेट जी, शैली जी कुछ कह रही हैं आप?
1: वो एक सॉन्ग है, राजेश खन्ना जी का है शायद, मेरे ख्याल से उसमें वही है कुछ तो...

ग्रेट, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब जब शैली जी ने इतनी खूबसूरत आवाजों में इस गाने को गाई दिया, इतनी ब्यूटीफुल आवाज में, तो अब इस गाने को सुनी लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर में लौट कर आते हैं सोच बदलो में।

0: इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन। तो रीना, आपको क्या लगता है सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी? क्या सच में उन्हें भी सोच बदलने की जरूरत है? चार लोगों को लेकर जो लोग सोचते हैं, हम और आप अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे नहीं पता तुम सोचती हो नहीं, मैं कभी कभी सोच लेता हूँ।
1: नहीं नहीं यार, मैं अक्सर सोचती हूँ और मुझे लगता है कि चार लोगों की जरूरत जब आपको पड़ती है वो आपके साथ नहीं खड़े होते, बल्कि जब आपको जरूरत नहीं होती तब आपके साथ रहते और बोलते यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तेरे साथ था, बस यार बताना चाहिए था ना। मतलब वो सहानुभूति देते हैं, आपको दिखाते कि मैं तेरा साथ हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, बहाना बना लेते हैं कि यार मेरे पास कुछ काम है मैं भी नहीं आ सकता।
0: करेक्ट।
1: तो ये है, तो बस आप अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी दुनिया बोलने सुनने के लिए है।
0: बहुत अच्छा बोला रीना आपने, और मुझे भी लगता है श्रोताओं, देखिए सोच बदलने के साथ साथ ना अपने इरादों को भी बदलिए और लोगों की बातों को छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपके होने चाहिए। क्यों शैली जी?
2: बिल्कुल, आजकल का जो सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसमें देखिए हमारी कितना फ्रेंड सर्कल फैला पड़ा है, कितना दोस्त है, ठीक है। लेकिन जब आप परेशान होंगे, आपके मोबाइल में एक नंबर नहीं मिलेगा कि आप उसको डायल करें और कहें यार मैं बहुत परेशान हूँ आ जा।
0: करेक्ट,
2: वो एक नंबर नहीं होगा आपके पास।
0: बिल्कुल, और मुझे ऐसे लगता है कि चार लोगों को ना हम ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पे भी आजकल वो चीज नहीं डालते हैं जो हमारी पसंद की है, वो डालते हैं जो लोगों को पसंद आए।
2: बिल्कुल,
0: है ना, वो इसलिए ताकि कोई डिप कमेंट ना कर दे। तो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में भी हम चार लोगों का सोच रहे होते हैं, जबकि हमारा अपना अपना खुद का प्रॉपर्टी है सोशल मीडिया। भाई अगर मेरा अकाउंट है तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, मैं उसका राजा हूँ, तो मुझे क्यों दुनिया के बारे में सोचना? जो मुझे अच्छा लगे मैं तो वो डालूंगा ना, बट फिर भी हम वहां भी लोगों का सोच रहे होते हैं कि नहीं यार अगर हमने ये चीज डाल दी तो इस पे लोगों के क्या कमेंट। स्पेशली लेडीज को मुझे लगता है बहुत जरूरत है सोच बदलने की, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है। आप क्या कहेंगी?
2: मैं तो इस चीज को आनंद
0: एक्सेप्ट नहीं करती,
2: फेस करती हूँ रोज।
0: ओके, फेस कर,
2: आज से नहीं, मतलब जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैंने फेस करा, क्योंकि मैंने कभी लोगों की सुनी ही नहीं,
0: मतलब इसका
2: और मैं जब सुनी ही नहीं हूँ तो आज मेरे बच्चे सेटल हो रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। वो भी कहते हैं जो सही है वो सुनो, जो गलत है उसे मत सुनो।
0: करेक्ट करेक्ट, मुझे लगता है कि श्रोताओं सोच बदलनी सिर्फ लेडीज को नहीं जेंट्स को भी होगी, और जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक चीजें अपनी जगह पे सेट नहीं होंगी, और यही हमारा भी एक मकसद है इस प्रोग्राम के जरिए कि हम आपको एक सही और सटीक मैसेज दे सकें, और ताकि हमारे आसपास में जो हमारे समाज में लोग हैं जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। तो सोच बदलो का एक छोटा सा मकसद यही है कि हमें अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा समय के साथ साथ, जैसे हम अपना खान पान चेंज करते हैं, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे ही सोच का चेंज होना भी बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको मैम, जरूरी है ना?
1: मैं एक बात कहती हूँ, सुनो
0: प्लीज।
1: तुमने देखा होगा जब इंसान सामने होता है ना, हम उसकी तारीफ नहीं कर पाते हैं, जब वही इंसान हमसे दूर चला जाता है हम फिर बोलते हैं यार वो इंसान था बहुत अच्छा, लेकिन कभी हमने उसके सामने नहीं बोला होगा। तो आप इतना क्यों सोचते हो यार किसी के बारे में, हम क्यों सोचे किसी के बारे में?
0: करेक्ट करेक्ट,
3: आप दोनों मैम की बातों से मुझे एक बात मेरी बहुत अच्छी याद आई कि जैसे मैं अपने कॉलेज टाइम में थी मैं भी बहुत सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे, बट अब जब शादी के बाद मैंने अपनी सोच को बदला है कि लोगों को छोड़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, लोग तो कहेंगे जो कहना है, उनका काम है कहना। बट जब से उन चार लोगों में से कुछ ऐसे चार लोगों से मैं मिली हूँ जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक तो आप ही हो गए आज ही आनंद,
0: आपकी शादी होगी बताया नहीं था आपने मुझे, ये मेरे को आज ही पता चला है। अच्छा आगे बोलो
3: जी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे रह के खंजर भौंकने का काम करते हैं, तो उन लोगों से बच के मैं इन लोगों में आई हूँ। कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पीछे खींचेंगे, कुछ चार लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे।
0: करेक्ट, सही कहा है।
1: तो आप उनके साथ रहिए जो आपको आगे बढ़ाते हैं।
2: ये बात बहुत अच्छी है कि चार लोग बुरे ही नहीं होते हमेशा, हाँ, चार लोग अच्छे
1: भी होते हैं,
2: चार लोग केवल निगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होते हैं।
0: क्या बात है, इसी इन्हीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो
1: एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत है और अब हमारा जाने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम चार लोग हैं तो हम चार लोगों की एक एक मैसेज तो होनी चाहिए सोच बदलो प्रोग्राम को लेकर। जी शैली जी, आपका क्या संदेश होगा हमारे तमाम सुनने वालों के लिए?
1: मेरा संदेश तो सबसे पहले महिलाओं के लिए है कि सबसे पहले उन्हें बदलने की जरूरत है। हमारी बेटी या हमारा बेटा कहाँ जाएगा, किसके साथ शादी करेगा, कैसे पढ़ेगा, तो पहले वो अब जो घर की लीडर है वो है, उन्हें सोच बदलिए कि आपने बच्चों को दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, उनको अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है, जो आपके बच्चों को ठीक लगता है वो करने दीजिए।
0: करेक्ट। और आप कुमकुम क्या कहेंगी?
2: मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा महिलाओं के लिए, मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूंगी कि जो भी हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को जब सपोर्ट करते हैं तो वो आसमान छूती हैं, तो उनको पूरा सपोर्ट कीजिए और वो आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करने दीजिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाए।
0: रीना?
3: मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, हमें कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करो आप उनको ताकि वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी में।
0: बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, हम चार लोग चार राय रख रहे थे अपनी अपनी। मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा एपिसोड। फिलहाल हमारा जाने का समय हो रहा है। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि रुक चाहा दुनिया ने हर बार, फिर भी सपनों ने उड़ना नहीं छोड़ा, जो डर गए लोगों की सोच से उन्होंने खुद को जीना नहीं सीखा। तो आप जो है जीना सीखना चाहते हैं तो लोगों की बातों को छोड़िए, अपने आप पे और अपने काम पे ध्यान दीजिए। ये दुनिया ऐसी है, आगे पीछे बातें होती रहेंगी। इनफैक्ट मैं तो ये भी जानता हूं कि जब आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। जैसे शैली जी ने कहा, नेगेटिव भी चार लोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो उन पॉजिटिव लोगों को तलाशिए, वो आपको जरूर आपके आसपास मिल जाएंगे। और बाकी चार पॉजिटिव लोग हम भी हैं, हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हम भी आपके साथ हैं। फिलहाल यहाँ से लेते हैं हम जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम। थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू कुमकुम। थैंक यू रीना। ओके चलो जी, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए सुनते रहिए
1: 89.6 FM रेडियो मुरादाबाद।
0: क्या बात है,
3: रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
0: चलिए गाइस, बाय बाय।

0: का दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय नौसेना ने तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ आरजे खुशी है। और आज हम आप सभी के लिए एक बेहद खास इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी कि ट्रैफिक नियम के बारे में। यानी कि डीपली हमें पता होना चाहिए, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो हर चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो जरा सोचिए, लाल बत्ती हुई, आपने ब्रेक लगाया लेकिन गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग से भी आगे निकाल दी। आपको लग सकता है कि भाई मैंने तो लाल बत्ती पर ही गाड़ी रोक दी, लेकिन असली सवाल है कहाँ रोक। सड़क पर बनी सफेद लाइन यानी स्टॉप लाइन सिर्फ सड़क की सजावट नहीं होती, सिग्नल पर गाड़ी को उस लाइन के पीछे रोकना होता है। लाइन के आगे निकाल कर रोकने से पैदल चलने वालों को रास्ते में भी परेशानी हो सकती है और ट्रैफिक का अनुशासन भी बिगड़ सकता है। अगर अगली बार आप गाड़ी रोके तो सिर्फ लाल बत्ती मत देखिए, अपने आगे की सड़क पर बनी सफेद लाइन जरूर देखिए, क्योंकि उसको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, सिग्नल का सम्मान सिर्फ रुकने में

0: आकर्षित करती है। इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने योग नीति 2025 लागू की है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 5 नए योग केंद्र विकसित करने का लक्ष्य भी रखा है। इन प्रयासों से योग पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने, उत्तराखंड की योग परंपरा और वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उत्तराखंड की समृद्ध योग परंपरा इस संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार पिछले महीने की 29 तारीख से 1,80,00,000 टन से ऊपर स्थिर बना हुआ है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि 10 अक्टूबर को कोयले का भंडार 1,82,00,000 टन से अधिक था। जिन संयंत्रों में कोयले का भंडार कम है उनकी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को एक बार फिर हमला किया गया। सऊदी अरब के नागरिक उड्डयन सामान्य प्राधिकरण के अनुसार घायलों की स्थिति और हमले में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले शनिवार को भी हवाई अड्डे पर हमला हुआ था। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि शनिवार को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल 11 भारतीय नागरिकों में से एक की मौत हो गई है। पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने सहित हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी भारतीय नागरिक की मौत पर दुख जताया। पाकिस्तान में संघीय सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार को निलंबित करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंसा बढ़ गई है। कई इलाकों में पुलिस की गोलीबारी और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें हैं। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में कल वहां प्रदर्शन हुए। भारतीय शेयर बाजार में सितंबर माह के अंत तक म्यूचुअल फंड द्वारा 38,306 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जो पिछले माह की तुलना में 31% अधिक है। गोल्ड एक्सचेंज फंड में पिछले महीने की तुलना में 71.4% जबरदस्त तेजी देखी गई, जो 4,451 तक पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार दोपहर में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। शेयर 617 अंक गिरकर 71,855 पर आ गया, जबकि निफ्टी 158 अंक गिरकर 22,363 पर था। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिन में तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में भी ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कामना की कि मां ब्रह्मचारिणी सभी को साहस और आत्मसंयम का आशीर्वाद दें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वस्तु और सेवा कर GST भारत के कर सुधारों में परिवर्तनकारी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के GST नीति प्रकोष्ठ के आयुक्त गौरव सिंह शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना ने तटीय उथले समुद्री क्षेत्रों में खतरों से निपटने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मांगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के साथ बैठक अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वार हर भारतीय नागरिक के लिए खुले। सर्वोच्च न्यायालय तक विपक्षी दलों के विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली मेट्रो के 6 स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार शाम 4 बजे तक बंद। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों के लिए 3 नए स्थल निर्धारित किए। जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप यूं ही खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और गुनगुनाते रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सफर।

0: सही जगह रोकने में होती है। हाँ भैया, तुम किस ख्याल में खो रही हो?
1: नहीं, मैं किसी ख्यालों में नहीं खोई हुई हूँ। एक्चुअली आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अहम है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और सड़क पर बनी पीली लाइन देखकर क्या आप कभी सोचते हैं कि ये आखिर बनाई क्यों गई है? दरअसल रोड मार्केटिंग का हर निशान अपने अंदर एक संदेश रखता है। पीली लाइन कई जगहों पर इस बात का संकेत होती है कि वहाँ रुकना, पार करना या लाइन को पार करना प्रतिबंध हो सकता है, और इसका मतलब उस सड़क की स्थानीय व्यवस्था और लगे हुए संकेतों के हिसाब से समझाना जरूरी है। हम अक्सर ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, लेकिन सड़क पर बनी लाइनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ड्राइविंग नियमों में रोड मार्किंग भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो अगली बार सड़क पर पीली लाइन दिखे तो उसे सिर्फ रंग की लाइन समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा। सड़क बोलती है, बस हमें उसकी भाषा समझ आनी चाहिए।
0: तो अब हम बात करेंगे, मोबाइल हाथ में है तो ध्यान सड़क से हट चुका है, यानी कि गाड़ी चलाते समय एक कॉल, एक मैसेज, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और बस 2 सेकंड के लिए नजर मोबाइल पर गई। लेकिन सड़क पर 2 सेकंड भी बहुत होते हैं। ड्राइविंग के समय मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ बात करने तक सीमित नहीं है। मैसेज पढ़ना, वीडियो देखना, स्क्रीन पर कुछ ढूंढना या मोबाइल की वजह से सड़क से ध्यान हटाना, ये सब आपकी प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कई लोग कहते हैं, मैं तो फोन नीचे रखकर चला रहा था। लेकिन अगर ध्यान फोन पर है तो ध्यान सड़क पर पूरा कहाँ है? इसीलिए गाड़ी चलाते समय फोन को हाथ से दूर रखिए। जरूरी कॉल है तो सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकिए। देखिए, अगर फोन का कोई नोटिफिकेशन है तो उसे बाद में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन सड़क पर लिया गया गलत फैसला कभी वापस नहीं आता है, तो इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है।
1: और हाँ दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि हेलमेट पहन लिया, अब हमारा काम खत्म? लेकिन हेलमेट सिर्फ रखना और हेलमेट को सही तरीके से पहनना दो अलग बात होती है। अगर हेलमेट का स्ट्रैप खुला है या ठीक से बंधा नहीं है तो दुर्घटना के समय हेलमेट अपनी जगह से हट सकता है। आपने हेलमेट पहना जरूर है, लेकिन उसका सुरक्षा फायदा कम हो सकता है। और एक बात, सिर्फ दिखाने के लिए हेलमेट पहनना और सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना अलग बात है। बाइक या स्कूटी पर बैठने से पहले 3 चीजें चेक करें। हेलमेट सही से सर पर सही फिट है और स्ट्रैप लॉक है। हेलमेट सिर्फ सिर पर नहीं, जिम्मेदारी के साथ पहना जाता है एवरीवन। उसकी ये मत सोचिए कि बस इसे कुछ देर के लिए तो हमें जाना है, वो पहन लेते हैं, सर पर लगा लेते हैं, लेकिन नहीं एवरीवन, ये हमारी बहुत सुरक्षा करता है। तो कभी भी कहीं भी जाएं हेलमेट जरूर पहने, और जब आपके पीछे भी बैठे हैं उनको भी हेलमेट दीजिए।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, और साथ ही साथ एक बात भी तुमने देखी होगी कि जब पास में जाना होता है तो बोलते कि यार पास में जाना है, चल आ जाओ एक ही बाइक पर, तीन चल लेते हैं। लेकिन
1: लोग जाते भी हैं ऐसे लोग, में हमने बहुत लोग देखे हैं।
0: बिल्कुल, अरे वो तो अभी भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत में 2 पहिए वाहन पर ट्रिपल राइडिंग सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं है। अतिरिक्त व्यक्ति बैठने से बाइक का संतुलन, मोड़ लेने की क्षमता और अचानक ब्रेक लगने की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर 3 लोग बाइक पर बैठे हैं और रास्ता छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दुर्घटना दूरी देखकर नहीं आती। इसीलिए बाइक हो या स्कूटर, जितनी सवारी के लिए वाहन बना है उतनी ही सवारी रखें। और माता पिता अपने बच्चों को भी यही समझाइए, 2 मिनट बचने के चक्कर में 3 लोगों की जिंदगी खतरे में मत डालिए। देखिए, पता तो हर किसी को होता है, लेकिन इस चीज को फॉलो हम नहीं करते हैं। हम बाइक हो, स्कूटी हो, 3-3, 4-4 बैठकर चले जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी एकदम ब्रेक भी नहीं लगता है और इस गाड़ी को आप एकदम मोड़ भी नहीं पाते हो। इसीलिए सिर्फ 2 ही बैठे और तभी अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें।
1: अब कार में बैठते ही ना सबसे पहले कौन सीट बेल्ट लगाता है? अक्सर ड्राइवर। लेकिन क्या पीछे बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है? सड़क दुर्घटना में चोट सिर्फ ड्राइवर को नहीं लगती, पीछे बैठे यात्रियों को भी अचानक झटका लग सकता है। इसीलिए कार में सफर करते समय सुरक्षा सिर्फ आगे बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार के साथ जा रहे हो तो बच्चों और पीछे बैठे यात्रियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगली बार कार में बैठें तो एक छोटा सा नियम बना लीजिएगा, गाड़ी चलेगी तभी जब सभी अपनी सुरक्षा जांच लेंगे। सीट बेल्ट कोई सिर्फ चालान से बचाने की चीज नहीं है, ये सफर को सुरक्षित बनाने की आदत है। तो एवरीवन इस गुड हैबिट को जरूर फॉलो कीजिए।
0: क्योंकि जब भी आप गाड़ी में बैठते हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना होता है, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी जरूर लगाना चाहिए, और साथ ही साथ एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो तो उसको रास्ता कैसे दे, क्योंकि उसको रास्ता देना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले घबराना नहीं है और अचानक ब्रेक भी नहीं लगाना है, अपनी स्थिति देखकर सुरक्षित तरीके से रास्ता देना है। कई बार हम एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश में दूसरी गाड़ियों के बीच फंस जाते हैं, इसीलिए जरूरी है कि ड्राइवर आसपास की गाड़ियों को देखकर सुरक्षित तरीके से जगह बनाए। याद रखिए, एम्बुलेंस में बैठा व्यक्ति किसी का अपना है, किसी का पिता है, माँ, बच्चा या भाई हो सकता है। कभी कभी हमारे लिए सड़क पर सिर्फ एक वाहन होता है, लेकिन उनके लिए वही रास्ता जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता हो सकता है। इसीलिए रास्ता दीजिए और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़िए। घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक अच्छे से ड्राइविंग करना है और आसपास आपने देखना है तभी गाड़ी पार्क करना है। बीच में ये नहीं कि आपने जाके एकदम लगा दिया फिर आपको बाद में दिक्कत आए, तो वो चीज भी देखना होता है।
1: दोस्तों, रात में गाड़ी चलाते समय सामने से अचानक तेज सफेद रोशनी आई और कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, ये हाई बीम की रोशनी हो सकती है। हाई बीम का गलत इस्तेमाल सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों पर तीर चमक डाल सकता है और उसे सड़क देखने में परेशानी हो सकती है। खासकर रात में सामने से वाहन आ रहा हो तो ड्राइवर को अपनी लाइट का इस्तेमाल परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए। याद रखिए एवरीवन, सड़क पर सबसे तेज रोशनी दिखाना मकसद नहीं है, सही रोशनी में सुरक्षित चलना मकसद है। इसीलिए रात में अपनी हेडलाइट को सिर्फ ज्यादा उजाला समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर इस्तेमाल करें।
0: तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट है इसी में, यानी कि छोटी सी चीज है। कुछ लोग गाड़ी के अंदर जगह बनाने या सजावट के लिए मिरर को ऐसे दिशा में मोड़ देते हैं कि पीछे का रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब सोचिए, पीछे से कौन आ रहा है, किस वाहन की स्पीड क्या है और कब लेन बदलना सुरक्षित है। अगर पीछे का दृश्य ही साफ नहीं दिखाई देता तो फैसला कैसे लेंगे। रियर व्यू मिरर का उद्देश्य पीछे की स्थिति को देखने में मदद करता है, इसीलिए गाड़ी चलाने से पहले मिरर को सही पोजीशन में सेट करें। सामने सड़क देखना जरूरी है, लेकिन सुरक्षित ड्राइविंग में पीछे भी खबर रखना उतना ही जरूरी होता है। तो इस चीज का भी आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर कनेक्ट होते हैं आप सभी से और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की जो सुई है वो बिल्कुल भी नहीं आपने घुमानी है, वरना बहुत सी चीजें आप मिस कर जाएंगे क्योंकि बातें यहाँ पर होती है। और अभी ट्रैफिक के बारे में, जो कि हमें अक्सर पता होते हुए भी हम गलतियां कर जाते हैं और कभी कभी हमें पता नहीं होता है, तो ये चीजें आपको यही मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून रहिए, ढेर सारी बातों के साथ एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा म्यूजिक, प्यारा सा सॉन्ग आपने एंजॉय किया। दोस्तों, पार्किंग का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी पार्क कर दो गाड़ी, बस 2 मिनट के लिए गाड़ी लगाई है। यही 2 मिनट कभी कभी ना पूरी रास्ते का ट्रैफिक रोक देता है। सड़क के किनारे ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर देना जहाँ दूसरे वाहनों या पैदल लोगों का रास्ता बाधित हो रहा हो, सिर्फ आपकी सुविधा का मामला नहीं है। इससे एम्बुलेंस, स्कूल वाहन और दूसरे वाहन भी प्रभावित हो सकते हैं। पार्किंग करते समय सिर्फ ये मत देखिएगा कि आपकी गाड़ी फिट हो रही है या नहीं, ये भी देखिए कि आपकी गाड़ी से सड़क पर चल रहे बाकी लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। आपकी गाड़ी की जगह जरूरी है, लेकिन सड़क सबकी है, तो सबकी बारे में सोचिए, सबका ख्याल रखिए और सही जगह गाड़ी को पार्क कीजिए।
1: और देखिए, आपने सड़क पर देखा भी होगा सफेद पट्टियां दिखाई देती है हर किसी को, और हम सोचते हैं बस ये जेब्रा क्रॉसिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं? क्या एक्चुअल में हमें इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो अब पता लग जाएगा आपको। आराम से बस आप सुनते रहिए हमारा रेडियो। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए निर्धारित स्थानों में से एक है। ड्राइविंग को ऐसे स्थानों पर पैदल यात्रियों की मौजूदगी और सड़क पार करने की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। और पैदल चलने वालों के लिए भी संदेश है, जहां सुरक्षित क्रॉसिंग उपलब्ध हो उसका इस्तेमाल करें और सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़े। कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं और यूं ही चलते रह जाते हैं तो वो दुर्घटना हो जाता है। इसीलिए जब भी आप क्रॉसिंग करते हैं तो आमने सामने बाएं दाएं जरूर देखना चाहिए। सड़क सिर्फ कार और बाइक वालों की नहीं है, पैदल चलने वाली यात्रियों का भी हिस्सा है और उनका भी हमें ध्यान रखना होता है।
0: रेलवे क्रॉसिंग पर जल्दी किस बात की है? रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद है और ट्रेन आने वाली है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं बस बाइक निकाल लेते हैं। यही जल्दबाजी जानलेवा हो सकती है। साथियों, जहां रेलवे क्रॉसिंग पर गेट, सिग्नल या सुरक्षा व्यवस्था हो, वहां उसके निर्देशों का पालन करना जरूरी है। और हाँ, जहाँ अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग हो, वहाँ ड्राइवर की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ट्रैक पार करने से पहले पूरी तरह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई ट्रेन नहीं आ रही है। याद रखिए, ट्रेन आपके वाहन के मुकाबले बहुत भारी और तेज होती है। एक गलत अनुमान का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। रेलवे क्रॉसिंग पर 1 मिनट रुकना बेहतर है, जिंदगी भर का पछतावे से ज्यादा अच्छा है।
1: और बहुत सी जगह, और आप देखते भी हैं जब बाहर जाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं, यानी कि ओवरटेक करना है तो सिर्फ हॉर्न काफी नहीं होता है। सामने वाली गाड़ी धीमी है और आपको जल्दी है, आपने हॉर्न बजाया और निकल गए। लेकिन ओवरट्रैकिंग सिर्फ हॉर्न बजाने का नाम नहीं है। ओवरट्रैक करने से पहले सामने का रास्ता, पीछे का ट्रैफिक, सड़क स्थिति और सामने से आने वाले वाहन को देखना जरूरी है। ऐसी जगहों पर ओवरटेक करना खास तौर पर खतरनाक हो सकता है जहां दृश्य साफ ना हो। और सबसे जरूरी बात, दूसरे वाहन को अचानक काटकर अपनी लेन में वापस आना चाहिए। कुछ सेकंड के जल्दबाजी आपको आगे तो पहुंचा सकती है, लेकिन सुरक्षित तरीके से पहुंचना ज्यादा जरूरी होता है। इस किस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी सब ओवरटेक करने की बहुत कोशिश करते हैं, कभी कभी क्या, बहुत से तो करते ही हैं, तो इसीलिए इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है, अपने और अपने पीछे वालों का भी, गाड़ियों का भी ध्यान रखना होता है।
0: अब आपने बात की, ये ओवरटेक की बात की थी ना आपने, आप अपनी लाइन में चल रहे हैं और अचानक से दूसरी लाइन में चले गए। आपको रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन पीछे वाला ड्राइवर आपके मन की बात कैसे जानेगा? यही वजह है कि लाइन बदलते समय इंडिकेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इंडिकेटर दूसरे ड्राइवर को आपके इरादे का संकेत देता है, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर लगाना ही काफी नहीं है। मिनर देखकर और आसपास के ट्रैफिक सिचुएशन समझकर ही लाइन क्रॉस करें, क्योंकि इंडिकेटर ये नहीं कहता कि अब मैं बिना देखे मुड़ जाऊं। वो सिर्फ कहता है कि मैं दिशा बदलने वाला हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। इसीलिए इंडिकेटर लगाइए, मिनर देखिए और फिर सुरक्षित तरीके से लाइन चेंज कीजिएगा।
1: और कभी कभी हम इतने जल्दबाजी में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं ना, कि शॉर्टकट कर लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं होता है, खतरा भी हो सकता है, इस चीज का भी पूरा पूरा अपने ध्यान रखना है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है और आगे तंदूरी है और किसी ने बाइक गलत दिशा में निकाल दी, उसे लगा कि 2 मिनट बच गए, लेकिन रॉन्ग साइड ड्राइविंग में सामने से आने वाले वाहन के साथ आमने सामने टकराने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर रात या मोड़ वाली सड़क पर सामने से आने वाला वाहन आपको समय पर देख भी ना पाए। गलत दिशा में चलाना सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़ना नहीं है, दूसरे लोगों को भी अचानक खतरे में डालना होता है। इसीलिए चाहे रास्ता थोड़ा लंबा हो जाए, सही दिशा में चलाइए। शॉर्टकट अगर सुरक्षित नहीं है तो वो शॉर्टकट नहीं ले, क्योंकि वो रिक्सी हो सकता है आपके लिए। बहुत से करते भी इस काम को भैया कि चलो शॉर्टकट करना है कर लेते हैं यहीं से, लेकिन इससे ये चीज नहीं करना है आपने, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है।
0: आगे वाली गाड़ी से दूरी क्यों जरूरी है, मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आगे वाली गाड़ी से आपकी दूरी सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि आपको उसका नंबर प्लेट दिखाई देता रहे, असल में सड़क पर अचानक कुछ भी हो सकता है। आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगा सकती है, कोई पैदल व्यक्ति सामने आ सकता है या सड़क पर कोई बाधा आ सकती है। अगर आपने बिल्कुल पीछे चिपकाकर गाड़ी चला रखी है तो आपके पास रिटेक का समय बहुत कम होगा, इसीलिए ट्रैफिक चाहे कम हो या ज्यादा आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त सुरक्षित दूरियां रखना समझदारी है। गाड़ी चलाना सिर्फ आगे देखना नहीं है, आगे क्या अचानक हो सकता है उसके लिए तैयार रहना भी जरूरी है।
1: और हाँ, स्पीड लिमिट को सलाह समझना भारी पड़ सकता है। सड़क खाली है, मौसम अच्छा है और ड्राइवर सोचता है आज थोड़ा तेज चला लेता हूँ, क्या ही जा रहा है क्योंकि सड़क भी खाली है। लेकिन सड़क खाली होने का मतलब ये नहीं कि स्पीड लिमिट खत्म हो जाए। गति सीमा सड़क ट्रैफिक आसपास के क्षेत्र और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय की जाती है। स्कूल बाजार भीड़ भाड़ वाले इलाकों और मोड़ वाली सड़क पर खासकर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो गाड़ी चलाने से रिएक्शन टाइम कम हो सकता है और अचानक सामने आई स्थिति में वाहन रोकना मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्पीड का मजा लेना है तो सुरक्षित तरीके से ले। सड़क रेसिंग ट्रैक नहीं है, यहाँ आपके साथ दूसरे लोगों की जिंदगी भी चल रही है, इसीलिए अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है।
0: हमारे शहरों में हॉर्न की आवाज़ इतनी आम है कि कई बार लोग बिना जरूरत के भी हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन

0: हॉर्न का इस्तेमाल दूसरे रोड यूजर को सावधान करने के लिए होना चाहिए, गुस्सा निकालने के लिए नहीं एवरीवन। खासकर साइलेंस जोन या अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आसपास अनावश्यक हॉर्न दूसरों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आगे गाड़ी चल रही है तो हर 2 सेकंड में हॉर्न बजाने से सड़क खाली नहीं हो जाएगी। हॉर्न आपकी आवाज़ है, गुस्सा नहीं। जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें और सड़क पर दूसरों की शांति का भी सम्मान करें। मैंने देखा है कि कुछ लोग ट्रैफिक में बार बार हॉर्न बजाए जाते हैं। खुद तो वो होते ही इरिटेट, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी कर देते हैं।
1: उसको मजा भी आता है,
0: लेकिन मुझे
1: मजे के चक्कर में बजाते हैं वो।
0: ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। एंड प्लीज एवरीवन, अगर आप हमें सुन रहे हैं ना, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा और बाकी मुस्कुराते रहिए, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए।
1: मुझे लगता है कि वो हॉर्न नहीं बजाते हैं, शादी में ढोलक बजाते हैं ना, उसका काम करते हैं। और अब देखिए, मौसम जैसे खराब होए तो उस समय कैसे स्पीड रखनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यानी कि बारिश शुरू होते ही सड़क का रंग बदल जाता है, लेकिन क्या हम अपनी ड्राइविंग कभी बदलते हैं? बारिश में सड़क फिसलन भारी हो सकती है और विजिबिलिटी कम हो सकती है। ऐसे में सामान्य मौसम वाली स्पीड और डिस्टेंस हमेशा सुरक्षित नहीं होता। आगे वाली गाड़ी से दूरी बढ़ाना, अचानक ब्रेक या तेज टर्न से बचना और सड़क की स्थिति देखकर गति कम करना समझदारी है। और अगर पानी सड़क पर जमा है तो सिर्फ इसलिए आगे ना बढ़े कि सामने वाली गाड़ी निकल गई। याद रखिए, बारिश में सड़क वही होती है लेकिन उसके ग्रिप और विजिबिलिटी बदल जाती है। इसीलिए मौसम बदले तो ड्राइविंग स्टाइल भी बदल लेना चाहिए। ये नहीं कि मौसम अच्छा हुआ, छपा छप वाले पानी के फुहारे बौछारे मारते हुए भैया निकल लो, चाहे किसी के कपड़े गंदे हो जाए। इसका जरा सा हमें ध्यान रखना है श्रोताओं। लेकिन फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक। देखिए, बातों के साथ साथ गाना भी हम आपको सुनवाएंगे। ये मत सोचिए कि हम सिर्फ बातें ही करते रहते, हम गाना भी सुनवाते हैं। तो मिलते हैं एक प्यारे से गाने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और ये खूबसूरत सा शो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। गाड़ी में जगह बची हो तो लोग सामान भरते जाते हैं और फिर कहते हैं अरे थोड़ा ही तो सामान है, लेकिन ज्यादा वजन वाहन की हैंडलिंग को प्रभावित कर सकता है। ब्रेक लगाने, मोड़ लेने और वाहन को नियंत्रण करने में परेशानी हो सकती है। खासकर सामान ढोने वाले वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा वजन रखना सड़क सुरक्षा का गंभीर मुद्दा है। वाहन जितना वजन सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाया गया है उसी के अनुसार सामान रखना चाहिए। गाड़ी में जगह बची है इसका मतलब ये नहीं है कि वजन की भी कोई सीमा नहीं है। तो जब भी आप गाड़ी में कोई सामान रख रहे हैं तो उतना ही रखें जितना सामान्य है। अगर आपको लग रहा है कि स्पेस है तो और भर देते हैं, ये नहीं कीजिएगा। छोटी सी गलती बहुत बड़ी मुश्किल ला सकती है, तो इन चीजों का ख्याल रखें।
1: हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि नंबर प्लेट भी ट्रैफिक सुरक्षा का हिस्सा है। कई लोग गाड़ी खरीदने के बाद उसके लुक पर बहुत ध्यान देते हैं, स्टिकर, डिजाइनिंग, मॉडिफिकेशन, लेकिन नंबर प्लेट पर कम। जबकि नंबर प्लेट वाहन की पहचान का जरूरी हिस्सा है। अगर नंबर प्लेट गलत तरीके से लगी है तो पढ़ने में मुश्किल है, तो ये सिर्फ अपीयरेंस का मामला नहीं रह जाता। सड़क पर वाहन की पहचान साफ दिखाई देना जरूरी है, इसीलिए नंबर प्लेट को छेड़छाड़ करके फैंसी बनाने से पहले नियम जरूर समझें। गाड़ी आपकी हो सकती है लेकिन सड़क पर उसकी पहचान नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
0: गाड़ी चलाते समय लोग पेट्रोल देखते हैं, टायर देखते हैं, मोबाइल की बैटरी देखते हैं, लेकिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स वो भूल जाते हैं। कई बारी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वाहन से जुड़े जरूरी प्रमाणों की वैधता का ध्यान रखना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है। आज कई सेवाएं डिजिटल भी हैं और परिवहन जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, लेकिन हर ड्राइवर को अपनी डॉक्यूमेंट्स की स्थिति और लागू नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। इसीलिए गाड़ी सड़क पर निकालने से पहले सिर्फ चाबी उठाना काफी नहीं है, गाड़ी की तैयारी में डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होने चाहिए।
1: आपकी गाड़ी बाहर से चमक रही है लेकिन ब्रेक ठीक नहीं है, टायर और हवा सही नहीं है, लाइट काम कर रही है, इंडिकेटर चल रहे हैं। रोड सेफ्टी में व्हीकल की कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी सेफ्टी गाइडनेस और ब्रेक्स, टायर, लाइट्स और सिग्नल की नियम जांच पर जोर देती है। कई बार हम गाड़ी में छोटी खराबी को नजरअंदाज कर रहे हैं, अगली सर्विस में देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, अभी चलने देते जैसा चल रहा है, लेकिन सड़क पर छोटी खराबी भी बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए महीने में कम से कम एक बार बेसिक सेफ्टी चेक की आदत जरूर रखें। जैसे आपको भूख लगती है, इनको भी भैया ठीक करवाना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका ये साथ निभा सकती है गाड़ी। क्योंकि सुरक्षित ड्राइविंग सिर्फ अच्छे ड्राइवर से नहीं बल्कि अच्छी हालत वाले वाहन से भी होती है। इसीलिए इन चीज का भी आपने ध्यान रखना।
0: और दोस्तों, ट्रैफिक नियम सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बनाए गए हैं। सड़क पर हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग लोग हैं, पैदल यात्री हैं, साइकिल चलाने वाले हैं और दोपहिया वाहन चालक भी हैं। हर व्यक्ति की स्पीड और डायरेक्शन अलग होते हैं, इसीलिए ड्राइविंग में सिर्फ अपने रास्ते के बारे में सोचना काफी नहीं है। अगर सामने कोई बुजुर्ग धीरे सड़क पार कर रहा है तो हॉर्न बजाने की बजाय उस व्यक्ति को आप सुरक्षित तरीके से रास्ता देना ज्यादा अहम है। एवरीवन, इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए और सड़क पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समझदारी और थोड़ी इंसानियत, ये भी रोड सेफ्टी के जरूरी हिस्से हैं।
1: देखिए श्रोताओं, अब हमें आप सभी से ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब हमारा यहाँ से छानी का टाइम हो गया है। हम आपको मिलेंगे कल, करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन जाते जाते चालान आए तो फर्जी लिंक से बचना भी जरूरी है। आजकल ट्रैफिक चैलेंज भी डिजिटल तरीके से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मोबाइल पर चालान के नंबर से मैसेज देखकर लोग तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन यही सावधानी जरूरी है। सड़क ई चालान व्यवस्था खुद लोगों को फर्जी वेबसाइट और ऐप से सावधान रखने की सलाह देती है। किसी अनजान लिंक पर जाकर पासवर्ड, ओटीपी या पेमेंट डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर चालान को लेकर कोई मैसेज आए तो उसकी जानकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से वेरीफाई करें। और याद रखिए, ट्रैफिक रूल तोड़ने से बचना जरूरी है, लेकिन फर्जी चालान के नाम पर ठगी से बचना भी उतना ही जरूरी है। सड़क पर सेफ्टी हेलमेट हेलमेट से शुरू होती है और ऑनलाइन सेफ्टी सही वेरिफिकेशन से शुरू होती है। इसीलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सही जानकारी लीजिए, तभी आप कोई भी लिंक पर प्रेस करिए, अदरवाइज नहीं। बाकी जो ट्रैफिक नियम है उसका फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सुरक्षित अपने घर पहुंचते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर वाले भी इंतजार करते रहते हैं कि आप ऑफिस से निकल चुके हैं तो सही सुरक्षित आप अपने घर पहुंचे। मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में, अभी के लिए नमस्कार।
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को, दिल्ली रोड जूडियो के सामने, कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
6: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

हेलो मेरी डियर लिसनर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर का ये खूबसूरत सा समय चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान और दिलों में अपनों से बात करने की एक अलग ही खुशी, और जब बात हो आप सभी से बात करने की तो हमारे भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और दोस्तों, मैं आपके बीच आ चुकी हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी खुशी। देखिए, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है अभी 3:06, और मुझे पता है कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है इस कार्यक्रम का।

0: और दोस्तों कहते हैं ना कि रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, दिलों को जोड़ने का एक खूबसूरत सा जरिया है। और मेरे लिए आप सभी से बातचीत करना, अपने प्यारे प्यारे श्रोताओं की फरमाइशों को प्ले करना एक अलग ही कह सकते हैं कि एक अलग ही अनुभव है, बहुत खुशी मिलती है हमें। वैसे आप भी बहुत खुश होंगे क्योंकि यहाँ पर आपको भी कॉल लगाने का मौका मिल रहा है। तो जल्दी से आप मुझे कॉल लगाइएगा एवरीवन। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है एंड आप सभी को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करते हैं अपनी पहली कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो जी, कहाँ भाग भाग के जा रहे हो आप? अच्छा ओके, बताएगा क्या नाम है आपका? जी बताएगा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी, आप कैसी
0: हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। और आप मुस्कुरा कर इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो हम और भी अच्छे हो गए हैं।
1: जी मैम, आप अच्छी रहती हैं तो हमें भी अच्छा लगता है।
0: हाँ जी, आप इतनी हमसे मोहब्बत जो करते हैं तो हम तो ठीक रहते ही हैं, इतना सारा प्यार जो मिलता है आप सबका। जी और बताइएगा, खैरियत से हैं सब आपकी फैमिली में?
1: जी मैम सब अच्छे हैं, आपकी फैमिली में कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आप हमारे शो की फर्स्ट कॉलर बनी हैं, क्या फरमाइश है, कौन सा वो गाना है जो आपके दिल में धड़क रहा है, जो आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मेरे दिल में गाना धड़क रहा
0: है, ओहो क्या बात है जी, बहुत प्यारा गाना है, किन के लिए सुनना चाहती हैं आप?
1: ये है मेरी सिस्टर है दर्शा फातिमा, रुकैया फातिमा, अफरोज फातिमा, नजमा सैफी।
0: ओके
1: सभी के साथ सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारे से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: बाय
0: बाय, ठीक है। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक गजेंद्र वर्मा जी की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गाना है। मैं लौट कर वापस आती हूँ, तब तक आप कहीं मत जाइए, रेडियो को बिल्कुल भी मत घुमाइए और मुझे कॉल लगाइएगा।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक मन मेरा गजेंद्र वर्मा जी की खूबसूरत सी आवाज में। मन तो मेरा भी नहीं मानता है आपसे बातें किए बिना, एंड और आपका मन भी नहीं मानता है। देखिए, आप भी कॉल लगा ही लेते हैं हमें, और हमारे प्यारे से लिसनर्स का कॉल आया, लिसनर का कॉल आया, उनसे बातचीत करते हैं। कौन कहाँ से कनेक्ट हुई है? हेलो, फरमाइश। आपको भी प्यार भरा नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: महाराष्ट्र से
0: तनुश्री जी हमारी साथ जुड़ी है महाराष्ट्र से। बताइएगा तनु, कैसा मौसम है महाराष्ट्र का?
1: इधर तो अभी तो गर्मी है, पर मौसम तो अच्छा है कि सुबह भी थोड़ा सा ठंडा होता है और रात में थोड़ा ठंड होता है, पर दोपहर को थोड़ा गर्म होता है।
0: हाँ जी, मौसम ओके। तो बताइएगा तनुश्री, अपने हालचाल और अपने परिवार के कैसे हैं सब लोग?
1: मैम, पूरे परिवार बहुत मतलब अच्छा है, और मैम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको और आपके सभी परिवार को और पूरी टीम को मैं नवरात्रि की शुभकामना देना चाहती हूँ।
0: आपको भी शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तनु।
1: आप परिवार की तरफ से भी आपको थैंक यू।
0: ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप बताइएगा तनु, जब आप हमें कॉल करते हैं रेडियो

0: स्टेशन में, तो आपकी पूरी परिवार पूरी फैमिली सुनती है या सिर्फ आप ही अकेली रेडियो की दीवानी है या पूरा परिवार रेडियो सुनता है?
1: नहीं मैम, रेडियो की ज्यादा दीवानी तो मैं ही हूँ घर में। तो मेरे पापा तो रेडियो सुनते हैं, पर पापा को टाइम की वजह से रेडियो ज्यादा सुनना नहीं मिलता। पापा का भी मन होता है पर पापा जॉब करते हैं इसलिए सुनने नहीं मिलता। पर जैसे मैं जिधर फोन लगाती हूँ कार्यक्रम, तो पापा तो सुनने का प्रयास करते हैं पर कभी कभी सुन नहीं पाते। पर ज्यादा घर में तो रेडियो की दीवानी मैं ही हूँ।
0: अच्छा, तो ये रेडियो की जो दोस्ती करवाई वो आपके पापा जी ने करवाई है, राइट?
1: नहीं मैम, मैंने खुद ही की है घर में। मतलब घर में शास्त्रीय संगीत के साथ साथ मैंने बोला फिर एंटरटेनमेंट में हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं बचपन से रेडियो में क्यों नहीं जुड़ी।
0: अच्छा, तो नहीं मतलब स्टार्टिंग से तो आपके फादर साहब रेडियो सुनते थे ना?
1: पापा सुनते थे पर बीच में पापा ने छोड़ दिया था ना।
0: अच्छा, ओके, काम की वजह से, व्यस्त जीवन की वजह से, कोई बात नहीं। लेकिन तनुश्री ने उस दोस्ती को कायम रखा। हाँ
1: उनके उनके मतलब कहते हैं ना, हम माँ बाप सपना देखते हैं और अपने लड़को मतलब बेटी को बेटा को मतलब पढ़ाने के लिए। तो वैसे मेरे पापा ने ऐसा समझो कि सपना देखा कि रेडियो पर कॉल लगा तो सपना मेरे पापा का भी मैं पूरा कर रही हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है तनु, आपने तो दिल जीत लिया है। तो बताइएगा तनुश्री, आज आप क्या सुनना चाहोगी?
1: मैम फिल्म का नाम है फकीरा, उसमें गाना है दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आके, पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी।
0: वाओ नाइस तनुश्री, आप तो सच में बहुत ही अच्छा गाते हो। और कैसी चल रही है आपकी सिंगिंग प्रैक्टिस?
1: जी?
0: मैंने कहा कैसी चल रही है आपकी सिंगिंग प्रैक्टिस?
1: बहुत मैम बढ़िया चल रही है।
0: चलिए हमारी ओर से ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से यू नो प्रैक्टिस कीजिए और जो भी आपका ड्रीम है सिंगिंग से रिलेटेड एंड आपको उसमें सफलता मिले। और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, हमारी ओर से बेस्ट विशेष आपको।
1: थैंक यू सो मच मैम,
0: मोस्ट वेलकम तनु। तो चलिए तनुश्री से हमने बात की, बहुत अच्छा लगा, महाराष्ट्र से हमारी लिसनर हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। और मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहती हूँ जो राइट नाउ मुझे सुन रही हैं अभी, कि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी।
1: अरे तो छोटू, ये सारा काम छोड़ के तू फोन मिला आरजे खुशी को।
2: कौन है ये?
1: ये है आपकी फेवरेट आरजे खुशी, जो आती है लेकर आपका फेवरेट फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। 3 से 5 मंडे टू सैटरडे करती है आपसे दिल की बात।
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: सुनिए हेलो फरमाइश ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: हाँ जी दोस्तों, आप कॉल लगा सकते हैं, नंबर हमारा है 9837896896। एंजॉय कर सकते हैं ये ब्यूटीफुल सेशन। एंड अभी वक्त हुआ है 3:23 और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट खुशी। शो का नाम तो आपको मालूम है हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल लगा सकते हैं और अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो इसका आनंद उठाइए और अपने फेवरेट गाने सुनते जाइए। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। जय श्री महाकाल। जय माता दी। कैसे हैं आप बताइएगा, और क्या नाम है आपका?
5: जय माता दी मैम, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ मैम।
4: जी बताइएगा शिवा, कैसे हैं आप?
5: मैं बहुत अच्छा हूँ मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को और आपकी फैमिली को नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
4: आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी झूलियां खुशियों से भर दें और जितने भी जीवन में दुख तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाएं। और बताइएगा शिवा, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी?
5: मैम मूवी का नाम है जय माँ वैष्णो देवी, इसमें एक गाना रहेगा जगदाती है पहाड़ा वाली वहाँ मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ।
4: अच्छा ठीक है, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा आपको गीत। आपने हमें कॉल किया, आप उसके लिए धन्यवाद आपका।
5: थैंक यू मैम,
4: मोस्ट वेलकम। जय श्री महाकाल। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत सोनू निगम जी की आवाज में। एंड मैं वापस आती हूँ इस खूबसूरत गीत के उस पार। आप कहीं पर जाइए और मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9837896896।

0: गुरुदेव।
1: अवश्य। सदा सुहागन रहो। अब जल्दी से भोजन ले आओ कन्या।
0: इधर आओ बैठिए गुरुदेव।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी जय माँ वैष्णो देवी, सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज। और नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ जगदम्बा से बस यही प्रार्थना है कि माँ हर भक्त की लाज रखें, हर बिगड़ी बनाएं और सबके जीवन में सुख समृद्धि का उजाला भर दें। और चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर।

0: जी कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अभी। हेलो फरमाइश। जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर? और बताइएगा सर, क्या हाल चाल है आपके और आपके परिवार में? सब लोग ठीक है ना?
1: घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं।
0: जी जी जी, बताइएगा कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: अब तो लगभग 9 बजे से सुबह के
0: हाँ जी खिलखिलाती धूप है।
1: शाम से जो है 5 बजे के बाद ज्यादातर बूंदाबांदी रही है।
0: हाँ जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: नाम खाने का।
0: हाँ जी, ओके ठीक है, ये गीत आपको सुनवाते हैं सर हम। जी बताइएगा। ओके, तो आपकी पूरी फैमिली के साथ सुनवाते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ ये गाना आप एंजॉय कीजिएगा। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया सर, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, मैं इधर से शुक्रिया बोल रही हूँ, वो इधर से थैंक यू बोल रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम बोलना तो बनता है। और बाकी आप भी मुझे कॉल कीजिएगा बेफिक्र होकर, हम आपका कॉल रिसीव करने के लिए तैयार हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने दोपहर को खूबसूरत बनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो हेलो फरमाइश में आपका वेलकम है। एंड एवरीवन, वक्त हुआ है अभी स्टूडियो की घड़ी में 3:39 और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी थानेदार एंड अनुराधा पौडवाल जी की खूबसूरत सी आवाज और साथ में बप्पी लहरी जी दे रहे थे साथ। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, जान लेते हैं उनकी फरमाइश भी यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश,
0: आपको भी नमस्कार सर, आपका नाम बताइएगा। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? एकता कॉलोनी से बात कर रहे हैं जी। बताइएगा कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग और आप ठीक है? जी बताइएगा क्या सुनना है आपको? अच्छा ठीक है, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं सर। आपको भी नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से। एंड मैं वापस आती हूँ इस खूबसूरत गीत के उस पार, आप कहीं मत जाइएगा और हाँ मुझे कॉल जल्दी से लगाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इस खूबसूरत सफ़र को इन्जॉय कीजिएगा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
8: हाँ जी एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत वेलकम करती है आरजी कृषि एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी प्रेम रोग से, और बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से क्योंकि वो भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, नमस्कार जी, अपना नाम बताइएगा। अनिल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ओके बताइएगा सर, कैसे हैं आप? हाँ लगता है कुछ काम में व्यस्त हैं, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी सर। ओके ठीक है सर, अपनी पसंद का हम सुनवाते हैं आपको नवरात्रि स्पेशल ट्रैक, और आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सर। हाँ जी हाँ जी बताइएगा। ओके ठीक है सर जी, आपके पूरे परिवार के साथ सुनवाते हैं आपकी पसंद का। आपने कहा कि खुशी जी अपनी पसंद का आप सुनवा दीजिएगा कोई भी ट्रैक, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है मैं सुनवाती हूँ आपको, माता रानी स्पेशल है एंड नवरात्रि चल रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना एवरीवन। मैं वापस आती हूँ, आप कहीं मचाइएगा, बने रहिए सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे कृषि के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश। और देखिए, शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है माँ ब्रह्मचारिणी जी का, और चारों तरफ पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वातावरण एंड इतना खूबसूरत सा माहौल है। हर किसी के घर में माता रानी विराजमान है और सब पूजा अर्चना आराधना करने में व्यस्त हैं, एंड घर का माहौल भी और मार्केट में भी इतना खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है, फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट हो गए हैं। और हमारे साथ हमारी कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला बिजली समाचार
0: जी। बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: हाँ जी, हम भी अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं सर। आप बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: हमारा इधर तो मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, गर्मी पड़ रही है और हल्के फुल्के बादल भी हो रहे हैं। और आपके इधर का मौसम कैसा है?
0: सर हमारे यहाँ पर आज का मौसम बहुत खिलखिलाती धूप है, अच्छा वेदर है
1: जी। बारिश नहीं हो रही है?
0: बारिश हमारे यहाँ पर सर कल हुई थी इवनिंग में, एंड इवनिंग से नाइट तक बारिश हुई थी और सुबह में धूप निकली है। नहीं, अच्छी खासी बारिश हुई है सर, मतलब ज्यादा भी नहीं हुई है और कम भी नहीं हुई है, ठीक ठाक बारिश हुई है।
1: मथुरा में भी बारिश हुई थी कल, मेरे साथ आज मेरी बात भी हुई थी मथुरा में।
0: अच्छा अच्छा, ओके। तो बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है जालिम का, सुनवा देना आप।
0: जी,
1: कुमार सानू का गाया हुआ गीत आप सुनवा देना, कोई सा भी चला देना आप।
0: ठीक है सर, हम सुनवा देते हैं आपको। कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रोता, सुनते हैं कुमार सानू जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी जालिम, एंड मैं वापस लौट कर आती हूँ इस खूबसूरत गीत के उस पार। आप ही मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: हेलो हाय गुड इवनिंग माय ब्यूटीफुल लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए ब्यूटीफुल बोलना तो बनता है क्योंकि आप सब इतने प्यारे जो हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है क्योंकि कहते हैं ना जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है। अगर हम किसी के लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं किसी को तो रिटर्न में हमें भी अच्छा मिलता है। और आप चाहते हैं ना कि खुशियाँ आपको भी मिले तो खुशियाँ बांटिएगा आप भी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्कार सर। हाँ जी हेलो, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका सर और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा कैसे हैं आप सब? अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए सर। हम तो यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि सभी लोग स्वस्थ रहें। ये बताइएगा आप क्या करते हैं सर अपने बारे में?
1: मैं खेती करता हूं।
0: अच्छा खेती करते हैं, ओके। तो अभी धान की कटाई तो शायद हो गई है ना या रह रही है अभी?
1: नहीं मेरे पास धान तो नहीं है, मैंने तुरई लगा रखी है।
0: अच्छा ओके, सब्जियां आप उगाते हैं? अरे वाह, तो कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई है आपने सर?
1: इस समय मेरे खेत में तुरई है।
0: अच्छा तुरई है, ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कैसा चल रहा है आपका खेती बाड़ी का ये कारोबार?
1: सही है, बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है, अच्छा ही चलना चाहिए। आप मुझे बताइएगा आज आपने कार्यक्रम में कॉल किया है, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? अरे वाह, बहुत खूबसूरत ये गीत है, तो सुनवाते हैं आपको, आप एंजॉय कीजिएगा सर। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, लौट कर मैं वापस आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका कॉल भी डेफिनेटली लगेगा। एंड नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुनने वाले हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में, इंजॉय कीजिएगा।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ही प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी उपकार, जो 1967 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था महेंद्र कपूर जी ने। और हम लोगों को बहुत प्राउड है एंड के हम इंडियंस हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इंडिया में जन्मे हैं ना दोस्तों, एंड हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: संभल से छोटे अंसारी का प्यार भरा आदाब, और सभी प्रोग्राम सुनना है उनको भी आदाब जी।
0: आदाब, आपको भी आदाब सर। बताइएगा अपना नाम। छोटे अंसारी जी बात कर रहे हैं ना आप? आपने बताया जिला संभल से, राइट?
1: जी जी जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया जी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया हैं। और बारिश जो है ना, कभी बस बारिश ने भी किसानों को परेशान कर दिया
0: जी।
1: धानों की परेशानी हो रही है लोगों को। और जी ये है कि अब कुछ दिन के लिए रुक जाए बारिश तो बहुत अच्छा होगा, लोग आस लगाए हुए अपने धानों से, चावलों से।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, फसल खेतों में तैयार खड़ी है, और अगर बारिश आ जाएगी तो वो फसल खराब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ ऊपर वाले से कि अब बारिश ना हो, और बाकी तो सब उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के हाथ में है, जो चाहेंगे वही होगा। हम सब तो प्रार्थना ही कर सकते हैं सर।
1: बेशक बेशक, सही बात है बिल्कुल।
0: हाँ जी,
1: हमें बहुत खुशी हो रही है। खुशी जी, मेरा कॉल लग गई, बहुत घंटों में कॉल लगी आज।
0: अच्छा, तो कब से प्रयास कर रहे थे आप? 3 बजे से ही?
1: हाँ ऐसे कर रहे थे, कोई 3:20 से।
0: अच्छा ओके, हाँ तो 1 घंटा आपको हो गया है प्रॉपरली। और बताइएगा आप आज क्या सुनना चाहेंगे सर, आपने शो में कॉल किया है।
1: हम सुनेंगे आवाज है मोहम्मद अजीज की
0: जी।
1: शुरू से बताऊँ, शुरू से फिल्म का नाम है जंगबाज।
0: हाँ जी,
1: आवाज है मोहम्मद अजीज की। गीत की बोल है, तू तो मेरे लिए दुनिया में आई है। इसके गाने में एक्टिंग की है गोविंदा और मंदाग्नि जी ने।
0: ओके सर।
1: और जी एफएम मुरादाबाद की जो साउंड है ना, मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती है। और जी बस ये है कि ज्यादा समय न लेते हुए और कोई भाई का या जिसका भी कॉल लगेगी वो भी इंतजार में होंगे।
0: जी
1: गीत का इंतजार कर रहा हूँ मैं, आपसे बात हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कॉल किया। सुनवाते हैं आपका पसंदीदा गीत।
1: एक नाम ले लूं?
0: हाँ जी, हाँ जी ले लीजिए। का
1: मेरे साथ भाई हैं, बाबू अंसारी हैं, खुशी जी हैं, पंजसराय संभल से छोटे अंसारी।
0: ओके सर, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए अभी वन सर ने बोला था एक नाम ले लूँ, एक की जगह उन्होंने 2-3 नाम ले लिए हैं, बट कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है। एंड हाँ एवरीवन, आप भी मुझे दोस्तों कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837898 और सुनिएगा ये शानदार सा गीत।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसी 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड।

0: 6002230.
1: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और शो का नाम है हेलो फरमाइश, फोन इन कार्यक्रम है। आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। तो अभी हमारे साथ हमारी एक नेक्स्ट कॉलर जुड़ी है, बड़ी प्यारी सी है और इनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं इनकी पसंद का कौन सा गाना है आज वो सुनना चाहती हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते, जय माता दी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया है हम, आप बताओ आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आंचल।
0: आंचल, अरे वाह, नाम तो बहुत ही खूबसूरत है आपका। बताइएगा आंचल जी, कैसे हैं आप और क्या करते हैं?
1: हम तो बढ़िया है, हम तो घर पे रहते हैं अपने बच्चे के साथ, हमारे पास एक लड़का है।
0: अरे वाह, आप अपने बीबी का क्या ख्याल रखते हैं अच्छे से, है ना? घर की जिम्मेदारियां हाँ। भी होती हैं, उनको आप कंप्लीट करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि मम्मा बनना, बच्चों की केयर करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आप मुझे बताइएगा आचल जी, कैसा लगता है आपको रेडियो सुनना?
1: रेडियो सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत खुशी होती है, ये तो बोलो।
1: बहुत खुशी होती है।
0: हाँ जी, तो बताइएगा आचल जी, आज आप क्या सुनना चाहती हैं?
1: नवरात्रि चल रहे हैं, इनके ऊपर कोई
0: क्वेश्चन सुना देना। ओके, ठीक है, सुनवाते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका काफी, आप कह रहे हैं कि मेहनत करने की बात, कॉल लगाए हैं?
1: एक घंटे में कॉल लगाया पूरे।
0: तो इसीलिए तो कह रहे हैं, आपको मौका मिले है, बताइए और कुछ कहना चाहते हैं आप? आपके परिवार वाले भी आपको सुन रहे हैं? अच्छा, चलिए, अपने आप अपनी फैमिली के साथ सुनिएगा ये प्यारा सा देवी गीत। कॉल करने के लिए धन्यवाद आचल। ओके, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर मैं आती हूँ सुखिंदर सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में, खूबसूरत ट्रैक। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है। और अभी आपने सुनाई खूबसूरत सा ट्रैक एंड सुखिंदर सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज़ और फ्रॉम द मूवी मेहरबान से। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश। हाँ जी मैम, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि। और बताइएगा कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं।
0: हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपसे बात से हो गई है। और सब कुछ ऑल गुड, बढ़िया बढ़िया है। एंड नवरात्रि चल रहे हैं जहाँ माता रानी जी का वास होता है, माता रानी जी के दिन चलते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। मैम अपना नाम आप बताइएगा।
1: मेरा नाम है स्वाति।
0: स्वाति, ओके। और बताइएगा कैसे हैं आपकी बेबी?
1: हमारे दोनों बेबी बहुत अच्छे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। दोनों ही नटखट हैं पर बहुत प्यारी हैं। जी बताइएगा मैम, आप क्या सुनना चाहेंगे आज? ओके, तो चलिए हम सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक। और एंजल बताइएगा कैसी है आपकी?
1: एंजल बहुत अच्छी है, वो ट्यूशन गई
0: है। अच्छा, ट्यूशन गए हैं। ओके, तो एंजल को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और उनकी छोटी सिस्टर को भी
1: बहुत।
0: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा लगता है जब छोटी छोटी बीबी इतने प्यार से बातें करते हैं।
1: जी टाइम लगा दिया, वो सो गई।
0: ओ हो, कोई बात नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे। जी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, बाय। तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं, स्वाति जी ने कहा है कि आप अपनी पसंद से एक ट्रैक सुनवा दीजिए का नवरात्रि स्पेशल। तो मैं सुनवाती हूँ आपको एक ब्यूटीफुल ट्रैक, मेरी माँ की बराबर कोई नहीं, सुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में, एंड साथ में पायल जी भी दे रही हैं साथ। तो आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। एंड सुनते हैं फिर ये प्यारा सा गीत, लौट कर आती हूँ मैं, आप कहीं मत जाइएगा, दिल से मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कोई कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा।

0: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा ट्रैक, मेरी माँ की बराबर कोई नहीं, जुबिन नौटियाल जी साथ में पायल दीप जी की खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात कर लेते हैं अपने अगली कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश। वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अलीशा।
0: अलीशा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ।
0: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, बताइएगा अलीशा जी कैसे हाल चाल है आपकी?
1: आप
0: हाँ जी, हम भी बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा। चलिए, ऊपर वाले सभी को हमेशा सलामत रखें, खुश रखें। और बताइए आप क्या सुनेंगे आज अलीशा? हाँ ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं? अच्छा, खुद के लिए भी सुनना चाहती हूँ, ये तो आपने कहा नहीं। ओके हाँ, अब ठीक है। और बताइए कैसे लगते हैं फिर मुरादाबाद के शोज आपको?
1: मुझे शो बहुत ज्यादा पसंद है।
0: ओके, अरे वाह, थैंक यू अलीशा, थैंक यू सो मच। तो सुनवाते हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आपको परमिशन है। थैंक यू।
1: खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी कहाँ हम तो गम चाहते हैं, खुशी उसे दे दो जिसे हम चाहते।
0: अरे वाह, क्या बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भी खुशियाँ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा, थैंक यू डियर, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखो। हाँ जी
1: मैम, मैं अपनी सिस्टर का नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना, अलीशा आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और लौट कर हम वापस आते हैं। आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए अभी वक्त हुआ है 4:52, 4:52 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में टाइमिंग हो गई है और हमारे साथ हमारी नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई है, तो उनसे बिना किसी देरी के बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश,
1: हवाओं का जादू है, खुशियों की बहार तिरंगों के जरिए आ रही है मैम, आपकी भी किसी आवाज। हेलो फरमाइश, गुड इवनिंग।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय माता दी, कैसे हैं आप?
1: जय माता दी, मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक है, अपना नाम बताइएगा।
1: अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: अनु पांडे जी गोंडा से हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, बताइएगा कैसा लग रहा है? नवरात्रि चल रहे हैं और आपने पूरे उपवास रखे हैं और आज इतनी मेहनत लगी है कॉल लगाने में, तो फाइनली सफलता मिल गई है, कैसे लग रहा है आपको?
1: मैम आज मैं बहुत अच्छा लग रहा, सबसे पहले तो नवरात्रि की आपको जितने लोग सुन रहे सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी सबका दिन मंगलमय करे, सब खुश रहे, मस्त रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। और मैम आज ना मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी कॉल लगाने के लिए।
0: हाँ आज माता रानी जी ने थोड़ी सी ज्यादा परीक्षाएं ले ली है अनु की। हाँ
1: लेकिन परेशानी हमको लगता है कुछ मुझको सिखा भी रही थी, जैसे हमको अपना मतलब कुछ भी काम करें तो धैर्य बना के रखना चाहिए,
0: बिल्कुल धीरे बहुत जरूरी है,
1: कभी निराश नहीं होना चाहिए, कोशिश करते रहो तो सफलता जरूर मिलेगी,
0: सफलता जरूर मिलती है और हमें हार नहीं माननी चाहिए, राइट?
1: हार नहीं माननी चाहिए जल्दी से जी मैम,
0: बिल्कुल। तो अनु पांडे जी आज आपने हमें कॉल किया है, बताइएगा क्या सुनना चाहेंगी आप?
1: आज मैं नए वाला सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आपकी आंखों में कुछ मिलते हुए से खाओगे।
0: ओहो क्या बात है जी, वैसे ख्वाब तो आप भी देख रही थी ना कि काश मेरा भी कॉल लग जाए, और देखिए वो आपका जो ड्रीम है पूरा भी हो गया है उसके लिए, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है, हम आपको दिल से सलाम करते हैं एंड थैंक यू सो मच डियर, आपने हमें कॉल किया, वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि, ख्याल रखो अपना, बाय, जय माता दी। तो चलिए अनु जी ने तो रखे हैं पूरे नवरात्रि के पूरे फास्ट, और तभी मैम ने प्यारे सी हमारे लिसनर ने कंटिन्यू मेहनत की एंड देखिए फाइनली उनका कॉल लग गया है। कुछ हमारे श्रोता होते हैं जो बोलते हैं कि एक बार ही में कॉल लगाते हैं, मैम कॉल इतना बिजी आता है फिर हम ट्राई नहीं करते हैं, तो एक बार में कोशिश करने में देखिए सफलता मिलती है, वो बहुत लकी होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। और अभी फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मिलूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बिंदास रहिए, खुशियाँ बांटती रहिए और माता रानी का नाम लेते रहिए, क्योंकि जब माता रानी आई है सब कुछ जीवन में अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचिए। बाय बाय, टेक केयर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। शाम के 5 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई स्थित नौसैनिक शिपयार्ड में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस मंगरोल को अपने बेड़े में शामिल किया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत के नौसेना में शामिल होने से तटीय और उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे निपटने में नौसेना को मजबूती मिलेगी। नौसेना के पश्चिमी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन की अध्यक्षता में कमिश्निंग समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है।
7: आज आर्मी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक पार्टनरशिप एमओयू साइनिंग भी नेशनल सिक्योरिटी को इन्हांस करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के युद्ध केवल फ्रंट लाइन पर नहीं जीते जाते, युद्ध के पीछे सप्लाई चेन की मजबूती, स्टोरेज की क्षमता, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमली रिप्लेसमेंट की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 27 पदक जीतने वाले तीनों सेनाओं के खिलाड़ियों को आज सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। उनके प्रदर्शन से भारत को कुल 85 पदक जीतने और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। इस अवसर पर श्री सिंह ने खिलाड़ियों के अनुशासन, कड़ी मेहनत और टीम भावना की सराहना की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानवाधिकारों की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
8: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज़ बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
6: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन तपस्या, त्याग और संकल्प की प्रतीक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साई रमन।

हाय हाय, क्या बात है जी। बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और ये न्यू पंजाबी, यानी कि देखिए पंजाबी गाने जो होते हैं ना भैया, हर किसी को बहुत ही पसंद और बेहद पसंद होते हैं। और आपके साथ आपकी अपनी आरजू रीना कनेक्ट हो गई है। समय की बात करूँ तो 5:08 हो चुके हैं। और आपने क्या करना है भैया, 2 घंटे तक मेरे साथ कनेक्ट रहना है, क्योंकि अगले 2 घंटे तक हम आप सभी के साथ रहने वाले हैं। शाम 7:30 तक यहाँ पर करने वाले ढेर सारी बातें, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, प्लस आज का स्पेशल डे क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी को जय माता दी। और आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी का दिन है आज। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और माता रानी की जो कृपया है आप सभी के ऊपर हमेशा बरसती रहे। और उनकी देखिए, उनके आशीर्वाद के बिना ना कुछ भी संभव नहीं है। तो माता रानी शारदीय नवरात्रि में हर घर में पधार चुकी हैं। तो आपने बस क्या करना है, उनकी भैया अच्छे से खातिरदारी करनी है, साफ स्वस्थ सुथरा घर को रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अक्सर देवी देवता को पूजते हैं, लेकिन जो घर की लक्ष्मी होती हैं उनको ही कभी गुस्से में कभी बोलते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम लड़की हो, तुम नहीं कर पाओगी कुछ भी। तो आपको ऐसा नहीं बोलना है। सोचिए, जिस एक नारी को आप अपमान कर रहे हो, दूसरी नारी को आप पूज रहे हैं, तो ऐसे घर में माता रानी की भले ही आप पूजा कर लीजिए, वो नहीं आती। इसीलिए हमें आप अपने घर में नारी का सम्मान करिए, और जब नारी का सम्मान करते हैं तो माता रानी आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूरी करती हैं, और बिन कहे आपको हर चीज़ मिल जाता है। तो पहले अपने घर की शांति माहौल बनाइए, उसके बाद देखिए कि आपके ज़िंदगी में एक अलग ही रौनक, एक अलग ही बदलाव देखेंगे, एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो हर चीज़ की टाइम पीरियड होता है, बस अपने घर की नारियों का सम्मान करना है। और सिर्फ ये 9 दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन नारी का दिन होता है, क्योंकि नारी के बिना कुछ हर चीज़ असंभव है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए और आरजू रीना के साथ कनेक्ट रहिए। फिलहाल आज बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। इसके बाद लौट कर आती हूँ मैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और माता रानी के हम गाना सुनवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, 6 बजे के समथिंग आपको हम सुनवाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है ना, हर घर में फिर पूजा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब देखा जाए तो सर्दी भी बहुत जल्दी, यानी कि शाम को 6 बजे आपको अंधेरा अंधेरा फील होने लगेगा, क्योंकि गर्मी तो अब धीरे धीरे भैया वो बोल रही कि बाबा टाटा अब तो ठंड वाला मौसम आ चुका है। कल बिन बुलाए बादल बिन बुलाए बारिश, इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश, भैया कुछ कह नहीं सकते हैं। और कल के इस बारिश में सुबह हर किसी को ठंड वाली फीलिंग आ रही थी। तो अब क्योंकि सर्दी नवरात्रि, नाम भी सर्दी नवरात्रि, क्योंकि माता रानी ठंड के मौसम में आती हैं। तो चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं आप सभी के साथ, करेंगे ढेर सारी बातें। स्टे ट्यून्ड एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: Level, but

जी गुड वाली इवनिंग है, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, सर्द नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और समय की बात की जाए तो 5:19 हो चुके हैं और आज की तारीख 12 अक्टूबर। अपने आप में बेहद और बहुत इम्पोर्टेंट और बेहद खास दिन है, क्योंकि नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ इस रूप के पीछे का पौराणिक कथा क्या है, उनकी पूजा क्यों की जाती है दूसरे दिन? माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या किया था। उन्होंने हर कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखा और अपनी साधना जारी रखी। माँ ब्रह्मचारिणी एक हाथ में रुद्राक्ष की माला का जाप करती हैं, दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनकी माला तपस्या और साधना का प्रतीक है, जबकि कमंडल त्याग और सादगी का संदेश देता है। इसीलिए नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करके भाव उनके धैर्य, आत्मविश्वास और जीवन की मुश्किलों को लड़ने में हमें शक्ति मिलती है। तो इस नवरात्रि माँ से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे और हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी। और पता है, जब माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या करती थी ना, तो बहुत ऋषियों ने उनको समझाया भी कि इस तपस्या को तुम छोड़ दो, क्या ही होएगा, शिव तो वैरागी है, उनके अनेक अनेक रूप दिखाए। लेकिन माँ ने तो अपने मन में ठान रखा था कि मुझे भगवान शिव से ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनका तुम कैसे ही पराक्रम रूप दिखा लो। और इसीलिए माँ के इस घोर तपस्या, इतनी तपस्या करी थी भैया माँ ने कि कुछ कह नहीं सकते, इस तपस्या में उन्होंने धैर्य नहीं खोया था। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है सादगी के साथ। इस दिन कहा जाता है कि अगर आप सफ़ेद और पीला वस्त्र पहनते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है कि हर दिन हर नवरात्रि में एक अलग अलग वस्त्र धारण किए जाते हैं, अलग अलग कलर के वस्त्र धारण किए जाते हैं, जो कि शुभ का प्रतीक होता है। डेज के हिसाब से अगर आप कपड़े पहनते हैं तो आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आने लग जाएंगे। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये रूल आप फॉलो करके देखिए, पैतरा फॉलो करके देखिए कि हमें संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे कौन से वस्त्र पहने, किस कलर के वस्त्र पहने हैं, और आप खुद देखेंगे अपने अंदर एक अलग ही बदलाव, एक अलग ही अनुभव की भाव जो है ना, उसको आप अपने अंदर फील करेंगे। तो आप हिसाब से अगर कपड़े पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कपड़े की तो भैया हर अलग अलग चॉइस होती है, जो भी मन पहन सकते हैं। तो इसके बाद हम करने वाले हैं ट्रैफिक के बारे में बात। और आपने रेणुका पवार का ये गाना भैया बहुत ही शानदार वाला, नाचे बिंदरी डीजे पर, और इसके ये गाने के ऊपर सच बताऊँ तो डांडिया नाइट में ना ये गाना ज़रूर प्ले होने वाला है। फिलहाल हम एक माता रानी का गाना सुनेंगे, बहुत शानदार है, बेहद पसंद आएगा आपको भी। और फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात की जाए तो 5:30 हो चुके हैं। आई नो कि आप अभी ट्रैफिक में होंगे और थोड़ा सा आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे, पीएससी की तरफ से आएंगे तो आपको मिलता ही मिलता है। उधर आ तो आप कभी भी चले जाओ, इस टाइम तो आपको ऑलमोस्ट भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। दिल्ली रोड की तरफ से आप आ रहे हैं तो वहाँ मिलने वाली है बुद्ध बाजार, और मार्केट के साइड से आएंगे तो भैया फिर तो भूल ही जाइए कि आपको ट्रैफिक ना मिलने वाली, मिलेगी ज़रूर। फिलहाल आप जहाँ भी हैं, जिस रूट पर भी है, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि वहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम है तो और भी जो उस रूट से जाने वाले हैं वो थोड़ा सा संभल के चले, टाइम निकाल के चले। क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि बहुतों का आज पूरा फास्ट होगा, बहुतों ने तो एक पहला और लास्ट का रखते हैं और बहुत पूरे रखते हैं। जो पूरे रखते हैं ना उनको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की भूख लग जाती है और बस ये सोचते हैं कि यार घर जाके ना कुछ जरूर खाना है, मैंने तो अब कुछ भी हो जाए पर घर जाके खाना ज़रूर है। तो अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे ना, तो जय माता दी नाम लीजिए और सारा भूख छू मंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने पेशेंस के साथ गाड़ी चलाना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, हेलमेट और सीट बेल्ट ज़रूर लगाना है, जेब्रा क्रॉसिंग का भी आपने बहुत ध्यान रखना है, साथ ही साथ रेड लाइन का भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी रेड बत्ती जले तो उसका अपने ध्यान ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको बोला कि अगर आप कहीं भी ट्रैफिक में हैं तो आप मैसेज करके ज़रूर बताइए। और आज मेरा ना अभी से ये क्वेश्चन पूछने का मन है। देखिए, नवरात्रि का फास्ट तो सब रखते ही ऑलमोस्ट, और बहुत फर्स्ट और लास्ट का रखते हैं, बाकी बहुत से जगह ऐसे भी रखा जाता है कि वो लास्ट के सिर्फ दो रखते हैं। तो आप सभी से हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में हर किसी को पता ही होता है, माँ

दुर्गा के नौ रूपों को मिलाकर आखिरकार क्या कहा जाता है? ये आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपना वॉइस मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, अपनी प्यारी मधुर आवाज हमारे साथ पहुंचा सकते हैं। और हमारा नंबर है, आपको कहाँ पहुंचाना है मैं आपको बताती हूँ, नंबर है 9837896896। देखिए हमारा नंबर याद करना बहुत सिंपल है, अपने स्टार्टिंग के चार डिजिट याद रखना होता है, 98 और 37। बाकी हमारे फ्रीक्वेंसी है जो हम हर बार बोलते हैं 896896, ये हमारा नंबर बहुत आसान वाला है। और आज मैंने आप सभी से क्वेश्चन पूछा है कि माँ दुर्गा के नौ रूपों को मिलाकर क्या कहा जाता है। देखते भैया किनको राइट आंसर पता है और कौन हमारे पास मैसेज करते हैं। चलिए मैसेज करिए, फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच।

0: हाय हाय क्या बात है। जब किसी की एंट्री होती है तो दिल में घंटियां ही बजने लग जाती, लेकिन अक्सर वो तब होता है जब मेहमान आपके घर आते हैं तो अक्सर दिल की घंटियां बजती हैं, क्योंकि बिना बताए जब आ जाते हैं ना तो दिमाग में एक ही बात चलता है, ओ हो घर की तो अभी सफाई नहीं हुई है यार, घर की हालत ही खराब है, अब हमारे मेहमान कहेंगे तो कहेंगे क्या। तो उस टाइम असली वाली दिल की घंटी बजती है। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में, और समय की बात करूं तो 5:44 हो चुके हैं और आप सभी को गुड वाली इवनिंग है, जय माता दी, क्योंकि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। सादगी से भरा हुआ इनका स्वरूप है। और आज की अगर मैं बात करूँ, आज का डे बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी आपने एक चीज़ नोटिस तो ज़रूर करा होगा कि घुटनों के दर्द हुआ या सुबह सुबह उठते ही हाथ पैरों में जोड़ों में अकड़न जैसी महसूस होती है आपको, अगर ये बात है तो हाँ बोली। तो इससे हमेशा ये मत सोचिए कि एज बढ़ रहा है, बढ़ती उम्र में इसका असर हो रहा है आपको, तो ये समझकर आप नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस। इस दिन को मनाने का मकसद यही है, लोगों को गठिया यानी इसके बारे में जागरूकता फैलाना। गठिया ऑर्थोराइट्स के बारे में जागरूकता करना, ताकि बीमारी के लक्षणों को पहचानने में आपको समय का इलाज ये ना देखे कि भैया हाँ ये बीमारी हो रही है तो बुढ़ापे में यानी कि बढ़ती एज की वजह से हो रही है, बल्कि इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कोशिश करना है कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप इसके बारे में जाँच करवाएं ताकि आप ठीक रहें। एक जरूरी बात, गठिया सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं होता बल्कि बच्चों और युवाओं को भी हो सकता है। जोड़ों में लगातार दर्द, सूजन या अकड़ हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। और सच बताऊं तो 2026 की थीम भी बहुत प्यारी है, अचीव योर ड्रीम्स, यानी कि अपने सपनों को साकार करें। संदेश यही है कि गठिया होने के बावजूद सही इलाज और सहयोग से लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि देखिए दर्द को अनदेखा मत कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खुश रहिए। और जब तक आपकी सेहत सही नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खुद भी हैप्पी नहीं रह पाएंगे और ऊपर से आप परेशान होंगे, साथ ही साथ आपको देखकर घर वाले परेशान होंगे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। मैं तो कहती हूँ कोई भी बीमारी हो, चाहे वो गठिया हो कोई भी हो, आपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करनी चाहिए। और आज के टाइम में क्या है ना, बुज़ुर्गों से ज़्यादा बच्चे थक जाते हैं, हमारे पैर में दर्द हो रहा है, हम ये नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं। एक तो हमारी डाइट, एक खाना, ये सब चीज़ों ने बिल्कुल रूटीन को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहली बात, अपने खाने को ठीक रखें, सादगी भरा खाना खाएं। अगर आप सादगी भरा खाना खाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। क्यों, पहले के इंसान 120 साल जी जाते थे लेकिन अब नहीं जी पाते हैं। क्यों, एक तो टेंशन रहती है, ऊपर से खाना पीना सही नहीं है और ऊपर से बीमारियाँ बढ़ जाती है, एक्टिविटी नहीं हो पाती है। तो एक्टिविटी करिए और अपने आप को ठीक रखिए, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो आप अपने फैमिली को भी ठीक रखेंगे और हमेशा हैप्पी रह पाएंगे। और कहीं घूमने जाना होगा ना तो आप आसानी से घूमने भी जा सकते हैं, अदरवाइज भैया घुटनों के दर्द को लेकर आप जा नहीं सकते हैं। फिर एक ही बात कहेंगे, यार जवानी में घूम लेते, बुढ़ापे में तो क्या ही हो गया। फिलहाल आज मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि देखिए हर नवरात्रि के बारे में हर किसी को पता है और चाहे फास्ट कोई रखे ना रखे, इसका आंसर हर किसी के पास होगा। सो आज मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, माँ दुर्गा के 9 रूपों को मिलाकर क्या कहा जाता है। क्वेश्चन में से ही आपको आंसर मिल रहा है, बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा, माँ दुर्गा के 9 रूपों को मिलाकर क्या कहा जाता है। सोचिए और मैसेज करिए। फिलहाल मेरे पास मैसेज भी आ गए हैं, उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

जी बिल्कुल, जरा पैर जरूर चलाना चाहिए आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि पैर चलाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं कि नहीं यार, सुबह सुबह घूमने तो नहीं जा पाएंगे, शाम को भी नहीं जा पाएंगे, ऊपर से कहीं जाना होता है दो कदम तो हम उसके लिए उठाते हैं बाइक, स्कूटी और गाड़ी, और इसी के चक्कर में हमारे जो पहिए हैं पैर के वो जाम हो चुके हैं, जो कि दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग गया है, क्योंकि हम अपने पैरों को अब राजकुमारी राजकुमार बना कर रखते हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट दीजिए, पैदल चलने की कोशिश करिए ताकि आप फिट रहें। और आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। समय की बात करूं तो 5:54 हो चुके हैं, यानी कि 5:54। और देखिए, मूवी देखने का इंतजार हर किसी को रहता है भैया। फिलहाल तो अगर मैं बात करूं हनुमान अंस मूवी की, तो भैया ब्लॉकबस्टर पर इतना धमाल मचा रही है ना कि हर किसी को इंतजार है पहला पार्ट देखने के बाद कि दूसरा पार्ट कब रिलीज होने वाला है। भैया पहले पहला पार्ट तो थिएटर से हटे तभी तो सेकंड पार्ट आएगा ना क्योंकि अभी पहला ही पार्ट बड़ा ही धमाल मचा रहा है। अगर अभी तक आपने देखी हनुमान अंस मूवी नहीं देखी है ना, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं देखी आपने, ये मूवी ज़रूर देख कर आइए, अपनी फैमिली वालों के साथ देख कर आइए, क्योंकि बहुत धार्मिक बहुत अच्छी मूवी है, तो इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। और फिलहाल अगर मैं सेकंड बात करूँ जो मूवी रिलीज़ होने वाली है सारा अली खान और आयुष्मान खुराना की, उड़ता तीर। अब ये उड़ता तीर जब आप देखेंगे तब आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये रिलीज़ अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो इसकी टाइमिंग थी यानी कि 9 अक्टूबर को ये रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अब इसकी डेट है ना पोस्टपोन्ड कर दिया गया, यानी कि आगे बढ़ा दिया गया है। 23 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज़ होने वाली है, 23 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप ये मूवी ज़रूर देखिए और अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जाकर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। सो ज़रूर देखिए और मिलेंगे एक और म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, करेंगे ढेर सारी बातें। और देखिए, कोई भी मूवी देखने जाते हैं ना तो उसका ट्रेलर ज़रूर देख कर आ जाइए, तभी आपको मज़ा आएगा। और आज का कड़क सवाल जो हमारे पास आंसर भी आ चुका है, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल था इसका आंसर पूछा था मैंने आज आप सभी से, माँ दुर्गा के 9 रूपों को मिलाकर क्या कहा जाता है। चलिए भाई साहब देखते हैं क्या मैसेज आते हैं आप सभी के, क्या आपने राइट आंसर किया है या फिर अभी भी है थोड़ा कंफ्यूज।

0: स्टोरी।
1: हाँ जी, अगले मिसेस की बात करूँ तो इनका कहना है कि भैया इन्होंने अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि मेरे पास छोटा फ़ोन है, उसी से सुनने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच जी कि आप हमारा रेडियो सुनते हैं। और इनका नंबर है 82, अगर नंबर फोर लास्ट के फोर डिजिट बताऊँगी, देखिए पूरा नहीं बताना चाहिए, 8250। और ये मैसेज आता है हमारे पास जय माता दी। जय माता दी रीना मैम, माता के नौ रूपों को मिलाकर दुर्गा माँ के रूप, अच्छा माँ दुर्गा का रूप बनता है। डोली गागन मुरादाबाद से कनेक्ट होती है। डोली जी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो ये पिंकी जी हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, और इनका कहने की माँ दुर्गा ही कहा जाता है। लेकिन सोचिए जी, मैंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल रहा था, नौ रूपों को मिलाकर क्या कहा जाता है माँ दुर्गा का, ये पूछा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाएगा। चलिए फिलहाल देखते हैं राइट आंसर की निकाय हमारे पास। रीना जी, माता के नौ रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है। मैं आकाश चौधरी मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही राइट आंसर दिया है सर आपने, आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है। और इन्होंने राइट आंसर दिया है कि माँ के नौ रूपों को मिलाकर नव दुर्गा कहा जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा तो हम कहते ही है, क्योंकि जो माँ आती है घर पे तो नौ दिन के लिए आती है, और नौ रूपों को मिलाकर बनता है नव दुर्गा पूजा। तो आपने राइट आंसर दिया है, थैंक यू सो मच आकाश चौधरी जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, एक बहुत ही शानदार वाला हरियाणवी ट्रैक सुन लेते हैं, है ना, क्योंकि हरियाणवी गाने आज मुझे लगता है कि थोड़ा प्ले कर देना चाहिए, क्योंकि मजा आ जाएगा।

0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में आज दिल्ली संवाद 2026 को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प उन्हें केवल भारत की विकास यात्रा का उत्तराधिकारी ही नहीं बल्कि इसका निर्माता भी बनाते हैं। युवा देश को अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की 16वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य साझा व्यापार और आर्थिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाना था। श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। नई दिल्ली में आज भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा देश में ही तैयार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वायदे किए हैं।
1: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सवेरे 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंधित और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष अमरीका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
3: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
5: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
4: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
5: अरे नहीं,
6: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
5: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
4: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्टेड और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि समय की बात करूं तो 6:10 हो चुके हैं और आज की तारीख 12 अक्टूबर। देखिए, अब यूपी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और नियमों में चेंज भी कर रही है। हर महीने आप देखेंगे कुछ ना कुछ अलग ही डिफरेंस, अलग तरीके से चेंज किया जाता है। कुछ चीज़ों की महंगाई बढ़ा दी जाती है तो कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती है और कुछ चीज़ें इतनी ताबड़तोड़ वाली होती है कि वो समझ में नहीं आती है भैया कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे देश में। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर आप अब मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप मिठाई खरीदने जाते थे तो उसको डेट, एक्सपायरी डेट नहीं मिलता था, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मेडिसिन जब हम लेने जाते हैं या फिर फेस वॉश लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि भैया इस डेट को बना है और ये इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मिठाई के ऊपर नहीं लिखा होता है। अक्सर हम दुकान पर भी जाते हैं तो कुछ मिठाइयाँ रखी होती है जिसके बारे में हमें नाम भी नहीं पता होता है कि ये मिठाई है तो है कौन सी। लेकिन अब सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि अगर आप कोई भी मिठाई बेचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि पहले काउंटर पर अगर रखते हैं तो उसका नाम भी मेंशन करके रखेंगे, देन आपने दूसरा ये बताना होगा कि किस डेट को बना है और किस डेट को ये एक्सपायर हो जाएगा, मतलब इसको नहीं खा सकते उसके बाद। तो ये चीज़ अब आपको मेंशन जरूर मिलेगी, तो तब भी आप मिठाई लेने जाए तो ये चेकआउट जरूर करें, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और फेस्टिव सीजन में भैया इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो फेस्टिवल के बाद ही लोग थोड़ा बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो इस चीजों का आपने पूरा ध्यान रखना है और हर चीज की सही जानकारी के साथ, अब क्योंकि जब भी फैसला लेते हैं ना तो एक सही जानकारी के साथ लेंगे तो बहुत अच्छा डिसीजन होता है। चलिए, इसी के साथ करेंगे और भी ढेर सारी बातें और आप सभी के लिए कड़क सवाल भी हम लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद मैं कनेक्ट होती हूँ आप सभी के साथ और करेंगे क्या ढेर सारी बातें।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
4: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
3: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01

0: आय हाय, रेणुका पवार के भैया गाने ना वाकई में बड़ा ही बवाल वाले बहुत ही मस्त होते हैं। और आप आर्जुरीना के साथ कनेक्टेड जय माता दी। समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं वाटर आईडी के बारे में। कहते हैं ना कि आप 18 के प्लस हो जाते हो तो आपको वोटर आईडी ज़रूर बनवाना चाहिए। तो अभी तक जिनका भी वोटर आईडी नहीं बना है तो आप बनवा लीजिए, या फिर वोटर आईडी में आपका नाम गलत है या फिर कुछ भी अगर है तो उसको आप ठीक करवाइए। और जो बच्चे पहली बार बनवाना चाहते हैं वो भी बनवा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि वोटर आईडी बनवाना बहुत ज़रूरी होता है एक 18+ होने के बाद, क्योंकि तभी आप देश के नागरिक माने जाते हो, क्योंकि आपकी पहचान भी तो हो जाती है ना वोटर आईडी से, प्लस आधार कार्ड तो है ही। क्योंकि अब हमें देखिए वोट देना भी तो जो अपना अधिकार है उसको क्यों चुके उससे, और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसको वोट दे किसको वोट नहीं दे, क्योंकि इस पर कोई प्रेशर भी नहीं होता है। तो इसीलिए वोटर आईडी जिनका अभी नहीं बना है वो अपना वोटर आईडी ज़रूर बनाइए, और अपने गांव का देश का मुखिया सरपंच आप खुद चुन सकते हैं, और प्रधानमंत्री मतलब जो भी आप जिसको वोट देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि इस पर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला जाता है। सो अगर अभी तक आपका ये जो चीज़ें हैं इसमें गड़बड़ी है तो उसको ज़रूर चेकआउट करें और ठीक करवाएं, ताकि आगे के लिए आपको कोई भी परेशानी ना होए। चलिए फिलहाल, क्योंकि अब देखेंगे तो बहुत सी जगह कोई आप आईडी भी बना रहे हैं तो वहाँ भी वोटर आईडी मांग लिया जाता है, आधार कार्ड मांग लिया जाता है, लाइसेंस मांग लिया जाता है। तो इन चीज़ों का मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके उस पे नाम गड़बड़ हो कुछ भी हो, या फादर के नाम में स्पेलिंग हो या फादर का नाम ही मेंशन ना हो, तो उसको मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक गाना सुनेंगे, उसके बाद मैं लौटूंगी आप सभी के साथ और करेंगे
1: Everybody now. Let me see you move.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। रंगीलो मारो ढोलना। हाँ जी, रंगीलो मारो ढोलना ये शुरू होने वाला है, यानी कि कल है 13 तारीख। रंगे रिवाज आप सभी के लिए डांडिया नाइट लेकर आ गए भैया। कल शाम 6 बजे से शुरू होएगा और कल जो भजन वाला क्लबिंग रहने वाला है, भजन कीर्तन के साथ आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है रंगे रिवाज। तो आप ज़रूर अटेंड करिए। अगर अभी तक आपने पासिस नहीं लिए तो आज आपके पास समय है, पासिस भैया ले लीजिए। अदरवाइज़ अब मिस करते रह जाएंगे कि धत तेरी कि आखिरकार हम पहले ही बुक कर लेते हैं।

और जिनका जिनका भी, अब हम देखिए सच बताऊं तो ऐसा होता है ना कि एक समय के बाद, एक एज के बाद आप खुद नहीं कमा पाते हो, खुद कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि बॉडी आपके साथ नहीं देती है। यानी कि बात की जाए 60+ 60 एज, ये अगर आप अपना डाइट सही रखते हैं तो फिर तो आप जवान ही हैं। अदरवाइज अगर डाइट नहीं साफ रखते हैं, मतलब ठीक नहीं रखते, तो जवानी में भी बुढ़ापा आ जाता है। तो यानी कि जो भी माताएं और बुजुर्ग हो चुके हैं, यानी कि 60+ में हैं, चाहे मैन हो विमेन हो, आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। और खुशखबरी वो क्या है, अगर आप जानना चाहते तो आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए भैया, क्योंकि कनेक्ट रहेंगे ना तभी आपको मिलेगा यहाँ पर बहुत सी अपडेट। अब खबर ये है कि आपको जितना भी पेंशन मिलता है, अब उस पेंशन की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि 500 रुपये और बढ़ा दिया गया है पेंशन में। तो आपको पता होगा कि आपको कितनी पेंशन मिलती है। और इसी के साथ आपको ये वाली खुशखबरी बहुत ही आनंद आने वाली है सुनकर कि 500 रुपये और बढ़ा दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो भाई जो माताएं अब खुद नहीं कमा पाती है, या जो बुजुर्ग है और जो खुद नहीं कमा पाते हैं, उनको एक पेंशन ही है जो इसके सहारा होता है। और जो पेंशन आती है ना भैया, तो सच में घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो दादी नानी बाबा से 10-20 रुपये ज़रूर लेते हैं। क्योंकि जब मेरी दादी की पेंशन आती थी ना, तो मैं उनसे जब भी बोलती थी कि मुझे ना, क्योंकि उस टाइम कम पेंशन मिलती थी उनको, तो वो मुझे 5 रुपये जरूर दिया करती थी। और उस टाइम के लिए 5 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो इतना उस टाइम 5 रुपये का नमकीन आता था ना, अब 10 रुपये का भी उतना नमकीन नहीं आता है। सोच लीजिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और इसी के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे। आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए। इसके साथ मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क क्वेश्चन। कड़क क्वेश्चन के साथ कड़क आंसर तो आप ही दे पाएंगे भैया कि आखिरकार इसका क्या आंसर होएगा। फिलहाल मौसम बदल रहा है भैया, अपना ध्यान रखिए। अगर वह ध्यान नहीं रखेंगे तो जुखाम खांसी वाला हालत हो सकती है, जैसे इस टाइम मेरी हालत है। और हमारे पास कुछ मैसेज भी आए हैं। हेलो जी, गुड इवनिंग। आर्जेरीना के साथ सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। विक्की सागर जी कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ। रविल्या जी कनेक्ट होती है हमारे साथ मुरादाबाद से, वेरी गुड इवनिंग जी। शर्मिला जी कनेक्ट होती हैं, वेरी गुड इवनिंग पहुंचाती है। और बहुत ही मज़ा आ रहा है आज के गाने, हरियाणवी प्लस है ना, तो बहुत मज़ा आ रहा है सच में। मैं आज रेडियो बंद ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूजा मैं 7 बजे ही करूँगी। जब तक आपका शो चलता है तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी। बस अभी फास्ट के लिए मैं बना रही हूँ प्रसाद, तो प्रसाद बनने के बाद 7 बजे पूजा करूँगी। इतने में आपका शो भी सुन रही हूँ। थैंक यू सो मच जी। चलिए फिलहाल एक गरबा डांस, गरबा गाना तो बनता ही है।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आर्चरीना के साथ आप कनेक्ट है जय माता दी। और समय की बात करूँ तो 6:37 हो चुका है और इसी बीच मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क क्वेश्चन। अब कड़क क्वेश्चन का कड़क आंसर क्या होने वाला है वो तो आप ही दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ, ढूंढ के लेकर आई हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आज के दौर में ना ये प्रॉब्लम फेस हर कोई करता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज के दौर में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है आपके लाइफ में? ऑप्शन आपको मिलेगा, डोंट वरी, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस आपने बस हमें जो मैं आंसर रिवील करूंगी उसमें से ही आपको बताना है कि आपको सबसे ज्यादा किसकी प्रॉब्लम है। नौकरी और सैलरी, महंगाई और खर्च, परिवार को समय ना दे पाना, भविष्य की चिंता, ये हमारे चार ऑप्शन हैं। और आपको चारों ऑप्शन में से क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की ज़्यादा आपको टेंशन रहती है, आपने हमें महसूस करके बताना है, और क्यों रहती है ये भी आपको बताना है। तो आपको कहाँ बताना भैया, व्हाट्सएप नंबर है, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज आप हमें भेज सकते हैं, नंबर है 9837896896। कि आज के दौर में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है? नौकरी और ऑप्शन है, यानी कि ए ऑप्शन है नौकरी और सैलरी, बी ऑप्शन है महंगाई और खर्च, सी ऑप्शन है परिवार को समय ना दे पाना, डी ऑप्शन है भविष्य की चिंता। जल्दी जल्दी मैसेज करिए भैया, अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं आपको, लेकिन उसके लिए गाने बहुत, ये गाना हम सुनेंगे किसकी आवाज़ में बताइए ज़रा। अरे ये जिनकी भी आवाज़ है ना, बड़ा ही प्यारा आवाज़ है।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोताओं। समय की बात करूँ तो 6:44 हो चुके हैं और कहते हैं ना, छोटी शुरुआत ही आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन आखिरकार हम छोटी भी शुरुआत करने से पहले ना बहुत सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी आप चीज़ शुरू कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, बस दिल जिगर को थाम कर जो भी आप काम करें शुरू कर दो। भले ही वो कम रुपए से शुरू करो, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। और बहुत से ये भी देखते हैं, यार ये मैं काम करूँगा तो कोई क्या कहेगा, वो मैं काम करूँगा तो कोई क्या कहेगा, यानी कि गोलगप्पे बेचूँगा तो कोई क्या कहेगा, मोमोज बेचूँगा तो कोई क्या कहेगा, छोले भटूरे बेचूँगा तो कोई क्या कहेगा। देखिए, जो कोई कुछ कहता है वो आपको खाने के लिए नहीं देगा। आप हेल्प मांगेंगे तो पहले पीछे पाँव हटा लेंगे अपना। इसीलिए दुनिया में ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, छुपे, क्योंकि लास्ट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए ना फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। आप फर्स्ट पर नहीं चढ़ेंगे और सोचेंगे कि हम आखिरी तक पहुंच जाए तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये काम आपका सक्सेस हो पाए। क्योंकि सपने बड़े देखिए, ज़रूर देखने ज़रूर चाहिए, लेकिन शुरुआत जब आपको लग रहा है कि बड़े लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो छोटे से शुरुआत करिए। और जब आप छोटे से शुरुआत करते हैं तो आप एक ना एक दिन बड़े मुकाम तक ज़रूर पहुंचते हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तीन दोस्त, तीनों ने मिलकर छोले भटूरे की शॉप खोली, छोटे से स्टॉल लगाया उन्होंने, ज़्यादा बड़ा नहीं, और 9 रुपये से शुरुआत की थी। सोचिए, 9 रुपये से शुरुआत करी और आज वो 100 रुपये करोड़ों के ब्रांड, यानी कि इतना महंगा अब उनका स्टॉल हो गया, इतना फेमस हो गया है कि वो अब उस मुकाम तक है जहां उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए लाइफ में मत देखिए, क्योंकि डाउन टू अर्थ हर किसी के लाइफ में आता है और हमें लगता है, मुझे लगता है कि डाउन टू अर्थ आपको रहना चाहिए। और कोई भी काम आप शुरुआत करेंगे, मुश्किलें बहुत आती है, लेकिन मुश्किलों का सामना भी तो इंसान ही करता है ना, कोई और तो आएगा नहीं करने के लिए। इसीलिए कोई भी शुरुआत करे, बस कर दीजिए, सोचिए मत। और आज का इसीलिए मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पुट अप किया है जो कि बहुत आसान है। आपको ऑप्शन भी मैंने बताया, उस ऑप्शन में से आपने एक चूज करना था। मेरा आज का क्वेश्चन है, आज के दौर में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है? सिर्फ ये आपने क्वेश्चन है हमारा और आंसर मैं रिवील करती हूँ आप सभी को। ऑप्शन ए है नौकरी और सैलरी, ऑप्शन बी है महंगाई और खर्चे, ऑप्शन सी है परिवार को समय ना दे पाना, ऑप्शन डी है भविष्य की चिंता। 4 आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपने चूज करना है कि आखिरकार क्या टेंशन है आपकी लाइफ में। और मैसेज करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर बहुत ही आसान है, 9837896896 पर आपने मैसेज करना है। और देखिए, रेडियो सिर्फ हमारा आप गाड़ी में नहीं सुन सकते हैं, बल्कि आप अपने घर में भी सुन सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे, पॉसिबल तो नहीं है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है, आपके फ़ोन आपके पास है, क्योंकि आज के टाइम में टच वाला फ़ोन तो बहुत ही कम चलाते हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, तो आप भी स्मार्ट बनिए ना। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपने सर्च करना है FM मुरादाबाद 89.6, रेड कलर का आपको लोगो दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके गाड़ी के, घर में सोते समय, खाना खाते समय, काम करते समय, खेत में काम करते समय, एनी आप ऑल इंडिया, विदेश आप जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, अदर कंट्री में जा रहे हैं, आप हमारा रेडियो कहीं भी एनी टाइम सुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड तो आपको करना पड़ेगा ना, अदरवाइज कैसे आप सुन पाएंगे। और आपसे अगर देखिए, रेडियो के लिए अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊँगी आरजेरीना के नाम से। और हमारा ऑफिशियल जो इंस्टा आईडी है FM मुरादाबाद 89.6, और फेसबुक पर भी इसी नाम से हैं, आप हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। और इसी के साथ एक कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया और इसके बाद आप सभी के आंसर हम रिवील करने आएंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, चलिए एक बार और रिवील करते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की है? ऑप्शन ए है नौकरी और सैलरी, ऑप्शन बी है महंगाई और खर्च, ऑप्शन सी है परिवार को समय ना देना, और ऑप्शन डी है भविष्य की चिंता कि भविष्य में क्या होएगा।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
4: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: जीना, हाय हाय क्या बात है। वाकई में ये गाना ना आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमें जिस इंसान से अटैचमेंट हो जाता है, हैबिट हो जाती है उसकी, उसके बिना जीना वाकई में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको किसी से लगाव अटैचमेंट हो रहा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आप उसके जाने के बाद भी आप रह पाए। चलिए, फिलहाल हमने आज आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि आप इस दौर में सबसे बड़ी टेंशन आपको किस चीज़ की है, जो कि मैंने आपको ऑप्शन में दिया था और आपने बस थोड़ा सा समझना था कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारा ऑप्शन ए था नौकरी और सैलरी, ऑप्शन बी था महंगाई और खर्च, ऑप्शन सी था परिवार के समय समय ना देना, और ऑप्शन डी था भविष्य की चिंता।
1: इस साल से ट्रस्टेड।
0: चलिए देखते हैं किन का आंसर हमारे पास आता है, क्या आंसर आता है।

0: हाँ जी, अगर मेरे पास ये मैसेज आता है विक्की सागर जी का और इनका कहना है कि ऑप्शन डी भविष्य की चिंता, तो मत कीजिए सर, आज की दिन चिंता करिए और आज को एंजॉय करिए, क्योंकि कल क्या होए कुछ नहीं पता, इसीलिए आज को जरूर सोचे कि अभी हमें इस लाइफ को, आज के दिन को कैसे एंजॉय करना है। सेकंड मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे पास, भाई साहब इन्होंने नाम नहीं बताया, ये तो गलत बात है। ओके, दानिश जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि ऑप्शन बी महंगाई और खर्चे, इसकी टेंशन हर किसी को है। एक गुलाम जिलानी जी कुंदर की पासा से कनेक्ट होते हैं लेकिन ये वॉइस मैसेज भेजते हैं, चलिए सुनते हैं क्या कहते हैं ये अपनी वॉइस मैसेज में।
1: रेडियो की दुनिया के दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुलाम जिलानी पासा कुंदर की से आपसे मुखातिब हूँ, आपसे मैं मुरादाबाद आरजी रीना के साथ। रीना जी, आपने जो ऑप्शन दिए हैं इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि अपना काम करना चाहिए, उस काम में मेहनत करनी चाहिए।
0: अपने काम पर फोकस देना चाहिए। चलिए अगले मैसेज की बात की जाए।
2: जाने जाना मेरी जाने मन, बॉडी तेरी लगे लाइक डायमंड।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, शैयर शारी कली जी, मेराज अंसारी इनके दोस्त हैं। गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। रीना जी कैसी हैं आप? वेरी गुड इवनिंग सर, मैं बहुत अच्छी हूं, आप बताइए कैसे हैं? आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले करती हैं और जैसे कि आपने जितने भी ऑप्शन दिया है ना, वह सारे ही आज के दौर में टेंशन है। ओके, किसी को किसी बात की टेंशन है, किसी को किस बात की टेंशन है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हो सकता है टेंशन महंगाई की। अरे बिल्कुल सही कहा आपने सर, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर इंसान की आमदनी ज्यादा है तो महंगाई की कोई टेंशन नहीं है, और आमदनी अगर कम है तो महंगाई की टेंशन उसे इंसान को परेशान करती है। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से इंसान आज के दौर में अगर आदमी कम है, आमदनी कम है तो काम चल सकता है, लेकिन महंगाई ज्यादा होगी तो उसके लिए परेशानी है। तो यही ऑप्शन है बी, महंगाई ज्यादा होना। ओके सर, चलिए, हर किसी की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम होती है और महंगाई तो देखिए हर किसी की है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो आपको महंगाई कुछ भी नहीं लगेगा, अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको महंगाई बहुत ज्यादा लगेगा। इसकी खासकर टेंशन हर घर में, क्योंकि अभी आप सामान लेने जाएंगे ना, आपके अकाउंट में अगर आप अपने हाथ साथ 2000 भी लेकर जा रहे हैं ना, तो आपके साथ एक अठन्नी बच के नहीं आने वाला है, बल्कि एक्स्ट्रा खर्चे ऊपर से और हो जाएंगे जो कि आप दूसरे दिन जाके पेमेंट करेंगे। तो खर्चा महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसी के साथ अगले मैसेज की बात करूँ तो पूनम जी कनेक्ट होती है और इनका कहना है कि मुझे लगता है मैम इनमें से जितने भी आपने ऑप्शन बताए हैं ना, ऑलमोस्ट सारी टेंशन है हर किसी के लाइफ में। ओके, और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होती है अंशिका जी और इनका कहना है, देखिए मैडम महंगाई की टेंशन तो है, पर मुझे लगता है कि कल के बारे में ना सोचे, आज को एंजॉय करें। बस ये है कि कल के लिए कुछ सेव जरूर कर लीजिए। ये है ना, कल के लिए सोच लो, तरसो देखा जाएगा, जो होगा सोच लेंगे, है ना। ये जरूर है भैया, हर किसी की लाइफ में टेंशन है, तो उस टेंशन को थोड़ा कम करिए, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी चीज़ ठीक नहीं हुआ। अगर टेंशन लेके हर चीज़ ठीक होती तो दुनिया पूरी बहुत मार्केट में सब कोई टेंशन ले सकता था। चलिए इसी के साथ मिले तो यहाँ से जाने की इजाज़त, कल मिलेंगे हम आपको सेम टाइम सेम जगह। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से अब अपने घरों में भैया पूजा शुरू हो चुकी होगी, लेकिन मैं लेट जाके करूंगी अभी। चलिए बाय।
3: मुंडे कुड़ियों पंगड़ा।

0: न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
1: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, कोई भी चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक असर होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के और संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तो कभी निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के दौरान भी श्री राहुल गांधी कोई सबूत पेश नहीं कर सके। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBT मैदान शामिल है। इसके साथ ही
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड।
3: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
7: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
8: स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे आपके रेडियो का बेहतरीन प्रोग्राम। जी हाँ, तो बेहद ही खास शो है ये, जिसका नाम है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और मैं हूँ आपका दोस्त RJ आनंद और मेरे साथ है
9: RJ रीना।
8: तो आप सभी को हम दोनों की ओर से
9: नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहाँ तिल की खुशबू, गुड़ की मिठास और नान खटाई नरमी और मेरठ की आत्मा है।
8: कभी सर्दियों की सुबह मेरठ में बिताई है आपने?
9: बिल्कुल, सुबह सुबह धुंध, हाथ में कुल्हड़ वाली चाय और सड़क किनारे ताजी रेवड़ी,
8: वो और वो गर्मा गर्म गजक जैसे ठंड की ऑफिशियल मिठाई है।
9: आपको पता है दोस्तों, मेरठ की रेवड़ी और गजक सिर्फ मिठाई नहीं, एक विरासत है। यहाँ पीढ़ियों से परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ दादा से लेकर पोते तक यही कारोबार संभाल रहे हैं।
8: और एक खास बात, मेरठ की रेवड़ी और गजक को GI टैग भी मिल चुका है।
9: GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब यह उत्पाद अपने क्षेत्र की विशेष पहचान रखता है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, वैसे ही मेरठ की गजक।
8: यानी कोई भी गजक बना ले, लेकिन मेरठ वाली बात हर किसी में नहीं होती आर्जेरीना।
9: अब बात उस स्वाद की, जो नो चंदी मेले की जान है नान खटाई।
8: उफ, घी से भरी हुई, ऊपर पिस्ता और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली।
9: लेकिन क्या आपको पता है नान खटाई की कहानी काफी दिलचस्प है?
8: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब ब्रेड और खटाई यानी बिस्किट जैसी बेक्ड चीज।
9: और भारत में इसे देसी स्वाद मिला। इलायची, देसी घी, बेसन, सूजी और फिर पैदा हुई वो नान खटाई, जिसके बिना मेला अधूरा लगता है।
8: मेरठ का नौचंदी मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, भावना है।
9: और इस मेले की सबसे बड़ी पहचान नान खटाई और हलवा पराठा।
8: मैं तो मेलों में झूले से ज्यादा नान खटाई के स्टॉल ढूंढता था।
9: और मैं तो पैकेट घर लेकर आती थी।
8: मेरठ के पुराने बाजारों में आज ऐसी दुकानें मिल जाती है जहां कई पीढ़ियों से यही मिठाइयां बनाई जा रही हैं। इन मिठाइयों की खुशबू लोगों को दूर दूर से अपनी ओर खींच ले आती है।
9: नान खटाई एक तरह का पारंपरिक भारतीय बिस्किट है। यह बाहर से हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे मैदा, सूजी, घी, चीनी और इलायची से बनाया जाता है।
8: कहा जाता है नान खटाई शब्द फारसी भाषा से आया है। नान मतलब रोटी और खटाई यानी बिस्किट।
9: मेरठ की नान खटाई खास इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें देसी घी का भरपूर इस्तेमाल होता है। पुराने समय में इसे मिट्टी के तंदूर में पकाया जाता था, जिससे इसका स्वाद और खुशबू दोनों अलग होते थे।
8: सबसे पहले घी और चीनी को अच्छी तरह फेटा जाता है, फिर उसमें मैदा, सूजी और इलायची मिलाई जाती है। छोटे छोटे गोल आकार देकर इन्हें धीमी आंच पर बेक किया जाता है।
9: जब यह पकती है तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है।
8: मेरठ में नान खटाई सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि मेहमान नवाजी का भी हिस्सा है। घर में आए मेहमान और चाय के साथ नान खटाई परोसी ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है?
9: अब तो बात करते हैं रेवड़ी की। दोस्तों, सर्दियों का मौसम और रेवड़ी, यह रिश्ता बहुत पुराना है। रेवड़ी तिल और गुड़िया चीनी से बनाई जाती है। यह छोटी छोटी गोल मिठाई होती है जो खाने में कुरकुरी और स्वाद में बेहद शानदार लगती है।
8: मेरठ की रेवड़ी में तिल की गुणवत्ता और गुड़ का संतुलन बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ की पारंपरिक दुकानों में आज भी हाथ से रेवड़ी बनाई जाती है।
9: सबसे पहले गुड़ या चीनी को गर्म करके गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है, फिर उसमें भुने हुए तिल मिलाए जाते हैं। इसके बाद छोटी छोटी गोलियों का आकार दिया जाए।
8: यह काम बहुत तेजी और कुशलता से करना पड़ता है क्योंकि मिश्रण जल्दी सख्त हो जाता है।
9: तिल में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। स्वाद में यह शरीर को गर्म रखता है और ऊर्जा देता है।
8: इसलिए पुराने लोग कहते थे, सर्दी में तिल खाया करो, शरीर को ताकत दिया करो।
9: अब बारी है मेरठ की मशहूर गजक की। गजक उत्तर भारत की एक पारंपरिक मिठाई है जिसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है। यह तिल, गुड़ और घी से बनाई जाती है।
8: बहुत लोग रेवड़ी और गजक को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग हैं। रेवड़ी छोटी और सख्त होती है, जबकि गजक परतदार और हल्की कुरकुरी होती है।
9: यह सिर्फ मिठाई नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और पुराने स्वादों की पहचान है। इसमें छिपा है अपनापन, मेहनत और भारतीय खानपान की खूबसूरत विरासत।
8: अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेरठ की मिठाइयों की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है?
9: तो दोस्तों, इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी एक जनपद एक व्यंजन योजना।
8: और इसमें सिर्फ बड़े उद्योगपति नहीं, बल्कि छोटे हलवाई, घरेलू महिलाएं, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमी भी शामिल हो सकते हैं। मतलब अब शर्मा जी की गजक सीधे दुबई और लंदन भी जा सकती है।
9: और यही तो लोकल टू ग्लोबल का असली सपना है।
10: भैया नमस्कार।
11: नमस्कार
10: भैया, ये जो एक योजना है सरकार की, एक ODOC योजना, इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बींगा व्यापारी,
11: ये बहुत अच्छी योजना आई है सरकारी तरफ से, क्योंकि इसमें क्या है कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन टेस्ट ये चीज है, एक जनपद एक स्वाद, हमारा मेरठ स्वाद नगरी है और उसी नगरी का एक पेश है नांगटाई। नांगटाई एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ना कोई केमिकल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ बेसन है, बूरा है और बाकी प्यार है मेरठ का भरा हुआ। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इससे क्योंकि हम जैसे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिल रहा है और युवा होने के नाते हमें आगे को और स्टार्टअप के और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमें हर चीज सहायता देती है, चीज करती है, मदद देती है, तो उसमें हम भी एज सिक्योर हो जाते हैं कि अगर मान लो हमें कुछ करना है तो हमें पता है कि गवर्नमेंट से हमें मदद मिल जाएगी और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें जैसे पैकेजिंग के लिए आइडिया मिल रहे हैं और बहुत चीज है, तो वो हमें डे बाई डे नई नई गाइडलाइंस मिलती रहती है उससे।
10: और साथ ही अब जैसे भारत में तो नॉन कटाई मशहूर है ही, अब वैश्विक स्तर पर पहचान बनने वाली है इस योजना।

0: के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, वैसे स्तर पर बिल्कुल बनेगी, क्योंकि अब जो हम यहाँ पर रह रहे हैं मेरठ से, अब जो मेरठ का युवा बाहर जाके अमेरिका रहने लग गया, कनाडा रहने लग गया, वो मंगा उन्हें जो होती थी वहाँ पर जाके बोले एक क्रेविंग होती थी कि मीठा नांग टाइप से खानी है या रेवड़ी से खानी है, उन्हें मंगानी है। तो अब क्या है, इस चीज से जब ये आ जाएगी, अब हमें भी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल गई, ब्रांडिंग मिल गई, हर चीज मिल गई, तो उससे बहुत फायदा पड़ेगा।
0: तो योगी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे?
1: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस स्कीम को चालू करा और इससे आपने युवाओं को प्रोत्साहन दिया, छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया, बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, जब कोई विदेशी पहली बार मेरठ की रेवड़ी खाएगा, उसे सिर्फ तिल और गुड़ का स्वाद नहीं मिलेगा, बल्कि उसे मिलेगा भारत का दिल।
3: उसे महसूस होगा कि यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मेले, यहाँ की ठंड और यहाँ के लोग।
2: क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपको संस्कृति से भी जोड़ता है,
3: और शायद इसीलिए हर शहर का स्वाद उसकी पहचान बन जाता है।
2: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवड़ी खाए तो याद रखिए, ये सिर्फ मिठाई नहीं, मेरठ की विरासत है।
3: और कोने में जाने वाला कल यही स्वाद न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो की दुकानों में भी बिक रहा हो।
2: लोकल स्वाद, ग्लोबल अंदाज।
3: तो दोस्तों, आप सुन रहे थे आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें होती है दिल से दिल तक। श्रोताओं, अब लेते हैं हम आपसे जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे एक और नई कड़ी में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
6: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
5: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
6: अरे नहीं,
7: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
6: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
5: अच्छा।
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: रहना। करीब 1,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से कटान रोकने के लिए कार्य तत्काल शुरू करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अतिवृष्टि हुई है वहां 15 अक्टूबर से धान, ज्वार, बाजरा और मक्का के क्रय केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को फसल, मकान और पशुधन क्षति पर आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
1: अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात और बाढ़ के कारण प्रदेश ने पिछले एक सप्ताह पूर्व काफी बड़े पैमाने पर फसल को नुकसान पहुंचाया है और बहुत सारी जगह जन और पशु की भी हानि हुई है। आज डबल इंजन की सरकार मात्र 8 से 10 दिन के अंदर ही अपने अन्नदाता किसानों को उसकी फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति का ये आपदा राहत कोष से मुआवजा उपलब्ध करा रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मिशन शक्ति के 6वें चरण के अंतर्गत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी क्रम में महोबा, इटावा, श्रावस्ती, शामली में महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता का संदेश देने के लिए महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। वहीं फतेहपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 6 के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में काफी संख्या में पुलिसकर्मी और विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: तो इस मार्च के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस प्रकार महिलाओं में शक्ति होती है, हर एक बच्ची में भी एक शक्ति होती है और सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए चलाई जा रही है उसका भी लगातार अब प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, अवेयरनेस चलाई जाएगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी के समर्थन में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में कहा कि शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों और उनके परिवारों को सालाना 5 लाख रूपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों के हित में बेहतर कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।
1: शिक्षकों के हित के लिए, राज्य कर्मचारियों के लिए हित के लिए जो अच्छा होगा, सरकार उस प्रकार का कदम उठाने में कोई हिचक नहीं दिखाएगी। हम आपके साथ में हैं, आपके हितों का संरक्षण करेंगे। जैसे हमने एक मुश्त पैसा दिया।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 की परीक्षा तिथि और आवंटित परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार पेट 2026 की लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 जनपदों में संपन्न होगी। अभ्यर्थी आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा जनपद की जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि परीक्षा शहर की सूचना एडमिट कार्ड नहीं है। परीक्षा में शामिल होने के लिए वैध प्रवेश पत्र अलग से वेबसाइट पर यथासमय जारी किया जाएगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का यह प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ते देश के कदम की।
4: 21 दिसंबर 2021 को शुरू हुए सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को स्वदेशी स्तर पर विकसित करना था, जिसमें निर्माण, पैकेजिंग, डिजाइन शामिल थे। इसके संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज की जरूरत मानते हुए कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण

0: रही है।
1: हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है, यानी विकसित भारत के नए टेक हब देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं।
0: गौतम बुद्ध नगर की उद्यमी खुशबू सिंह ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बल मिला है।
2: स्थानीय स्तर पर चिप्स और उपकरणों का निर्माण होने से उद्यमी को महंगे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे सप्लाई चेन और भी तेज बनेगी।
0: सेमीकॉन इंडिया के तहत 1.6 लाख करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
3: शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन प्रदेश भर के देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वाराणसी के दुर्गा घाट स्थित मां ब्रह्मचारिणी के प्राचीन मंदिर में दर्शन पूजन के लिए काशी और आसपास के जिलों से भक्त पहुंच रहे हैं। जौनपुर स्थित शक्तिपीठ मां शीतला चौकिया धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लाइन दर्शन पूजन के लिए लगी हुई है। पड़ोसी देश नेपाल से भी श्रद्धालुओं का आना यहां जारी है। वहीं सहारनपुर में सिद्ध

0: कलेक्शन अकाउंट में ही धनराशि जमा करने की अपील की है। प्राधिकरण ने सलाह दी है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले संबंधित परियोजना के कलेक्शन अकाउंट का विवरण यूपी रेरा के आधिकारिक पोर्टल से अवश्य सत्यापित कर लें। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बिल्डर या प्रमोटर घर खरीदार से परियोजना के निर्धारित कलेक्शन अकाउंट के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में धनराशि जमा करने के लिए कहता है तो खरीदार इसकी सूचना यूपी रेरा को दें। प्रदेश में आज अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बदायूं जिले में बिसौली थाना क्षेत्र में आज एक स्कूल की बस और बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायल को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं मेरठ में सरधना के दबथुआ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बारिश की आपदा से प्रभावित 9,18,000 किसानों के खातों में पहुंची 493 करोड़ रुपए की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, डबल इंजन सरकार 8 से 10 दिन के भीतर दे रही है मुआवजा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में मिशन शक्ति के 6 चरण के तहत जागरूकता रैली को किया रवाना। कई जिलों में कार्यक्रमों में महिला सुरक्षा का दिया गया संदेश। 25, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET। 60 जनपदों में 2 पालियों में होगा इम्तहान। और शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120+ रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना रेडियो स्टेशन। प्रोग्राम है आपका अपना फेवरेट जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही कमाल के शिक्षित मौजूद हैं। ऑफ कोर्स आप बैक टू बैक इनके एडवर्टीजमेंट सुनते हैं हमारे रेडियो पे। श्री साई हॉस्पिटल से आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अंकुल गोयल। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एंड सर्जन रोबोटिक एक्सपर्ट भी है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम टू FM मुरादाबाद। कैसे हैं आप?
4: नमस्कार आपके सारे लिसनर्स को मुरादाबाद के।
3: क्या बात है सर, एक बार आप हमारी जनता को प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी हो आपका परिचय देने में, तो एक बार प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में और बता दें।
4: परिचय आपने बिल्कुल सही दिया है। मैं डॉक्टर अंकुर गोयल, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, और पिछले 18 साल से मुरादाबाद में कार्यरत हूँ एट श्री साई हॉस्पिटल, और विभिन्न प्रकार की हड्डी रोग का विशेषज्ञ हूँ मैं और उन्हीं का इलाज करता हूँ।
3: दोस्तों आज का विषय बहुत खास है। आज है 12 अक्टूबर और हर साल 12 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, यानी कि विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है हर साल 12 अक्टूबर को। और आज इसी पर बात करने के लिए हम ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, और साथ में हमारे बीच में डॉक्टर अंकुर गोयल जी मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। तो सर सबसे पहले अगर मैं आम भाषा में आपसे पूछूं कि ये क्या चीज होती है, क्या बीमारी है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं?
4: आर्थराइटिस यानी आम भाषा में बोले गठिया
3: जी,
4: तो ये एक ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे की बीमारी है। बीमारी भी नहीं कहना चाहिए कि एक एजिंग प्रोसेस है
3: जी।
4: जैसे हमारे बाल सफेद होते हैं और हमारे दांत झड़ते हैं, उसी तरह एजिंग प्रोसेस में आर्थराइटिस भी एक प्रोसेस है ओल्ड एज का।
3: ओके,
4: ये मेनली घुटनों में इफेक्ट करता है, और घुटनों में मेनली जो चिकनाई होती है वो कम हो जाती है। चिकनाई की जो परत है, मेडिकल लैंग्वेज में कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस जाती है
3: जी।
4: जिसकी वजह से हड्डी आपस में एक दूसरे से रब करने लग जाती है या घिसने लग जाती है, और वो पेन और सूजन पैदा करती है। इसी को हम आर्थराइटिस कहते हैं, और इससे घबराना नहीं चाहिए। अब इसका बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज है, चाहे वो दवाइयां है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, या फिर सर्जरी है। अब उस आर्थराइटिस से हम निजात पा सकते हैं इन विभिन्न ट्रीटमेंट द्वारा।
3: ओके, बहुत ही साफ शब्दों में सर आपने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहले ऑपरेशन जो होता है, क्या वो रोबोट करते हैं या फिर सर्जन?
4: जो लेट स्टेज आर्थराइटिस होती है या गठिया जो लेट स्टेज होती है
3: जी,
4: जिसमें दवाइयां, फिजियोथेरेपी, व्यायाम सब फेल हो जाते हैं, उन केसेस में सर्जरी द्वारा दर्द से निजात दिला

0: आया जा सकता है। ये रोबोटिक भी होती है और कन्वेंशनल सर्जरी भी होती है, पर रोबोटिक अब एक एडवांस प्रोसीजर है जिसमें नी रिप्लेसमेंट के दौरान एक सटीक प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट किया जाता है जिससे रिकवरी भी फास्ट होती है और पेशेंट को पेन भी कम होता है।
1: ओके, अभी जैसे हमने रोबोटिक की बात करी तो कई लोगों के दिमाग में एकदम से डर आ जाता है कि रोबोट हमारा ऑपरेशन करेगा, मतलब वो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो वो एक बारी हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे।
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट हमारे को सर्जरी में असिस्ट करता है।
1: ओके,
0: आप कभी भी कहीं भी पढ़ेंगे तो ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। रोबोट हमारे आंख और हाथ हो सकता है पर दिमाग हमेशा सर्जन का ही होता है। फाइनल डिसीजन सर्जन का ही रहता है और ही इज देयर इन सर्जरी और सर्जरी वो ही कर रहा है, रोबोट उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है।
1: ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। तो श्रोताओं, आपका डर और आपका वहम दोनों ही क्लियर कर दिया है हमने। एंड डॉक्टर साहब, इसी बीच में आपसे एक और पूछना चाहूंगा, क्या इस तकनीक से दर्द कम हो सकता है और रिकवरी तेजी से हो सकती है क्या?
0: जी हाँ, बिल्कुल। रोबोट द्वारा जब हम सर्जरी करते हैं तो ये सर्जरी बहुत ही सटीक होती है। इसमें ऑपरेशन के दौरान कम सॉफ्ट टिश्यू डिसेक्शन या चीराफाड़ी कम करनी पड़ती है
1: जी।
0: तो इसमें पेन भी ऑपरेशन के बाद कम होता है और जब पेन कम होता है तो एक्सरसाइज मरीज जल्दी कर पाता है
1: जी।
0: और रिकवरी फास्ट होती है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन आज आप अपने हॉस्पिटल से निकल के हमारे हॉस्पिटल पहुंचे हैं, ये एंटरटेनमेंट का हॉस्पिटल है, यहाँ के कैसा लग रहा है, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी लग रही है आपको?
0: बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा रेडियो चैनल मुरादाबाद में, हमारे मुरादाबाद शहर में होगा। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, कीप इट अप, और इससे मुरादाबाद के लोगों का मनोरंजन हो रहा है
1: जी।
0: यू आर डूइंग अ गुड जॉब।
1: थैंक यू सर। यहाँ पे कैची इंजेक्शन वो सब नहीं है, यहाँ पे माइक्स है, हमारा कंसोल है और हमारी आवाजें हैं, जो कि इसके बाद बहुत लोग सुनने वाले, हमें पता भी नहीं होता कितने लोग हमें सुन रहे होते हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है ना।
0: बहुत इंटरेस्टिंग चीज।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये थोड़ा सा सर को हमने एंटरटेन कर दिया अपनी बातों से। वेल गाइज, आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। मेरा नाम आनंद है और आज हम गठिया के विषय में ढेर सारी बात कर रहे हैं। श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा सर, जैसे अभी हम गठिया के बारे में बात कर रहे थे तो मैं इसके विषय में एक और चीज जानना चाहता हूँ, इसकी कोई एज लिमिट होती है, मतलब किस एज ग्रुप में ज्यादा होता है ये और लोगों को कैसे इसके बारे में पता चले जब भी होते हैं, इसकी स्टार्टिंग फेज क्या होती है बेसिकली?
0: ये जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये एज रिलेटेड प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है।
1: ऑलराइट,
0: तो अमूमन ये 60-65 की एज ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है।
1: ओके,
0: स्टार्टिंग इसकी अगर हम घुटने का गठिया की बात करें तो घुटने के दर्द से शुरुआत होती है। तो जब आपकी घुटने के दर्द की शुरुआत होती है तो हो सकता है किस दिन आपने ज्यादा काम कर लिया हो, किस दिन आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली हो, तो उसकी वजह से दर्द शुरू हो। तो पहले 2-4 दिन अगर दर्द है तो आपने कोई अगर ऐसा कार्य करा है तो उसको बंद करके अपने आप ही वो दर्द ठीक हो जाता है। पर जब वो दर्द ये सब नॉर्मल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी बना हुआ है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये पता करना चाहिए कहीं उसकी गठिया की शुरुआत तो नहीं हो रही।
1: ओके, तो मतलब अगर आपको ऐसा कुछ भी लगा है लिसनर्स, या फिर जो सर ने बताया, अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं तो इस दौरान आपको जल्द ही डॉक्टर से विजिट करना चाहिए।
0: डॉक्टर से विजिट करना चाहिए और डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन से विजिट करके और सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो एक्सरे करा के हमें देखना चाहिए कि कार्टिलेज हमारा डैमेज तो नहीं हो रहा है।
1: ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, इसी बीच में एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, क्या रोबोटिक सर्जरी हर इंसान के ऊपर लागू होती है?
0: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। रोबोट से हमारी जो सटीक प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट है वो बेहतर होती है
1: जी।
0: तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। पर कन्वेंशनल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कन्वेंशनल सर्जरी खराब है। अब तक हम कन्वेंशनल, पिछले 16 साल से मैं कन्वेंशनल सर्जरी ही करता आ रहा हूँ, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। पर जब एक एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो हमें उसका यूज करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स बेहतर होते हैं।
1: बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन, जब कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद पेशेंट्स के मन में पहला क्वेश्चन होता है, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा, मैं कब तक चल पाऊंगा, या मैं मतलब पूरी तरह कितना टाइम में मेरी बॉडी रिकवर हो जाएगी, उस विषय में आप थोड़ा बताएं।
0: क्योंकि हम ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसमें पेन भी कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है।
1: ओके,
0: तो यूजली सर्जरी के अगले दिन ही हम पेशेंट को वॉकर के साथ वॉकिंग शुरू करवा देते हैं, वो अपना टॉयलेट में बैठना शुरू कर देता है, दूसरे और तीसरे दिन कॉरिडोर में चलना शुरू हो जाता है और चौथे दिन उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है। वो बिल्कुल भी बेड रिडन नहीं रहता है, उसको अपनी रोजमर्रा की आम जो टॉयलेट बाथरूम जाना है वो डे सेकंड से ही शुरू हो जाता है। विद इन 10-15 डेज सीढ़ियां चढ़ना उतरना और अपने नॉर्मल काम करने शुरू हो जाते।
1: ओके लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 टॉक शो में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी, सीनियर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड रोबोटिक एक्सपर्ट हैं। आज हम गठिया के विषय में ढेर सारी बात कर रहे हैं दोस्तों। एंड आपको बता दें, ये हेलो डॉक्टर प्रोग्राम है, अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हम डॉक्टर साहब तक जरूर पहुंचाएंगे आपका वो सवाल। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896 पे, यानी कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। एक बार फिर से वेलकम बैक है, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी, जहां बातें हो रही है ढेर सारी काम की बातें हो रही है। और आज हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गोयल जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उपस्थित है। सर से लगातार बातें हो रही है गठिया के विषय में। और इसी बीच डॉक्टर साहब, एक और सवाल है मेरा, सामान्य नी रिप्लेसमेंट की तुलना में रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का खर्च कितना अलग हो सकता है, इस विषय में थोड़ा बताएं। क्योंकि रोबोटिक का जब हमने नाम लिया है तो लोगों के दिमाग में एकदम से हाई एक्सपेंसिव वाली चीजें आने लगती है कि यार बहुत महंगा होगा।
0: हाँ, ये मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ, लोगों के दिमाग से भ्रम निकालना चाहता हूँ। हम श्री साई हॉस्पिटल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज रोबोटिक सर्जरी का नहीं ले रहे हैं। जो सामान्य नी रिप्लेसमेंट का खर्च है वही रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट का खर्च है। और इसमें आयुष्मान भारत के लिए भी हम काफी चीजें करते हैं और रोबोटिक नी भी करते हैं आयुष्मान भारत के पेशेंट्स का, और करीब 100 से अधिक पेशेंट इसका लाभ उठा चुके हैं।
1: अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में ये डेफिनेटली सवाल होगा, रोबोटिक सर्जरी की बात चल रही थी तो बहुत हाई एडवांस है तो उसका मतलब अमाउंट भी ज्यादा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके बिल्कुल नियर है श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद का, और काफी अच्छा विश्वास भी है लोगों का, मुझे पता है। तो आप डेफिनेटली अगर आसपास में कोई भी व्यक्ति इस चीज से जूझ रहा है तो मैं तो कहूंगा उसको आप जरूर बताएं, और अगर समय पे डॉक्टर साहब इलाज मिल जाता है।
0: ये भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली में इसके लिए 40,000 to 50,000 पर नी चार्ज होता है, बट एट साई हॉस्पिटल कोई भी हम एक्स्ट्रा चार्ज रोबोटिक सर्जरी के लिए नहीं ले रहे हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो आई होप लिसनर्स, आपको आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल ही रहे होंगे। अच्छा सर, जो रोबोटिक सर्जरी होती है, इससे पहले जो मरीज होता है उसके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होते हैं, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है?
0: मरीज को सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे ये डिस्कस करना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट उसके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या उसका इलाज दवाई से फिजियोथेरेपी से हो सकता है। क्योंकि पहला काम डॉक्टर का यही है कि वो दवाई और फिजियोथेरेपी से ही उसका इलाज करे। जिन मरीजों का इलाज इससे नहीं हो पा रहा है तो उन्हीं के लिए रोबोटिक या कन्वेंशनल नी सर्जरी एडवाइस होनी चाहिए। दूसरा, इस सर्जरी के बाद उसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो। उसकी एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि उसका दर्द खत्म हो जाएगा, उसकी दिनचर्या की एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, दर्द की दवाइयां लेना खत्म हो जाएगा। तीसरी, ये उसे पूछना चाहिए कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इस सर्जरी के बाद। जैसे जमीन पे बैठना, उखड़ू बैठना, दौड़ना, भागना, ये सारे काम हमें नहीं करने चाहिए। चौथी ये चीज है कि उस इम्प्लांट की लाइफ क्या है। ये जो हम रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें जो इम्प्लांट है या जो घुटने की लाइफ है वो करीब 20 से 25 साल है, और उसका अगर रख रखाव हम अच्छा करते हैं और जो प्रिकॉशन हमने बताए हैं वो लेते हैं तो वो लाइफ और भी ज्यादा हो सकती है। तो ये सारी चीजें मरीज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, पूछनी चाहिए। ये भी पूछना चाहिए कौन सा इम्प्लांट वो लगा रहे हैं, किस तरीका है, उसकी क्या क्वालिटी है, ये सारी बातें मरीज को अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी।
1: बहुत ही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या रोबोटिक सर्जरी कराने के बाद फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है?
0: फिजियोथेरेपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, और अगर हमने जोड़ तो बदल दिया है पर मांसपेशियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि मरीज ढंग से बिना दर्द के ज्यादा चल पाए, तो करीब करीब 2 से 3 हफ्ते फिजियो कराना बहुत जरूरी है, आवश्यक है।
1: ओके, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल आपसे है, मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर की जो भूमिका होती है, जो उनका रोल होता है, वो कम हो जाता है?
0: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: मेरे को पर्सनली लगा कि मैं वो पूछ लेता
0: हूं। जैसा पहले भी कहा कि दिमाग तो डॉक्टर का ही है, अल्टीमेटली कंट्रोल डॉक्टर के पास ही है। रोबोट उसको प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में उसको बहुत सटीकता लाने में मदद कर।
1: ठीक है, क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज को बिल्कुल दर्द नहीं होता है?
0: नहीं, बिल्कुल दर्द तो नहीं कह सकते, क्योंकि दर्द तो कोई भी सर्जरी होगी, थोड़ा दर्द तो होगा ही। पर अगर हम कंपैरिजन करें कन्वेंशनल और रोबोटिक सर्जरी में, तो रोबोटिक सर्जरी में कम दर्द होता है।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है, उसके लिए एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद आपको थैंक यू करता है। एंड सच में मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर सच में भगवान होते हैं। अगर वो ना होते तो शायद पता नहीं हमारा क्या ही हो रहा होता। एनीवेज सर, क्या कुछ इसका ऐसी भी चीज हो सकती है, I mean, जैसे कुछ नेचुरल चीजें अगर हम करें और हमें इसकी जरूरत ही ना पड़े?
0: देखिए ऐसा है कि इनिशियली तो ट्राई करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज हो गई, दवाई हो गई, वॉकिंग हो गई, वेट रिडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हम वजन घटा लेते हैं और अपने आइडियल वेट रेंज में आ जाते हैं तो घुटनों पे लोड कम पड़ता है और दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो दोज आर द थिंग्स जो हमें पहले ट्राई करनी होनी चाहिए, बट ये सारी चीजें फेल होने के बाद फिर जब रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ही हमारे पास बचता है। पर हाँ, ये सारी चीजें अगर मरीज फॉलो करता है, वेट रिडक्शन हो गया, एक एक्सरसाइज रूटीन, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो इसको टाला जा सकता
1: है। ओके, तो लिसनर्स आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन है कि क्या रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज बहुत जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है क्या?
0: कन्वेंशनल के मुकाबले रोबोटिक में थोड़ा जल्दी यानी कि जल्द समय में लौट सकता है। अगर हम एक एवरेज टाइम ले सकते हैं, क्योंकि हर मरीज का पेन टॉलरेंस अलग होता है, एक्सरसाइज करने की क्षमता अलग हो सकती है, तो 3 से 6 हफ्ते एक आइडियल टाइम है जिसमें मरीज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकते।
1: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अब चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या घुटने में गंभीर एथराइज होने पर एकमात्र विकल्प होता है सर्जरी का?
0: जी हाँ, आर्थराइटिस अगर सीवियर है और सारे कंजर्वेटिव मेजर्स जैसे कि एक्सरसाइज दवाइयाँ फेल हो गई हैं, तो सर्जरी ही उसका एकमात्र इलाज है। और वो हमें पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। उसको पोस्टपोन करने से आर्थराइटिस बढ़ता है और हमारी मोबिलिटी और हमारी चाल खराब हो जाती है।
1: ओके,
0: कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि अब हमारी उम्र 65 की हो गई, 70 की हो गई, क्या रिप्लेसमेंट इस उम्र में कराना सही है? तो मेरा उन लोगों से कहना है कि आर्थराइटिस ओल्ड एज की ही बीमारी है और मोबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का। मोबिलिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारा वेट भी बढ़ जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, हाइपरटेंशन भी हो जाती है, डॉक्टर कहता है चलो और हम चल नहीं पाते आर्थराइटिस की वजह से। तो ओल्ड एज में अगर आपके डॉक्टर सलाह देते हैं रिप्लेसमेंट का, तो आपको कराना चाहिए। आपकी फिटनेस अगर ठीक है, बाकी आपको और कोई बीमारी नहीं है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के अलावा, और आपकी कार्डियक फिटनेस है, तो आपको जरूर सर्जरी करानी चाहिए कि लाइफ चेंज कर दे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंकुर गोयल जी, आप आए, आपका दिल से थैंक यू। चलते चलते हमारे तमाम सुनने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कोई एक मैसेज? तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं आज रेडियो के माध्यम से।
0: जैसा आपने बोला कि क्या एक विकल्प है कि जिससे हम सर्जरी से बच सकें, तो यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, सबको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: रोज सुबह वॉक पे जानी चाहिए, आधा घंटे व्यायाम करना चाहिए और अपनी डाइट कंट्रोल में रखनी चाहिए।
1: बहुत ही सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आज आप आए और इतना कीमती समय आपने हमारे साथ साझा किया। बाकी जो भी डिटेल्स होती है श्री साई हॉस्पिटल की, वो एडवर्टीजमेंट के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं और डिटेल्स अगर आपको चाहिए इस विषय पर या ऐसे और विषयों पर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पर। फिलहाल
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: और स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक, दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारम्भ। योजना के अंतर्गत महिला और ट्रांसजेंडर्स को स्वरोजगार हासिल करने का अवसर। विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित, जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया गया। और नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का अधिक अवसर होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोना की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। पीठ ने पटाखों के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित के बिना प्रतिबंधात्मक आदेश जारी नहीं कर सकते। ऐसे निर्देशों को अक्सर जबरदस्ती कार्रवाई के रूप में देखा जाता है। पीठ ने कहा कि पूर्व की तरह इस वर्ष भी लोगों से दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील करने के लिए पर्याप्त समय है। पीठ ने सुझाव दिया कि पटाखों के उपयोग से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लोगों को कम पटाखे फोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिकारी बाजार में अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित करने पर विचार कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालतों को दखल देना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 33वें स्थापना दिवस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि संविधान ने हर नागरिक से गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे बड़े वादे किए हैं।
5: हमारे संविधान ने हर नागरिक को सम्मान, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। आयोग इन अधिकारों की रक्षा करता है। ये उन लोगों की आवाज बनता है जो अपनी बात आसानी से नहीं रख पाते। आयोग शिकायत मिलने का इंतजार किए बिना भी खुद कार्रवाई कर सकता है।
3: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं।
6: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए, हम कानून की व्यवस्था को और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
3: इंडिया ब्लॉक की मुलाकात की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी और उन्होंने कल रात ही इसका जवाब दे दिया था। उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मॉडल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की शिक्षा संबंधी पहले कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक ही सीमित रही। ये बात श्री सूद ने द्वारका में 33 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक सरकारी विद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सचिवालय में दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस योजना के माध्यम से महिला और ट्रांसजेंडर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनकर सम्मानजनक स्वरोजगार हासिल करने का अवसर मिलेगा। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के पहले चरण में कुल 1,300 गुलाबी ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें 1,170 ई ऑटो महिला और 130 ई ऑटो ट्रांसजेंडर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि योजना को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए समर्पित डिजिटल पोर्टल विकसित किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया योजना की मंजूरी के बाद 3 महीने तक खुली रहेगी। पोर्टल बंद होने के बाद किसी जिले में अंतिम रूप से प्राप्त पत्र आवेदनों की संख्या निर्धारित कोटे से अधिक होती है तो ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को आश्रय पत्र जारी किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए महिला आवेदकों की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, साथ ही वे दिल्ली की निवासी होनी चाहिए। सरकार का प्रयास है कि महिला कॉलेजों के आसपास भी दुर्गा ई ऑटो के लिए स्टैंड बनाया जाए जिससे छात्राओं और अन्य महिला यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिल सके। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की आजीविका और सामाजिक आर्थिक स्थिति में होने वाले बदलावों का आकलन 2 चरणों में किया जाएगा ताकि इसके वास्तविक प्रभावों को समझकर आगे की व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाया जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्रा प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान छात्राओं ने महिला सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन, सीसीटीवी निगरानी और शिकायत निवारण से जुड़े मुद्दे उठाए। श्रीमती गुप्ता ने उनके सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को आपात स्थिति में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग 1,00,000 स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इन्हें एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत द्वारका से विभिन्न शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा परियोजना का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने द्वारका सेक्टर 16 में नवनिर्मित सरकारी सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व परिसर में छात्राओं के लिए छात्रावास और 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि द्वारका में नव निर्मित सरकारी सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के 2000 विद्यार्थियों की क्षमता है जिसमें विज्ञान, कॉमर्स और संकाय उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि परिसर में 75 कैमरे, स्मार्ट कक्षाएं, विशेष प्रयोगशालाएं और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की सुविधाएं विकसित की गई है।
9: एक एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगाने का हमारा लक्ष्य है। मात्र एक साल में 9,000 क्लासेज में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए जो आज हमारे बच्चों को डिजिटली पढ़ा रहे हैं।
8: इसके अलावा 120 छात्राओं की क्षमता वाला छात्रावास का शुभारंभ नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व परिसर में किया गया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस छात्रावास से दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं को उद्योगों के वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ITI जहांगीरपुरी, धीरपुर और नरेला में हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति

0: के अनुरूप तकनीक आधारित और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार सीखने की व्यवस्था विकसित करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवान मिश्रा।
1: दिल्ली सरकार राजधानी में 150 नए पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक बसें जनता को समर्पित करेगी। साथ ही आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस अड्डे और दिल्ली परिवहन निगम के 4 डिपो में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किए जाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े और चार्जिंग सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है, जिससे नागरिकों को अधिक सुविधाजनक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज पश्चिमी क्षेत्र के पंजाबी बाग में स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण, सड़कों की साफ सफाई और धूल नियंत्रण का जायजा लिया। श्री खिरवार ने पर्यावरण की स्वच्छता और धूल नियंत्रण के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्य और प्रयासों का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय के साथ मालवीय नगर में स्थित वाल्मीकि कैंप में हर घर नल योजना का लोकार्पण किया। इस योजना के अंतर्गत वाल्मीकि कैंप के 216 घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि हर घर नल योजना जैसी पहले नागरिकों की मूलभूत सुविधा आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर में रिड्यूस रीयूज रिसाइकल केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य घरेलू रद्दी और कम उपयोगी सामग्री की मात्रा को कम करना, उपयोगी वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल सुनिश्चित करना तथा पुनर्चक्रण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। दिल्ली नगर निगम द्वारा आज चलाए गए विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत निगम ने दिल्ली में 24 स्थानों पर ध्वलतीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान 5 संपत्तियों को सील किया गया और भवन निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन पर 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बोराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली में कल होने वाले ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2026 के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: पुलिस ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में आयोजित होने वाले इस फोरम के कारण कल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजन स्थल के आसपास की प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। यातायात पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रीसेंट रोड, अफ्रीका एवेन्यू रोड, सत्या मार्ग, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग सहित आसपास के अन्य प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने यात्रियों से प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की है। साथ ही लोगों से परिवर्तित मार्गों और यातायात संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सकलैन अख्तर।
1: दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में बुधवार तक चलने वाले ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि दुनिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच संस्कृति संवाद बढ़ाने, विश्वास कायम करने और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक चितरंजन त्रिपाठी ने बताया कि 3 दिन के इस महोत्सव में 10 नाट्य दल 11 नाटकों का मंचन करेंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अभिमंच सभागार के अलावा एलटीजी, कमानी और श्रीराम सेंटर में भी नाटकों का मंचन किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में भिक्षावृत्ति मुक्त भारत भिक्षावृत्ति मुक्त दिल्ली की ओर अग्रसर कार्यक्रम का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत और 2047 तक विकसित भारत की व्यापक राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने आज नई दिल्ली में अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर उभरती वैश्विक और तकनीकी चुनौतियों के बीच मानव अधिकार की रक्षा की मजबूती पर बल दिया गया। 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित आयोग देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी आवश्यक। दुर्गा ई ऑटो योजना के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ और नई दिल्ली में ब्रिक्स थिएटर महोत्सव का उद्घाटन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। पापा की

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और साथियों, आज सुन पाप का अपना पसंदीदा कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम है महिला मंच। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आए तो अपने सपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी प्रेरणादायक शख्सियत है सुधा चंद्र, एक बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगना, प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हौसले की मिसाल। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भविष्य को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को उस मुश्किल तक सीमित नहीं होने दिया। आज हम उनकी जिंदगी के उन 25वें पड़ाव को जानेंगे जो हमें कॉन्फिडेंस, धैर्य और लगातार कोशिश करने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुधा चंद्र जी की इंस्पिरेशनल जर्नी। हाय रीना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो?
0: आई एम गॉर्जियस। तो आगे आप क्या कहना चाहती हैं सुधा मैम के बारे में?
1: किसी भी इंसान की कहानी समझने के लिए उसके शुरुआती जीवन को जानना जरूरी होता है। सुधा चंद्र का जन्म यानी की 1965 में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार तमिल जन्मभूमि से। बचपन से ही सुधा का झुकाव कला और नृत्य की तरफ था। धीरे धीरे नृत्य करके जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़की एक दिन अपनी जिंदगी के संघर्ष को पार करके लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। महिला मंच से आज की सीख है, बच्चों की रुचि को पहचानिए और उसे अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दीजिए। सुधा चंद्र की जिंदगी में नृत्य सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था। उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास शुरू किया था और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा को निखारा। दोस्तों, किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उसके साथ चली अनुशासन, धैर्य और लगातार अभ्यास, यही गुण सुधा की यात्रा में भी नजर आते हैं। महिला मंच की सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आपके अंदर भी कोई ना कोई खास हुनर जरूर है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने और समय देने की। याद रखिए, आपका हुनर आपकी पहचान बन सकता है।
0: परिवार के साथ और सपनों की उड़ान। दोस्तों, जब किसी के सपनों को परिवार का साथ मिलता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाता है। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में भी उनके माता पिता और परिवार का सहयोग अहम रहा। उनकी नृत्य यात्रा में परिवार ने उनका साथ दिया और मुश्किल समय में भी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिली। अक्सर महिलाएं परिवार के हर सदस्य के सपने पूरे करने में जुटी रहती हैं, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं कि वह महिलाओं के सपनों को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। आज का सवाल हमारे श्रोताओं से है, क्या आपके घर में भी हर सदस्य को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों, वर्ष 1981 में सुधा चंद्र जी की जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तमिलनाडु में यात्रा के दौरान हुए हादसे में उनके दाएं पैर में गंभीर चोट आई। बाद में संक्रमण के कारण डॉक्टरों को उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उस समय सुधा जी की उम्र बहुत कम थी। उनके सामने भविष्य को लेकर आए कई सवाल थे। नृत्य जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन दोस्तों, जीवन की कोई एक घटना हमारी पूरी पहचान तय नहीं करती। मुश्किल समय में खुद को संभालना और आगे की राह तलाशना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है।
1: सुधा चंद्र के जिंदगी में दुर्घटना के बाद का समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। जिस नृत्य के लिए उन्होंने मेहनत की थी, उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता सामने आई। लेकिन ऐसे समय में परिवार का सहयोग, उनका पूरा सपना और आगे बढ़ने की इच्छा उनके लिए महत्वपूर्ण बने। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता, यह भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में खुद को थोड़ा समय देना, अपनों से बात करना और छोटी उम्मीदों को थामे रखना बहुत जरूरी है। महिला मंच की तरफ से एक प्यारी सी बात, मुश्किल दौर आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। अब हम बात करते हैं जयपुर फुट से मिली नई राह। सुधा चंद्र की वापसी की कहानी में जयपुर फुट की अहम भूमिका रही। यह कृत्रिम पैर उन्होंने दोबारा चलने और आगे चलकर नृत्य का अभ्यास शुरू करने में मददगार बना। यहाँ हमें एक और जरूरी बात समझानी चाहिए यहाँ एक और जरूरी बात हमें समझनी चाहिए किसी इंसान की उपलब्धि में उसकी अपनी मेहनत के साथ साथ सही चिकित्सा सहायता और सहयोगी तकनीकी और सहयोग देने वाले लोगों का भी योगदान होता है। सुधा ने उपलब्ध सहायता को अपनी नई शुरुआत का माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़कर रास्ता तलाशा। आज की सीख है जब जिंदगी में कोई रास्ता बंद होता दिखाई दे तो उपलब्ध नए विकल्पों को समझिए।

0: कभी कभी वही विकल्प नई संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है।
1: दोस्तों, सुधा चंद्र के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वह दोबारा भरतनाट्यम कर पाएंगी। सिर्फ चलना सीखना और शास्त्रीय नृत्य करना दो अलग अलग चुनौतियां थी। नृत्य में ताल, लय, संतुलन, लाभ और पैरों की बारीकी गतिविधियों का खास महत्व होता है। सुधा जी के लिए ये एक नई शुरुआत थी जिसमें धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी कला से रिश्ता नहीं तोड़ा। उन्होंने उनके सफर से हमें समझ आता है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी कभी पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके सीखने पड़ते हैं। महिलाओं, हमारी विमेंस याद रखिएगा, नई शुरुआत करने के लिए हर बार सब कुछ पहले जैसा होना जरूरी नहीं होता। सपना देखना खूबसूरत होता है, लेकिन उस सपने के लिए दोबारा मेहनत शुरू करना असली चुनौती होता है। सुधा चंद्र जी के कृत्रिम पैर की मदद से नृत्य का अभ्यास फिर से शुरू किया गया। उन्होंने अपनी कला के लिए नई सिरे से मेहनत करनी पड़ी। ये आसान या तुरंत पूरा होने वाला सफर नहीं था। उनकी कहानी हमें बताती है कि कमबैक सिर्फ एक शानदार दिन का नाम नहीं है, उसके पीछे रोज की कोशिश, सीखने की इच्छा और धैर्य छिपा होता है। अगर आप भी किसी पुराने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, आज मैं उसके लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो स्टेप जरूर लेंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर देता है।
0: दोस्तों, कभी भी कला को सीखने में गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुधा चंद्र की नृत्य यात्रा में उनके नृत्य गुरु का योगदान भी अहम था। कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन हमें अपनी क्षमताओं को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। जब हम किसी काम को अकेले असंभव समझने लगते हैं, तब अनुभवी व्यक्ति हमें नए तरीके सिखा सकता है। यह बात महिलाओं के जीवन में भी लागू होती है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई कला सीखने में संकोच मत कीजिए। याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं है, सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत करना समझदारी है। और साथ ही साथ सुधा चंद्र के नृत्य में वापसी के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ा। उनके जीवन के इस दौरान को समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन की मेहनत शायद दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन वही धीरे धीरे हमारी क्षमता को मजबूत बनाती है। महिला मंच की उन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी जो नई पढ़ाई शुरू करना चाहती हैं, अपना काम शुरू करना चाहती हैं या किसी हुनर को सीखना चाहती है, खुद से तुरंत परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखिए। अपने प्रयास को समय दीजिए। लगातार सीखना और जरूरत के अनुसार तरीका बदलना भी सफलता का हिस्सा होता है। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। बस आप यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए महिला मंच शो में और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक और आज हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्र जी की कहानी की एंड उनके जीवन की। और दोस्तों सुधा चंद्र जी की कहानी का एक बेहद अहम पड़ाव आया वर्ष 1984 में, जब उन्होंने दो बार मंच पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। कल्पना कीजिए एक ऐसी कलाकारी जो दुर्घटना के बाद अपने भविष्य को लेकर अनुशिचिता से गुजरी, उसने फिर से अभ्यास किया और दर्शकों के सामने अपनी कला प्रस्तुत की। ये सिर्फ नृत्य की वापसी नहीं थी बल्कि उनकी मेहनत और लगन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। उनकी यात्रा हमें बताती है कि किसी कठिन दौर के बाद अपनी पसंद की चीज की ओर लौटना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आपके जीवन में कौन सा सपना है जिसे आप दोबारा मौका देना चाहते हैं? आज उस सपने के बारे में सोचकर जरूर हमें बताइएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी डर या परेशानी महसूस ना हो। आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में हमें यही बात दिखाई देती है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती के बाद अपनी कला को फिर से अपनाया और नृत्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। महिलाओं को अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर फैसले में दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते रहना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, सही जानकारी जुटाइए और सोच समझकर कदम उठाइए। आपका आत्मविश्वास आपकी आगे की यात्रा को मजबूत बना सकता है।
1: सुधा चंद्र की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक रही कि उनकी कहानी पर फिल्म बनाई गई। तेलुगु फिल्म मयूरी वर्ष 1984 में आई और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरित थी। बाद में हिंदी दर्शकों के लिए नाचे मयूरी नाम से भी यह कहानी सामने आई। इस फिल्म ने बहुत से लोगों तक उनकी मेहनत और नृत्य में वापसी की कहानी पहुंचाई। कला की यही खूबसूरती है, एक इंसान की निजी अनुभव भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपकी जिंदगी में भी कोई अनुभव, कोई सीख या कोई छोटी उपलब्धि ऐसी हो सकती है जो किसी दूसरे इंसान को हिम्मत दे। अपने अनुभव को साझा करने से मत झिझकिए। और सुधा चंद्र की कहानी सिर्फ एक कलाकार की वापसी तक सीमित नहीं रही, उनके जीवन यात्रा पर आधारित फिल्म मयूरी को भी पहचान मिली और सुधा को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन प्राप्त हुआ। यही उपलब्धि दिखाती है कि किसी कठिन अनुभव को कला और मेहनत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पुरस्कार मिलना उपलब्धि का एक हिस्सा है, उसके पीछे जो तैयारी, समर्पण और लगातार काम करने की आदत होती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की सीख है, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। पहचान मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सीखने और बेहतर बनने की प्रक्रिया जारी रखिए।
0: तो दोस्तों सुधा चंद्र जी की प्रतिभा सिर्फ शास्त्रीय नृत्य तक सीमित नहीं रही है, उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी तथा दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। भारत में उन्होंने टेलीविजन पर भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। दर्शकों ने उन्हें अलग अलग किरदारों में देखा है और उनकी अभिनय क्षमता को पहचाना। उनकी यात्रा से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, हमारी एक पहचान हो सकती है लेकिन हमारी क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती हैं। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहती हैं या अपने काम के क्षेत्र में बदलाव करना चाहती हैं, तो अपनी रुचि को जानने का मौका खुद को दीजिए। नई दिशा चुनना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। और दोस्तों सुधा चंद्र जी ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी खास जगह बनाई। उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदार निभाए। कहीं किसी रोज और नागिन जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों ने याद रखा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कलाकार समय के साथ अपनी प्रतिभा को अलग अलग माध्यमों में इस्तेमाल कर सकता है। नृत्य से शुरुआत करने वाली सुधा ने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई। महिला मंच की तरफ से सभी महिलाओं के लिए संदेश है, आपका पहला काम या पहला अवसर ही आपकी पूरी क्षमता की सीमा नहीं है। सीखते रहिए, नए अवसरों को पहचानिए और अपनी प्रतिभा को विकसित करती रहिए। जब कोई इंसान कुछ अलग करता है ना दोस्तों, तो उसे हर बार तारीफ ही मिले ये जरूरी नहीं। कभी कभी आलोचनाएं भी सुननी पड़ती हैं। सुधा चंद्र जी की यात्रा हमें ये सोचने का मौका देती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए सिर्फ दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर आलोचना को गलत मान लिया जाए। अच्छी सलाह से सीखना चाहिए, लेकिन निराश करने वाली टिप्पणियों को अपनी पूरी क्षमता का पैमाना नहीं बनाना चाहिए। खासकर महिलाओं को अपनी जिंदगी में कई तरह की अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए जरूरी है कि हमें अपनी प्राथमिकताएं समझें और सही सलाह के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए, आपकी मेहनत का मूल्य सिर्फ दूसरों की राय से तय नहीं होता।
1: जब हम किसी कलाकार को मंच पर देखें तो अक्सर उसकी मेहनत की नजर आती है, लेकिन किसी भी बड़ी यात्रा में परिवार, गुरु, सहयोगी और कई दूसरे लोगों का योगदान भी होता है। सुधा चंद्र के जीवन में भी उनके माता पिता, गुरु और चिकित्सा सहायता देने वाले लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इससे हमें सीख मिलती है कि सफलता की राह में सहयोग को पहचानना और उसके लिए आभार व्यक्त करना जरूरी है। महिलाएं अक्सर परिवार में बहुत बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उसकी मेहनत को शब्दों में सराहना भी जरूरी है। अगर आपके घर में कोई महिला रोज आपकी मदद करती है तो आप उसे धन्यवाद जरूर कहिए। कभी कभी सम्मान को दो शब्द किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना देती हैं। सुधा चंद्र की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनकी कहानी उन लोगों तक की पहुँच है जो किसी कठिन परिस्थितियों के बाद अपने सपनों को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक चुनौती आने के बाद भी कला और प्रतिभा के लिए नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। इसके लिए मेहनत के साथ उचित सहायता और अवसर भी जरूरी है। यही कहानी हमें किसी से अपनी तुलना करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए सुननी चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता की नकल करने के बजाय अपनी रुचि, जरूरत और क्षमता के अनुसार अपना रास्ता

0: लिया लिया ये जहां देख कर अपनी चाल।
1: बाबा बाबा
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों देखिए, आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना और हम लौट कर आ चुके हैं। खुशी एंड रीना आपके साथ हैं, आपकी दोपहर को खूबसूरत तो बना ही रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, कुछ प्रेरणादायक स्टोरीज कहानियाँ होती है ना, जो हमें लाइफ में आगे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और आज ऐसी ही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, सुधा चंद्र जी की कहानी से महिलाओं के लिए खास सीख मिलती है। अपने जीवन की परिस्थितियों को समझिए, लेकिन अपने सपनों के बारे में सोचना बंद मत कीजिए। हो सकता है आपके सामने परिवार की जिम्मेदारियां हों, पढ़ाई में रुकावट हो, आर्थिक चुनौतियां हों, या खुद पर भरोसा कम हो गया हो। हर परिस्थिति का समाधान अलग होगा और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता लेना भी जरूरी है। लेकिन अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए अनदेखा कर देना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, किसी कोर्स के बारे में जानिए, अपने हुनर निखारिए या अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाइए। आपको पूरी मंजिल आज ही तय नहीं करनी है, पहला कदम भी मायने रखता है। आप आगे स्टेप तो बढ़ाइए, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। एक दिन में तो सारे काम नहीं हो जाने हैं, टाइम लगता है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए और यकीन मानिए, जब आपको खुद पर भरोसा होगा ना और आप अपनी मेहनत को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और एक महिला की पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं होती, वह अपनी रुचियों, विचारों, हुनर और उपलब्धियों से भी अपनी अलग पहचान बना सकती है। सुधा चंद्र को लोग एक नृत्यांगना और अभिनेत्री के रूप में जानते हैं। उनकी यात्रा बताती है कि अपनी प्रतिभा को विकसित करने से इंसान अपने जीवन में एक नए अवसर बना सकता है। परिवार और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने लिए सीखने और आगे बढ़ने का निकालना भी जरूरी है। महिला मंच पर आज मैं हर श्रोता से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप काफी समय से पूरा करना चाहती हैं? हो सकता है आज उसे फिर से याद करना ही आपकी नई शुरुआत बन जाए।
1: नई शुरुआत करने के लिए कोई एक तय उम्र नहीं होती। किसी के लिए यह शुरुआत बचपन में होती है, किसी के लिए युवावस्था में और किसी के लिए जीवन के बाद पड़ाव पर। सुधा चंद्र की कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि परिस्थितियों में बदलाव आने के बाद भी नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या अपनी पसंद की कला को समय देना चाहती हैं, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार शुरुआत कीजिए। हर महिला की जिम्मेदारियां और अवसर अलग होते हैं, इसीलिए खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। सीखने का जज्बा आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब हम जानेंगे सुधा चंद्र की इंस्पिरेशनल जर्नी से आज हम 5 बातें सीख सकते हैं। अपने हुनर को पहचानिए, मुश्किल समय में सहयोग लेने से मत डरिए, अपने लक्ष्य के लिए धैर्य और लगातार अभ्यास जारी रखिए, दूसरों की आलोचना को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए, परिस्थितियां बदले तो नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, मोटिवेशनल सिर्फ अच्छी बातें सुनने से नहीं आता। जब हम उन बातों को अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों के रूप में अपनाते हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। तो आज आप कौन सा एक कदम उठाने वाली हैं? खुद से ये सवाल जरूर पूछिए।
0: तो दोस्तों, महिला मंच में हमने सुधा चंद्र जी की जिंदगी के कई पड़ावों को जाना। उनका नृत्य के प्रति प्रेम, कठिन समय, जयपुर फुट की मदद से अभ्यास की वापसी और एक सफल अभिनेत्री के रूप में उनकी पहचान। उनकी कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर मुश्किल आसानी से दूर हो जाएगी, बल्कि ये याद दिलाती है कि चुनौतियों के बीच भी सहायता, मेहनत और नए रास्तों की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। और मेरे प्यारे श्रोताओं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी की कहानी कभी किसी किताब में ना लिखी गई हो, लेकिन आपकी मेहनत और आपके अनुभव भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोता,
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद,
0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: मुख्य समाचार। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। नई दिल्ली का जंतर मंतर अब विरोध प्रदर्शन का स्थल नहीं रहा। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति के 16वें सत्र में श्री गोयल ने सतत सहभागिता, सुदृढ़ संस्थागत तंत्र और बेहतर सहयोग के माध्यम से भारत ब्रिटेन आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के व्यवसायों के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने समझौते से विस्तारित व्यापार को निवेश, साझेदारी और रोजगार सृजन में बदलने का आह्वान किया। श्री गोयल ने कहा कि समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण है। यह अधिकांश भारतीय निर्यातों के लिए ब्रिटेन के बाजार में बिना शुल्क के पहुंच प्रदान करता है, साथ ही ब्रिटेन के निर्यातकों के लिए सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर खोलता है। इससे पहले श्री गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित दिल्ली संवाद 2026 में कहा कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का भी उल्लेख किया। श्री गोयल ने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत में युवाओं की संख्या अधिक है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों में दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि संबंध में स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र के जरिए लागू नियामक प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा करने के साथ साथ उचित उपाय करने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वास्थ्य सेवा शुल्क संबंधी जानकारी रोगियों और उनके परिजनों के लिए स्पष्ट और आसानी से सुलभ हो। पत्र में अंतर्राष्ट्रीय

0: के मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतों में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों को दी जाने वाली पैकेज दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे अंतर्राष्ट्रीय मरीजों को सोच समझ कर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, कीमतों और बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम करने में सहायता मिलेगी और चिकित्सा एवं आयुष देखभाल के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। यह पहल स्वास्थ्य सेवा को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और रोगियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने कैंसर रोधी दवाओं पर लाभ को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने आज सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी। न्यायालय ने दवा क्षेत्र में दवाओं की कीमतों की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ को बताया कि सरकार उन कैंसर दवाओं की सूची को अधिसूचित करेगी जिन पर लाभ की सीमा लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक सप्ताह के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया। समिति गन्ने की कटाई के समय वैज्ञानिक रिकवरी मापदंडों, आधुनिक प्रयोगशाला परीक्षण प्रणालियों और वजन की सटीकता से संबंधित हर तकनीकी पहलू की बारीकी से जांच करेगी। समिति निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान निर्धारित किए हैं। इनमें रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी मैदान शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से अब हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकों के विरोध प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थानों की पहचान के लिए एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि तीनों नए निर्धारित स्थलों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की जाएंगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की मांग पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें कल ही मिलने के लिए एक चिट्ठी मिली थी। उन्होंने कहा कि कल रात ही इसका जवाब दे दिया गया था और उनसे न मिलने की वजह भी बता दी गई थी।
2: सुप्रीम कोर्ट के द्वार सबके लिए खुले हैं। कोई भी पिटीशन, किसी भी, कोई भी, चाहे वो आम नागरिक है या कोई माननीय सदस्य है किसी इलेक्टेड बॉडी का, कोई भी है, भारत का हर नागरिक का उसका अधिकार है, वो हमारे पास आए। हम कानून की व्यवस्था और कानून के अनुरूप सुनवाई करेंगे और जो जिसको बनता है उसको जरूर उसका अधिकार वो देंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और देश की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए।
3: 99 चुनाव हारने तक राहुल गांधी जी हर सीजन में ये देखते हैं कि किसके ऊपर आरोप लगाना है। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईवीएम, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कभी कुछ और। और अब तो हालत ये हो गई है कि सड़क छाप भाषा का प्रयोग और निराधार आरोप लगाने का काम श्रीमान राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल जी, देश को शोर नहीं सच चाहिए, आरोप नहीं प्रमाण चाहिए। आप महामहिम राष्ट्रपति जी के पास गए, वहां पर भी आपको कहा गया कि शिकायत के साथ सबूत दीजिए, तो चुप्पी साध ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि एफडीआई नीति के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
4: भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पिछले एक दशक के दौरान कई बड़े बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के नियमों को आसान बनाया है। इनमें रक्षा, दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में 74%, जबकि दूरसंचार, बीमा और अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। वर्ष 2014 से 2025 के बीच भारत में 748 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत में निवेश करने वाले देशों की संख्या भी 89 से बढ़कर 112 हो गई है। नई दिल्ली में इस साल रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में निवेश कर रहे हैं।
5: वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
4: केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा सहित कई क्षेत्रों को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए खोल दिया है।
6: वी आर नाउ ट्राइंग टू फोकस ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन।
7: सबसे पहले हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने विदेशी निवेश के लिए अंतरिक्ष, ड्रोन, रक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों को खोला है। और प्रधानमंत्री ने परमाणु ऊर्जा उत्पादन को भी निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के लिए खोलने की बात कही है। और तीसरी बात, हम डीरेगुलेशन यानी नियमों में ढील की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे निवेश आसान हो जाएगा, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी।
4: केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया है। इनका मकसद भारत को निवेश का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद आज अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या में 3.64% की वृद्धि हुई है। ये मतदाता आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली NCR में पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लगाने के बजाय जन जागरूकता और स्वैच्छिक भागीदारी का असर अधिक होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिबंधात्मक आदेशों को लागू करना जमीनी स्तर पर मुश्किल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायालय धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा आयोजित 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, बाल विकास परियोजना अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इस साल अमेरिका के अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को देने की घोषणा की गई है। उन्होंने नीति निर्माताओं को आर्थिक उछाल और मंदी के दौरान अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित किए हैं। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा है कि उनके काम ने राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के सैद्धांतिक आधार को मजबूत किया। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में भी ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद है। मराठी की वरिष्ठ अभिनेत्री और लावणी कलाकार मधु कांबीकर का आज पुणे में 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पुणे में किया गया। लक्षद्वीप को पूर्ण साक्षरता प्राप्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इसकी घोषणा की। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ब्रिटेन के साथ आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पतालों की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अब नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने 3 नए स्थल निर्धारित किए। वर्ष 2026 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई हॉल और माइकल वुडफोर्ड को। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कल तक तेज हवाओं के साथ तूफान का अनुमान। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

नमस्ते मुरादाबाद, कैसे हैं आप सभी? आदाब, सत श्री अकाल। और जी और मेरे प्यारे दोस्तों, हो रहा है खूब सारा धमाल। और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपके चेहरे पे होगी थोड़ी सी मुस्कान, क्योंकि दिल में उमंग होगी तभी तो सोमवार की जो सारी सुस्ती होगी छूमंतर होगी। हमें करना खूब सारी बातें, क्योंकि आप सुन रहे हैं अपना दिलों को जोड़ने वाला, प्यार की बातें करने वाला, दोस्ती के रंग बिखेरने वाला, दिल से दिल तक अखिल संग। दोस्तों आज सोमवार है, सोमवार मतलब मंडे। सोमवार का नाम सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने उनके हाथ से गर्मा गर्म समोसा छीन लिया। तो कहते ना, अगर सोमवार की सुबह सुबह पत्नी ने कह देती है पति से कि अरे भैया उठ जाइए, ऑफिस नहीं जाना है क्या, तो थक हार के पति तो बोलता ही है कि आज मेरा मन काम करने का तो बिल्कुल ही नहीं है, संडे में इतना काम करवा लिया तुमने कि भैया मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो पत्नी यही बोलती है तो क्या करूँ, ऑफिस में आप क्या फ़ोटो भेज दूँ, क्या करूँ, आप नहीं जाना है। तो यही कहा जाता है कि भैया फ़ोटो मत भेजो, बॉस ना फ़ोटो देख के भी काम दे देगा। हाँ, ऐसा हो जाता है, कुछ बॉस होते ही ऐसे, आप ना भी जाए ना तो भी आपके पास आपका काम पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाइए, क्योंकि आज तो नवरात्रि का रंग भी हमारे शो में घुलने वाला है। माता रानी जी की भक्ति, डांडिया की थोड़ी सी खनक और दोस्तों के साथ मस्ती और प्यार भरी शायरी, तो सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह। चेहरे पे मुस्कान, दिल में प्यार रखिए, हर दिन को जीने का त्योहार रखिए, मुश्किलें आए तो घबराना नहीं दोस्तों, माँ दुर्गा पर भरोसा, खुद पर एतबार रखिए। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हैं माता रानी के आशीर्वाद और एक शानदार गाने के साथ। हमारे पास फोन आया था आयुष का, मगर किसी कारणवश वो फोन कट गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, मगर हमें उनकी फरमाइश याद है। तो आयुष आप जहाँ भी हैं, छोटे से बेबी UKG में पढ़ते हैं अभी और क्रिप्टन स्कूल में से पढ़ाई करते हैं, तो चलिए उनकी जो फरमाइश थी वो तो पूरी करते हैं। अगर हाँ आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश है, 9837896896 पे लाइनें हाजिर हैं साहब, आप कॉल करें और करते हैं। थोड़ी सी नहीं करनी है, हमें बहुत सारी बातें करनी है दिल से दिल तक।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, जहां बातें हो रही हैं आप ही के दिल की हमारे दिल तक, क्योंकि साहब आप ही का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और कहते हैं ना, नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये शक्ति, विश्वास, आक्रामक और नई शुरुआत का भी संदेश देता है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें अलग अलग गुणों की याद दिलाते हैं, साहस, धैर्य, ज्ञान, बुराई के खिलाफ लड़े के और खड़े होने की शक्ति भी देते हैं। और नवरात्रि की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? घरों में पूजा, मंदिरों में रौनक, बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, और शाम होते ही जो डांडिया की तैयारियाँ होती है ना भाई साहब, वो कुछ अलग ही होती है। तो आप भी कहीं खेलने जा रहे हैं डांडिया और नहीं जा रहे हैं खेलने, तो हम बता देते हैं आप कहाँ खेल सकते हैं डांडिया। सारे अपडेट मिलेंगे इसी शो में आपको। तब तक हम बात करते हैं अपने दूसरे लिसनर से, पूछते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: प्रभात सैनी, मझोली मुरादाबाद।
0: प्रभात जी, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं इस समय?
1: इस टाइम भाई साहब आराम कर रहे हैं, बस आपको इंतजार कर रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है प्रभात जी। और कैसा रहा आज का पूरा दिन?
1: दिन कैसा कटा भाई साहब, वो जो हर आदमी जानता है,
0: पूरा दिन पता ही नहीं। ऐसे तो आजकल तो हर आदमी का पूरा दिन पता ही नहीं चलता, बस सुबह से पूजा पाठ शुरू और शाम को फटाफट घर पहुंचो।
1: पूजा किसके लिए करते हैं आप, ये बताओ आप।
0: पूजा किसके लिए करते हैं तो आप ही बताएंगे, पूजा तो हर तरह की पूजा होती है।
1: नहीं, आदमी सब लालच में पूजा करते हैं।
0: क्या बात है, मतलब बिल्कुल सही, एकदम डायरेक्ट।
1: आदमी कुछ काम नहीं करता जमाने में।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप बताइए, आपने किस लालच के लिए फोन किया है आज?
1: मुझे आपसे बात करना अच्छा लगती है, मैं इसलिए फोन करता हूँ।
0: तो आज कोई गाना, कोई ऐसी फरमाइश?
1: आदमी भगवान से क्या मांगते हैं, मुझे ये दे, मुझे वो दे, ये नहीं पूछते कि भगवान आप ठीक हो, आपने कुछ खाया नहीं खाया।
0: सभी सभी पूछते हैं, जिस जिसको पूछना है वो पूछ लेते हैं। अभी अभी तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं प्रभात जी, आपको कौन सा गाना सुनना है, क्या फरमाइश है आज आपकी जो दिल से निकली हुई है? हमारे पास तो बहुत सारी हैं दिल की गाने, अगर आप
1: तो ऐसे लगती है जैसे मेरे दिल से निकल रही है।
0: क्या बात है, क्या बात है प्रभात जी। ये आवाज आपके पीछे आ रही है, मतलब चहल पहल आपके यहाँ भी हो रही है आसपास?
1: तो भगवान को जो मानते हैं, जो लालची है, मैं लालच नहीं चाहता कभी।
0: बिल्कुल बढ़िया बात है, और लालच कभी चाहिए भी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने कभी डांडिया नाइट और ये कहते हैं ना नवरात्रों में जो स्पेशल होते हैं भा, ये किया है आपने कभी?
1: ना भाई साहब, ये गुजरात में चलता है, देखो दूसरे शहर की परंपरा अपने घर लाओ, बेकार है अपने घर की परंपरा छोड़ के दूसरे को परंपरा सुनने आओ।
0: परम्परा ये आपके अच्छे विचार हैं, मगर अगर कभी होता है ना जिसमें थोड़ा सा डांस, थोड़ी सी मस्ती हो जाए, थोड़ा सा आदमी जो है ना भक्ति में हो जाए तो अच्छा लगता है।
1: नाचना मैं जानता हूँ, दूसरों को नचाना जानता हूँ।
0: तो चलिए अभी हम आपके लिए एक गाना प्ले करते हैं, वो ही बताइएगा उसमें आप नाचते हैं या दूसरों को नचाते हैं।
1: पहले एक शायरी हो जाएगी बस।
0: जरूर जरूर जरूर सुनाइए।
1: मुझसे कुछ नहीं आता, मुझसे कुछ नहीं आता, आप सब कुछ बताते हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझसे कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ बताते हैं। अच्छा कौन है, कौन बुरा है, ये आप सब कुछ बताते हैं।
0: क्या बात कही आपने प्रभात जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात। इसी के ऊपर आपके साथ इसी वार्तालाप को हम खत्म करेंगे, मगर एक जाते जाते आपको सुनाते हैं दोस्ती। हाँ, एक शेर ही सुनाऊंगा आपकी इसी बात पे। दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मुलाकात करे, दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मुलाकात करे, दोस्ती वो है जो दिल से दिल की बात करे। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो दरमियां, दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो दरमियां, सच्चा दोस्त हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। क्या बात है प्रभात जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बढ़िया सा गाना इसी बात के ऊपर प्ले करते हैं अपने श्रोताओं के लिए। फोन थोड़ा सा जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया, मगर कोई बात नहीं, हमें प्रभात जी की फीलिंग पूरी पूरी पता है और कितने दिल से बात करते हैं और कहते हैं साहब मैं अपनी मस्त में मस्ती रहता हूँ। अजीब मौसम हो गया है, पता नहीं चलता है एसी चलाना है या पंखा चलाना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाई साहब दोनों को ही मत चलाओ, क्योंकि हवा कहाँ से ठंडी ठंडी लगने लगती है। ऐसा लगता है भैया अब हो गई ये सर्दी की शुरुआत, तो ये मौसम बहुत है खतरनाक, थोड़ा सा बचाव करना पड़ेगा अपना भी और अपने बच्चों का भी।

क्योंकि बुखार जो है ना ऐसा आता है और जाता है, पता ही नहीं लगता है कि साहब ये भी क्या चाहता है। तो चलिए दोस्तों, कहते हैं ना, अब सुनते हैं बढ़िया सा ट्रैक और उसके बाद करेंगे खूब सारी दिल की बातें 9837896896 पर। और खूब सारी कहते हैं ना, जब मुरादाबाद वालों को तो इंतज़ार है कि अब डांडिया कहाँ कहाँ कहाँ किधर होने वाला है इस नवरात्रि। तो इस नवरात्रि डांडिया और गरबा कार्यक्रम में जो भी जाने वाला है ना, हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। और जा भी रहे हैं तो रंगे रास जो 13 और 14 अक्टूबर को होने वाला है गांधी पार्क में, तो वहाँ ज़रूर जाएँ, खूब सारी मस्ती करें, खूब सारा गरबा खेलें। और जो लोग डांडिया गरबा खेलने में एक्सपर्ट है ना, वो नए खिलाड़ियों को एक टिप ज़रूर दें, क्योंकि भाई पहली बार डांडिया खेलने वालों को ना सबसे ज़्यादा डर इसी बात का रहता है कि सामने वाले की स्टिक से पहले अपनी स्टिक ही ना टकरा जाए। तो जैसी स्टिक टकरा जाए भैया स्टेप तो करना पड़ता है। हाँ जी हाँ, रंगों से सजी हो शाम, सितारों से सजी रात, दोस्तों का हो साथ और खुशियों की हो बरसात। तो डांडिया की हर थाप पर दिल मुस्कुराता रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर कदम पर आता रहे। तो चलिए इस गाने वाले ब्रेक के बाद आपसे करेंगे खूब सारी बातें दिल से दिल तक 9837896896 पर। हाँ जी, मुझे पता है आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आराम से चलाइए, सीट बेल्ट पहन के रखिए, क्योंकि ट्रैफिक जब रुक जाता है ना तो थोड़ा सा तो आपको सब्र करना पड़ेगा भाई साहब, बिना हॉर्न दिए भी गाड़ी चलती है। हाँ जी हाँ चलती है, और आप ही चलाएंगे।

0: मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
4: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। कभी कभी ऐसा लगता होगा अरे भाई साहब क्या बोल दिया, एकदम तेज तेज और इतना चीखे। नहीं जी, ये तो प्यार है, क्योंकि आवाज़ तभी निकलेगी दिल से बाहर जब आप दिल की सुनेंगे। दोस्तों, त्योहारों का ना असली मज़ा तभी आता है जब अपने साथ होते हैं, और अपनों में एक रिश्ता ऐसा भी है जो खून का ना होते हुए भी दिल के बहुत करीब होता है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने, दोस्ती का ही होता है। दोस्त भी वही होता है ना जो आपकी शक्ल देखकर बता दे कि आज इसका मूड ठीक है या नहीं। तो दोस्त वही है जो कहता भाई तू टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, मैं हूँ तेरे साथ, तू बिल्कुल भी ना एकदम बस चल भाई, तू बस बाइक पे बैठ और मेरे साथ चल फटाफट। और कहते ना आपके साथ साथ वो आपकी टांग जो है ना पूरी खींचता भाई साहब। दोस्ती में अगर मुसीबत में अगर आपके साथ देने के बाद वो आपकी टांग खींच रहा है ना, तो भाई साहब बिल्कुल सही, एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते सबको निछावा कर सकते हो। और हाँ, एक बात आप लोगों से पूछनी है कि आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा नाटक कौन करता है। अगर कोई नाटक करता है ना तो आज मैसेज कर दो उसका नाम, हम कह देंगे भाई साहब आप बहुत तंग करते हो अपने दोस्तों को। वो दोस्त जो हर प्लान में कह देता है मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, लेकिन स्टेटस जैसी देखेंगे ना सबसे पहले वहीं पहुंच जाता है। तो ऐसे ही होता है, अपडेट भी एकदम कर देता है, सेल्फी भी खींच देता है, और जैसे ही मिलता है भैया सबसे दोस्ती हाथ बात बात बात गले बाद में मिलेंगे, पहले फ़ोटो खींच लेते हैं। और पूरे टाइम यही कहेगा कि भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, मगर पहुँचेगा आधा घंटे में कम से कम। तो चलिए अपने नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं इस समय। वो भी किसी अपने दोस्त के साथ चाय पीने गए हैं या खुद ही मस्ती करने में लगे पड़े हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप
1: भैया? नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं आप?
1: सर मैं नवीन नगर से गौरव टेलर बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है गौरव जी। गौरव, आपने एकदम गौरव टेलर बोला तो ऐसा लगा जैसे आप कहीं फॉरेन से बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना सरनेम ऐसे होते हैं, टेलर, जैक्सन और टाइसन। तो गौरव जी कितने साल से हैं इस प्रोफेशन में आप?
1: मुझे सर 26 साल हो गए इसमें।
0: 26 साल हो गए
1: जी।
0: आपकी आवाज से आपकी आवाज से आप 26 साल के लगते हैं, मगर आप खुद ही कह रहे हैं 26 साल से हो गए।
1: 26 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 40 एज हो गई।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी कोई दिल की बात जो कभी कभी आपने कहते ना कैची चलाते हुए आपको याद आ गई हो, कोई कुछ होता है ऐसा आपके साथ भी?
1: ऐसी तो कोई वो नहीं है, मगर ये कि जो लाइफ में पहले बीती है वही बातें याद आती हैं, जब पहले ऐसा था, हम ये थे, और आज देखो इतना समय हो गया तो इतनी एज हो गई, और आगे को भविष्य में एज बढ़ेगी तो जो समय के हिसाब से तो दोस्त भी बदलते चले जाते हैं, समय भी बदलता चला जाता है, जो जो दौर बीत जाता है वो दोबारा नहीं आता।
0: बिल्कुल सही।
1: जो भी दौर है, जो भी समय है, हमें उस समय को सही तरीके से यूज करना चाहिए और उसको सही तरीके से इंजॉय करना चाहिए।
0: क्या बात कही है।
1: जो आज की डेट है वो कल नहीं आएगी ना।
0: बिल्कुल सही, मुझे लगता है आज ही आपसे कोई गले मिलके गया है, आपने किसी का सूट बहुत बढ़िया बना दिया है। ऐसा तो नहीं हुआ है?
1: सूट तो भैया सबके अच्छे बनाते हैं और सभी गले मिलके ही जाते हैं, सबसे अच्छी बातें करते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं।
0: एक बात सच सच बताइएगा, क्या आपने अपनी शादी का सूट भी खुद ही सिला था या नहीं? हाँ या ना में बताइएगा।
1: शादी का सूट अपने अपना तो नहीं सिला था, मगर मैडम का ब्लाउज वगैरह उनके कपड़े वगैरह अपने हाथ से सिले थे।
0: क्या बात है, तो वो तो आपने कैची का भी इस्तेमाल कम किया होगा फिर?
1: ना कैची का तो इस्तेमाल जो होता है वो होता ही है।
0: बिल्कुल सही। तो गौरव जी कभी कोई ऐसी बात बताइए जो बहुत ही, मतलब कहते हैं ना इतनी सारी आपसे अभी बातें हो गई, मगर कोई ऐसी खास बात जो आपके थोड़ी सी दिल के और करीब हो? घबराहट क्यों? मतलब शादी को कितने साल हो गए आपकी?
1: शादी को 16 साल हो गए।
0: तो आपको पहले साल में इतनी घबराहट नहीं हुई जो आज आपको सारी बातें करने में हो रही है हमारे साथ?
1: ना ना ना,
0: मतलब तब तो सही है भाई साहब, आप एकदम एकदम घोड़ी चढ़ गए, स्टेज पे पहुंच गए, फोटो भी खिंचवा लिया, तब भले ही सेल्फी का टाइम ना हो मगर तब भी फोटो तो बहुत खिंचवाए होंगे आपने।
1: जब फोटो खिंच रहे थे तो उस समय तो ज्यादा से ज्यादा 100-150 लोग थे, मगर आज का जो रेडियो है, जो ये तो लाखों लोग सुन रहे हैं ना।
0: हाँ ये बात तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं।
1: सामने घबराहट तो होगी?
0: नहीं नहीं, सारे सब जितने भी सुन रहे हैं ना, सब भी वैसी उसी घबराहट से निकल के आए हैं सर, और कोई निकल के और कोई अभी जाने को तैयार है उस घबराहट में? बिल्कुल सही कहा आपने। आपका कोई ऐसा दोस्त जो बहुत ही आपके खास हो और जिसे आप रात में 2 बजे भी फोन करके कह सकते हैं, अरे भाई जैसे क्या कर रहा है तू, कहाँ है तू?
1: हाँ तो वैसे तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मैं कभी भी फोन कर लेता हूँ, जो मेरा करीबी मित्र है, जो मेरा बिल्कुल पर्सनली दोस्त है, तो वो मेरे मामा का लड़का बेटा है।
0: मामा ऐसे ही होता है, मामा का बेटा या फूफा का बेटा, कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि जो दोनों दोस्त जो है ना, एक दूसरे की कहानी जरूर सुन लेते हैं और सुना देते हैं।
1: वो मेरे बचपन का भी दोस्त है और मेरा भाई भी है, सब कुछ है वो, और वो भी मुझे अपने दिल की बात बताता है, मैं भी अपने दिल की बात बताता हूँ, क्योंकि देखो अपना एक इंसान जरूर होना चाहिए अपनी लाइफ में जो आप अपने दिल की बात कह सको उससे।
0: क्या बात कही आपने।
1: मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा कि अपना एक जो है अपना दोस्त साथ में जरूर रखना चाहिए जो जिससे अपने दिल की बात कह सके, क्योंकि देखो आजकल देख रहे हो कि कितने लोग जो है उसमें डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, और वो ही लोग पहुंचते हैं जो अपने दिल की बात जो किसी से बोल नहीं पाते।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये आप आज ऐसा कौन सा गाना सुना के जो जो लोग डिप्रेशन में है उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे आप?
1: मैं गाना सुनना चाहूंगा कि कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, और सबसे बनाया होगा तुझे।
0: क्या बात। ये गाना जो है ना अजय देवगन ने रवीना टंडन के लिए गाया था, आप किसके लिए गा रहे हैं?
1: मैं अपनी वाइफ के लिए सुनाना चाहता हूँ, और जिसने आपके लिए जिसने रेडियो सुनना है आपका,
0: जरूर जरूर गौरव जी जरूर, और आपके पास जरूर आपसे मुलाकात करेंगे, और कहते हैं ना जितने जितने आपने जो छोटी छोटी बातें अभी आपने नहीं बताई ना, वो जरूर आपसे पूछेंगे मिलकर।
1: जी जी जी जरूर, आप आइए, आपका स्वागत है।
0: बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर श्रोताओं, हमारे गौरव जी ने एकदम बेबाक बात करी है, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कहीं सूट में आपके कोई कमी है ना, तो एक बार गौरव जी से जरूर मिल लीजिए। गौरव जी आपको मिलेंगे नवीन नगर में।
1: हाँ जरूर, नवीन नगर में डॉक्टर चक्रवर्ती के पास में है, कोट पैंट शेरवानी का भी काम है मेरा।
0: क्या बात है गौरव जी, तो जरूर जरूर
1: पजामे का कपड़ा भी मेरे अपने पास मिल
0: जाता है, हम भेजेंगे आपको। हमारे एक हैं श्रोता हैं उस्मान जी हैं, जो कह रहे थे मुझे कुर्ता पजामा पहनने का बहुत शौक है, उन्हें जरूर भेजेंगे आपके पास।
1: हाँ तो आप भेजिएगा, और वो सुनने होंगे तो जरूर आइएगा।
0: बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही दिलचस्प इंसान, और मैं तो आऊंगा ही गौरव जी आपसे मिलने।
1: और जो आपका रेडियो सुनते हैं वो आएंगे तो उन्हें अलग से डिस्काउंट में।
0: बस बस बस यही तो बात नहीं कहनी थी आपने, अलग से डिस्काउंट वाली। चलिए अब तो
1: कोई नहीं, डिस्काउंट भी देंगे और चाय भी पिलाएंगे आपके नाम से।
0: ठीक है ठीक है, मेरे नाम से चाय पिलाएंगे आप? जरूर जरूर जरूर। हाँ साहब, जो एक चाय की चुस्की तो बनती है जब इतनी दूर से कोई आपके पास आया तो।
1: सही बात।
0: चलिए गौरव जी बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी बात हो गई आपसे और ऐसा लगा कि साहब आप तो मतलब बिल्कुल सामने ही बैठे हैं और बात ही करते रहो।
1: सही बात है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करता रहूं मैं हमेशा, और आप जरूर आप मेरे आप आइएगा और बैठ के बात करते हैं काफी बार।
0: धन्यवाद धन्यवाद गौरव जी, और जरूर आपसे जल्दी मुलाकात करनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार जी। तो श्रोताओं हमारे साथ जुड़े थे गौरव जी, और जो कहते हैं ना मतलब ऐसे दिल की बात कि कहा भाई आज तो सामने ही बैठे हमारे साथ, मगर एक जरूरी बात मैं यही कहूंगा, दोस्ती और प्यार के बीच की दूरी को समझना भी ना जरूरी होता है। अगर आपके मन में किसी के लिए खास भावनाएं हैं तो ईमानदारी से बात कीजिए, सामने वाले की जो भावनाएं होती ना और उसकी पसंद का सम्मान भी कीजिए। हर दोस्ती का प्यार में बदलना जरूरी नहीं, लेकिन सच्ची दोस्ती में सम्मान हमेशा जरूरी होता है। तो चलिए चलिए इस गाने के बाद आते हैं, आपसे भी खूब सारी बातें करेंगे सिर्फ 9837896896 पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पर। अंधेरों से कह दो कि अब डरना छोड़ दें, अंधेरों से कह दो कि अब डराना छोड़ दें। हमने उम्मीदों के दिए जलाना सीख लिया है, हमने उम्मीदों के दिए जलाना सीख लिया है। मुश्किलों ने लाख कोशिश की हमें रोकने की, हमने हर हाल में मुस्कुराना सीख लिया है। तो दोस्तों, जो नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि शक्ति सिर्फ बाहरी ताकत का नाम नहीं है, कभी अपने परिवार के लिए खड़ा होना शक्ति है, कभी किसी दुखी दोस्त को सहारा देना शक्ति है, और कभी मुश्किल वक्त में उम्मीद बनाए रखना भी शक्ति है। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई परेशानी है, कोई अधूरा सपना है, या कोई ऐसी बात है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो याद रखिए, हर मुश्किल का हल तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन धैर्य, सही कोशिश और अपनों का साथ रास्ता आसान बना सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे 9:58 हो गए और अपने लास्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और इस समय क्या कर रहे हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप?
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या कर रहे हैं इस समय?
1: सर, लेट करके आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा शो लग रहा है सर, मजा आ रहा है काफी।
0: सर बैठ कर सुन लीजिए, आवाज और तेज आ जाएगी।
1: सर बैठ कर सुन लूंगा।
0: क्या नाम है आपका? हमारे सभी श्रोताओं को बताएं आपका क्या नाम है और कहां से बात कर रहे हैं। सालिम अंसारी जी, और आज का दिन कैसा रहा आपका?
1: हमारा दिन बहुत बढ़िया रहा, बिंदास रहा, अच्छा रहा। घूमने भी गए थे आज।
0: आज घूमने भी गए थे आप?
1: वो रामलीला होने वाला ना हमारे यहाँ पर शेषपुर में।
0: हाँ, बिल्कुल सही। आपने एक बार बताया भी था शायद पिछले हफ्ते ये बात।
1: जी हाँ, तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही, बहुत अच्छा मेला रहने वाला आपके और भी।
0: जरूर जरूर, मेले में ऐसा कौन सा झूला है जो आपको कहते हैं ना कि बस ये झूला लग जाए तो मैं तो जरूर झूलूंगा, ऐसा है कोई झूला आपकी पसंद का?
1: ट्रेन वाला बोलते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है।
0: ट्रेन में सबसे आगे बैठते हैं डब्बे में या सबसे पीछे बैठते हैं ट्रेन में भी?
1: सबसे आगे बैठते हैं।
0: सबसे आगे बैठते हैं आप? तो चलिए साहब, इस बार आएंगे टीटी बन के आएंगे, इस बार टिकट ले लेंगे आपसे ट्रेन का।
1: सर बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो कोई बढ़िया सी आप शायरी सुना दीजिए, मुझे लग रहा है आपकी आवाज भी कुछ ऐसे ही कहना चाह रही है कि आज कुछ सुनाना चाह रहे हैं आप। जरूर
1: कुछ इस तरह से
0: पहली बार सुना रहा, सर पसंद आएगा नहीं आएगा? आप सच सच बताना, ये पहली बार किसके लिए सुना रहे हैं आप? श्रोताओं के लिए सुना रहे हैं या किसी खास श्रोता के लिए सुना रहे हैं या हमारे लिए सुना रहे हैं?
1: सर आपके लिए।
0: अरे हमारे लिए सुना रहे, तो चलिए सर, हमें तो बिल्कुल ही पसंद आएगा, टेंशन ना लें।
1: दिल से दिल का रिश्ता है ये पुराना, दिल से दिल का रिश्ता है ये पुराना,
0: क्या बात,
1: और अंदाज है हमारा हंसना और हंसाना। दिल से दिल का रिश्ता है ये पुराना, अंदाज है हमारा हंसना और हंसाना। और दिन में तो हम आपको रोज याद करते हैं, और दिन में तो हम आपको रोज याद करते हैं, इसीलिए हम नहीं भूलते रात को आपको कॉल लगाना।
0: क्या बात कही अंसारी जी, इस समय तालियां नहीं है मेरे पास, मैं तालियां एकदम खूब सारी बजाया था आपके लिए, बहुत ही बढ़िया शायरी।
1: दिन में हम आपको रोज याद करते हैं और रात को नहीं भूलते, हम आपको कॉल लगाना।
0: क्या बात है, दिन में आप इतना याद करते हैं तभी मैं कहूँ आजकल ये हिचकियां कहाँ से आ रही है मेरे पास।
1: नहीं सर,
0: बस बहुत ही बढ़िया, इसी बात पे छोटी सी शायरी आपके लिए, क्योंकि अब शो का वक्त हो गया है, शो से विदाई लेने का 10 बज गए हैं, और कहते हैं ना कभी कभी वक्त का भी पता नहीं चलता है। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, कुछ अपने कभी दूर होकर भी दूर नहीं होते, दोस्ती हो या प्यार बस सच्चाई बनाए रखना, दिल से निभाए रिश्ते कभी कमजोर नहीं होते। ये कितने किलो का वजन था ये तो आप ही बताएंगे, 1 किलो 2 किलो, मगर आपने इतनी तारीफ कर दी, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।
1: दिल से जो शायरी होती है बहुत अच्छा लगती है सर।
0: क्या बात कही आपने, तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे जो आपके दिल से निकलने वाला है इस समय?
1: वो है प्यार करना ना ऐसे डर डर के।
0: अरे तो कहीं मतलब क्या, कहाँ कर रहे हैं आप ऐसा प्यार जो डर डर के करना पड़ रहा है आपको?
1: सर हम तो खुल के कर रहे हैं, ये थोड़ा गाना अच्छा लगता है हमको।
0: ये गाना आपको अच्छा लगता है? तो एक आध लाइन भी गा दो आप। तो कोई बात नहीं, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप जिसके लिए आपने गाना डेडिकेट करा उसका नाम तो बोलिए।
1: मुस्कान एंड रूहानी।
0: मुस्कान एंड रूहानी के लिए आपने गाना। मुस्कान रूहानी दोनों अलग अलग हैं या एक ही नाम है मुस्कान रूहानी?
1: डबल नाम है।
0: अच्छा डबल नाम है, डबल लोगों को आपने डेडिकेट करा है।
1: हाँ।
0: किसी एक के पास तो पहुँचेगा ही।
1: हाँ, कोई ना कोई तो होगा।
0: बिल्कुल मैं समझ गया साहब, सब समझ गए, श्रोता भी हमारे सब समझ गए कि ये जो शायरी निकल रही है ना अब कहाँ निकल रही है, अखिल भैया का नाम लेके शायरी कहाँ पहुँच रही है सबको पता चल गया। धन्यवाद धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात कही तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ अंसारी जी बात करके, और अगली बार हमें भी इंतज़ार रहेगा कौन सी शायरी आप ढूंढ के लाएंगे। चलिए साहब, और करते हैं आपसे जल्दी ही मुलाकात।
1: ओके सर, थैंक यू
0: थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अंसारी जी, जो कह रहे थे कि अखिल भाई मेरे को ना आपकी शायरी सुन सुन के, आपकी जब भी आप शायरी बोलते हैं तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं से एक छोटा सा कीड़ा जाग गया और मैं भी एक शायरी अब सुनाने चालू करने वाला हूँ। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर, और आज पहली बार इतनी अच्छी शायरी सुनाई, मुझे तो सच में उम्मीद नहीं थी। तो अंसारी जी आप ऐसी ही मुस्कुराते रहें, ऐसी ही क्या है दिल की बातें करते रहें और गुनगुनाते रहें। तो चलिए दोस्तों अब हो गया विदाई का टाइम, देखते ही देखते ना कहते हैं हमारा ये एक घंटा बिल्कुल एकदम खूबसूरत महफिल और अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँच गया। सोमवार की मस्ती हुई, नवरात्रि की खूब सारी बातें हुई, दोस्तों की मिठास हुई और प्यारी सी शायरी हुई। तो कहते हैं ना मुरादाबाद में जो अब गरबा नाइट और डांडिया नाइट हो रही है उसके भी आनंद लीजिएगा। 13 और 14 को रंगे खास, रंगे रास आपका गांधी पार्क में है। और अगर आपको इसके टिकट्स चाहिए या फिर कोई सी भी इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर आप 9837896896 पर सिर्फ करवा नाइट लिख के भेजिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज करेंगे और सारे रिलेटेड जो भी इससे इवेंट से हैं वो सारी आपके पास चीज़ें शेयर करेंगे। तो कहते हैं ना चलते चलते विदाई वाली प्यारी सी शायरी सुनाई जाती है, हर शाम आपकी खुशियों के नाम हो, हर सुबह नई उम्मीदों के साथ हो, दोस्ती में मिठास प्यार में विश्वास रहे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर पल आपके पास रहे। और एक बात और कहेंगे जाने से पहले, बस आपसे ये ही बात कहेंगे कि ये बात याद रखिएगा, सोमवार हो या शुक्रवार अपनी मुस्कान को ना छुट्टी पर मत भेजिएगा कभी, दोस्तों और परिवार के लिए वक्त निकालिए क्योंकि खूबसूरत यादें ही ज़िंदगी की असली कमाई है। और नवरात्रि में भक्ति के साथ प्रेम सम्मान और अच्छाई को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तो चलिए साहब अब करेंगे खूब सारी बात कल। हाँ जी कल मैं फिर लौटूंगा नई शायरी, नई मस्ती, नई कहानियाँ और आपके अपनेपन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के करीब रहिए और दिल से दिल का रिश्ता बना के रखिए। जय माता दी, शुभ रात्रि, मुरादाबाद। आपका अखिल लेता है आपसे विदाई। बाय बाय, गुड नाइट।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
7: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो मुरादाबाद, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। 19 अक्टूबर सोमवार को होने जा रही है मुरादाबाद की बिगेस्ट गरबा डांडिया नाइट मॉडर्न म्यूज क्लब की ओर से, जिसमें आपको मिलने वाला है अनलिमिटेड फन, डांस, सरप्राइज, गिफ्ट्स, रिटर्न गिफ्ट्स, स्नैक्स, डिनर और भी बहुत कुछ। डिनोस क्लब हाई स्ट्रीट। पासेस के लिए कॉल कीजिए 9759186161।
1: कुछ बातें जो दिल में रह जाती हैं और कुछ बातें जो सीधे दिल तक पहुंच जाती हैं, तो मुरादाबाद उठाइए अपना फोन और मिलाइए फोन आरजे अखिल को, क्योंकि ये पहुंचाएंगे आपके दिल की बात उस हर एक दिल तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। सुनिए दिल से दिल तक मंडे टू फ्राइडे एवरी इवनिंग 9 PM to 10 PM आरजे अखिल के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।